एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा

0: जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं चिंतन

शांत और निर्मल हृदय परमार्थ के लिए आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के द्वेष से भरे हृदय में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हमारा शरीर एक मंदिर के समान है, इस मंदिर को प्रभु के रहने योग्य बनाना चाहिए।

प्रेम पूर्वक प्रभु नाम का सुमिरन करने से मन शांत रहता है और असीम सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र हृदय के साथ प्रभु की शरण में जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं।

प्रभु नाम की महिमा अपार है, अपरंपार है, अमाप है, असीम है। प्रभु नाम की महिमा का गुणगान जितना किया जाए कम है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 215।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं।

पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां 2 दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम होगा शुभ प्याग। गाने सुहाने कार्यक्रम का समय रहेगा 8:30। सुबह 9:00 सुनिएगा स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय रहेगा आई फ्लू।

0: और सामान्य नेत्र विकार। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास से विषय संबंधी प्रश्न पूछने हेतु स्टूडियोज का दूरभाष नंबर रहेगा 01892-224-391। कार्यक्रम गीतों का कारवां आपके रेडियो सेट पर होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। साहित्य सुमन ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 11:05 पर। 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम तराने मन के। सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12 बजे। 12:30 पर नन्हे श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन वीकली पल्स। ये विषय रहेगा आज की युवा मंच कार्यक्रम का, सुनना ना भूलिएगा शाम 5:25 पर। शाम 6:06 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम शामे गजल। 6:30 पर मिंजरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम महिला साथियों के लिए सजीव फोन इन बातचीत पर आधारित होगा। साथ ही कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे लोकगीत। शाम 7:10 पर किसान बागबान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। 8:00 सुनिएगा विविध संगीत कार्यक्रम होगा सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज विख्यात निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत पेश किए जाएंगे। 9:50 11:00, 3:00, 6:00, 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 के दैनिक आकर्षण पर आधारित कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रवि वासरीय संगीत सभा इस कार्यक्रम के तुरंत बाद। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00 शाम 5:00 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 शाम 5:05 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 News@9। तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिली किए जाएंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 20 रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000 नियुक्तिपत्राणि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन वितरितानि। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी विकसितस्य आत्मनिर्भरस्य च भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् अद्यतनेषु वर्षेषु केन्द्रसर्वकारेण यूनः भविष्यस्य सज्जतायै आवश्यकतायै कौशलैः अवसरैः च सुसज्जयितुं निरन्तरं ध्यानं प्रदत्तमस्ति। भारतस्य प्रमुखस्य सेमीकंडक्टर सम्मेलनस्य 5th संस्करणं 26th

0: 2020तमवर्षस्य सेमिकॉन इंडिया ह्यः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सफलतया समाप्तम्। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम इति विषयस्यान्तर्गतं त्रिदिवसीयेस्मिन् सम्मेलने 600+ प्रदर्शकाः भागं भजितवन्तः। एतेषु प्रायः 300 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिभागिनः, 50 देशानां प्रतिनिधयः, 150+ वक्तारः च आसन्। त्रिषु दिनेषु सेमीकंडक्टर विन्यासः, निर्माणं, उपकरणानि तथा सामग्र्यः, विद्युत कृत्रिम बुद्धिमत्तादि 650 यावत् संधिपत्राणि, घोषणाः, सामरिक उपक्रमाः च दृष्टाः। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नैच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं संभाव्य भूराजनैतिक संकटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67+ स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मंत्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोयं 170+ मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96+ स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मंत्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवा शाखानां आध्यात्मिक समूहानां शीर्ष व्यापार प्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीय संघटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां संचालनाय विशाल राष्ट्रिय जालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।

0: आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा है कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी मैं सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं तो उसके हिसाब से स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है और उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा है कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये छात्र कल्याण के प्रति ABBP की प्रतिबद्धता को लेकर युवाओं में दृढ़ विश्वास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ये जीत विकसित भारत के लिए योगदान के प्रति विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जापान में 20वें एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाज एलेवेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं आपके रेडियो सेट पर लेकर जानकारियों का पिटारा, साथ ही सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार के साथ। मदर टेरेसा ने कहा है, जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जी हाँ दोस्तों, जीवन अमूल्य है। ये एक ऐसा अवसर है जो एक ही बार मिलता है। भारतीय दर्शन में निष्काम कर्म, मानव सेवा और आत्म विकास को जीवन का मुख्य आधार माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, समय आने पर फल स्वतः ही मिल जाएगा। जीवन

में कर्मवीर बनिए। जीवन को एक उत्सव की तरह व्यतीत करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला कीजिए। प्रसन्न रहिए और अपने सपनों को पूरा करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दीजिए। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, तो चलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। 1995 की बात करते हैं। आज के दिन संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन आरंभ हुआ। 2003 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इसराइल से यासिर अराफात की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। 2004 की बात करें तो आज के दिन इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ। आज के दिन 2006 में ब्रिटेन के रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स के

वैज्ञानिकों को 200 वर्ष पुराने बीज उगाने में सफलता प्राप्त हुई। 2006 में ही आज के दिन विश्व कन्नड़ संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया और 2012 में आज के दिन ज्ञात हुआ कि भारत की राजभाषा हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बहुभाषी भारत की हिंदी भाषी राज्यों की आबादी 46 करोड़ से अधिक है। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1921 में आज के दिन जन्म हुआ था पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक अजीत राम वर्मा का। 1924 में आज के दिन तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता ए नागेश्वर राव का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1942 में राजेंद्र गोयल का जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेटर थे राजेंद्र गोयल, जिन्होंने क्रिकेट में एक गेंदबाज के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई। बात करते हैं वर्ष 1948 की। आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुई ये भी आपको बता देते हैं। 1927 में आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतुल्ला का निधन हुआ। 1928 में भारत के महान संत एवं समाज सुधारक नारायण गुरु का निधन आज के दिन हुआ। आज ही के दिन 1933 में भारत की होम रूल लीग की संस्थापिका डॉक्टर एनी बेसेंट का निधन हुआ। इनके विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। 1942 की बात करते हैं, भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ का निधन आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1999 में तमिल सिनेमा की स्वप्न सुंदरी नाम से विख्यात अभिनेत्री राजकुमारी का निधन हुआ। उनकी फिल्म हरिदास 114 सप्ताह तक चेन्नई के सिनेमा घर में चलती रही थी। 2017 की अगर हम बात करें तो आज के दिन हिंदी सिने जगत की 1950-60 के दशक की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शकीला का निधन हुआ। और दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में बात करते हैं आज की, आज 20 सितंबर है और आज विख्यात लेखिका, समाज सेविका और स्वतंत्रता सेनानी आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एनी बेसेंट की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। नारी मुक्ति समर्थन में उनका विशेष योगदान रहा। भारत में उनके योगदान को देखते हुए देशवासियों ने उन्हें माँ वसंत कहकर सम्मानित किया, तो महात्मा गांधी ने एनी बेसेंट को वसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया। लगभग 505 ग्रंथों और लेखों की लेखिका डॉक्टर एनी बेसेंट ने हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम, जो 1915 में लिखा गया था, भारत में भारत को अपनी मातृभूमि बतलाया है। भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थीं और थियोसॉफी का प्रसार करने के लिए वह भारत आई थीं। आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से सोए हुए भारत को जगाने के लिए भारत को अपना घर कहने वाली एनी बेसेंट ने विश्व भर के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया, उन धर्मों को जाना, परखा और समझा कि वेद और उपनिषद का धर्म ही सच्चा मार्ग है। स्वयं को भारत की सेवा में समर्पित कर उन्होंने 7 जुलाई 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और बाल विवाह, जातीय व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था बनाई। 20 सितंबर यानी आज के दिन 1933 में चेन्नई के निकट अंडियार में उनका देहांतवास हो गया। वह कहा करती थीं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म हिंदू परिवार में हो।

सुबह सुहानी कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आज के दिन की यानी 20 सितंबर की। दोस्तों आपको बता दें, आज के दिन को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं विश्व सफाई दिवस के रूप में। विश्व सफाई दिवस एक वैश्विक सामाजिक कार्यवाही कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समुद्री कचरे की समस्या सहित वैश्विक ठोस अपशिष्ट समस्या से निपटना है। इसका समन्वय वैश्विक संगठन लेट्स डू इट वर्ल्ड द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालय एस्टोनिया के टालिन में स्थित है। इस दिवस को मनाए जाने का एक उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सफाई कार्यों में शामिल कर कुप्रबंधित अपशिष्ट संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। इस दिन विशेष रूप से व्यक्तियों, सरकारों, निगमों और संगठनों को सफाई अभियान में भाग लेने और कुप्रबंधित अपशिष्ट से निपटने के लिए समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहली बार विश्व सफाई दिवस 15 सितंबर 2018 को मनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में 19 सितंबर को यह दिन मनाया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 के अपने संकल्प द्वारा 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस के रूप में घोषित किया। साथियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि साफ सुथरा वातावरण स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य का आधार है। और दोस्तों, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दुनिया की रौनक को देख पाएंगे।

घोड़ा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। बात कर रहे हैं आज की, दोस्तों आज विश्व विश्वविद्यालय खेल दिवस है। विश्वविद्यालय खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा घोषित एक दिवस है जो प्रतिवर्ष 20 सितंबर यानी आज के दिन विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ द्वारा यूनेस्को को प्रस्तावित इस परियोजना को 2015 में यूनेस्को के महासभा सम्मेलन द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। इसका पहला आयोजन सितंबर 2016 में हुआ था। इस तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये न केवल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर की शुरुआत के साथ मेल खाती है बल्कि वर्ष 1924 में पहली विश्व छात्र चैंपियनशिप के शुभारंभ के साथ भी मेल खाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में खेल के महत्व को उजागर करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य समाज की सेवा में खेल शिक्षा को सुदृढ़ करने में विश्वविद्यालयों की सामाजिक भूमिका को भी दर्शाना है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है खबरों का सिलसिला शुरू करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पिछले रोज हुआ जापान एशियाई खेलों का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को दी शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की। हिमाचल प्रदेश की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि 1000 इलेक्ट्रिक और 200 डीजल बसों की खरीद जल्द की जाएगी। साथ ही आश्वासन दिया कि बसों के लिए चालक और परिचालकों की भर्ती भी होगी। प्रदेश में लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेने वाले राशन कार्ड्स को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने जिला के खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे उचित मूल्य की दुकानों से ऐसे राशन कार्ड धारकों का आंकड़ा जुटाए जिन्होंने पिछले 6 माह के दौरान राशन नहीं लिया है।

बात करें मौसम की तो मौसम वर्तमान में मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में मौसम को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में आमतौर पर मौसम साफ रहने या कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और दोस्तों सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग।

आज के शुभ प्याग कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लीजिए सुनिए ज्वाला प्रसाद और अक्षर सिंह परमार का गाया ये लोकगीत।

शुभ प्रयाग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में डीजे सुनिए मान सिंह और सुनील राणा का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है, उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर, कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे ही जहां जहां गवर्नमेंट को उचित लगे कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी गवर्नमेंट के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
3: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
5: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
3: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए एबीवीपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। समाचार

0: आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक तो मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है। तो हियरिंग ईआरओ के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किउमसी डिसोजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी

0: जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब डेढ़ दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
3: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklayan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: The Nasha Mukt Yuva for

FM 103.4 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी की गाई धर्मवीर फिल्म के इस गीत के साथ। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में धर्मवीर फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
2: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
3: अरे क्यों?
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी

0: आज के
1: दे दे भाई।
2: आरबीआई कहता है बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
3: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
4: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
3: जी डॉक्टर साहब,
4: सिर्फ इसे नहीं सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
5: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। वो सात दिन, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में वो सात दिन फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
2: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
3: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत।

लीजिए सुनिए नागिन फिल्म का गीत। गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की हैं।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए मोहब्बत फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है इंदिवर की, संगीत बप्पी लाहिड़ी का है। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

मोहब्बत फिल्म के संगीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

श्रोताओं नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम के संक में मैं संजीव आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके द्वारा हम ईश्वर का बनाया ये सुंदर संसार देखते हैं। यही आंखें हमारे चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाती हैं, साथ ही भावों की अभिव्यक्ति में भी ये आंखें अहम भूमिका निभाती हैं। दिल के बाद शायद आंखें ही हैं जिनके विषय में कवियों और शायरों ने बहुत कुछ लिखा है। कभी आंखें झील सी गहरी हो जाती हैं, तो कभी ये नयन चंचल हो जाते हैं। कभी आंखें खामोशी बयान करती हैं, तो कभी इतनी मुखर हो जाती हैं कि बिना संवाद के भी बहुत कुछ कह जाती हैं।

0: लेकिन इन्हीं आंखों में जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही एक समस्या है आई फ्लू की, जिसके विषय में आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। विषय है आई फ्लू और सामान्य नेत्र विकार। इस विषय पर जानकारी देने हेतु आज हमने आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास को, जो क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। इससे पहले कि विषय पर आएं, नेत्रों की संरचना के विषय में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। और अगर संरचना की बात करूं तो हमारे नेत्रों के आगे सबसे पहले तो पलकें हैं, ऊपर और नीचे पलकें हैं, उनके आईलैशेस हैं। उसके बाद एक जो आई बॉल है उसकी तीन लेयर्स हैं, और उसके ऊपर भी एक कंजंक्टाइवा है, और आगे की तरफ एक स्पष्ट मंडल या कॉर्निया जैसे हम कहते हैं, जो कि एक पारदर्शी पार्ट है हमारे आई बॉल का। आगे का जो 1/6 है, 1/6 भाग जो है, वो आगे इस ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी तश्तरी नुमा एक स्ट्रक्चर कॉर्निया उससे बनता है। आसपास उसके सफ़ेद जो हमें दिखाई देता है वो भी एक कंजंक्टाइवा की एक लेयर है जो कवर करती है आई बॉल को। और आई बॉल जो है वो आगे फिर तीन लेयर्स में स्क्लेरा कोरोइड रेटिना है, और जो हमारी पुतली है उसके पीछे, जो हमारी ये पुतली आमतौर पे हम कॉर्निया को कह देते हैं, बल्कि पुतली प्यूपल है, आयरिस है कॉर्निया के पीछे, और फिर लेंस है, और एक जेली लाइक सब्सटेंस है आगे के चैम्बर में, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, और लेंस के पीछे वाले जो सेगमेंट है उसमें, उसे विट्रस हेमरेज विट्रस कहते हैं, जेल टाइप सब्सटेंस है
0: जी।
1: और ये आँख की बनावट को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आई बॉल के चारों तरफ मसल्स इंसर्टेड हैं जो उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और रेटिना से जो है नर्व सेल्स, किंग्लियन सेल्स मिलके एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, जो कि आँख को हमारे दिमाग के एक विशेष भाग से जोड़ती है।
0: जी डॉक्टर साहब, आई फ्लू के बारे में बात करेंगे। आई फ्लू है क्या और किन कारणों से ये होता है?
1: आई फ्लू जैसे हम आम भाषा में आँख आना कहते हैं, या लाल आँख पिंक आई कहते हैं। आई फ्लू के कारण तो बहुत से हैं, जिसमें बैक्टीरियल कारण हैं, वायरल कारण हैं
0: जी,
1: और एलर्जिक कारण हैं।
0: तो ये पहचान कैसे होती है कि ये कौन से कारण से आई फ्लू हुआ है?
1: इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो अलग अलग हैं सभी में। कुछ तो कॉमन भी हैं
0: जी,
1: कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पेशेंट की हिस्ट्री से या उसकी प्रेजेंटेशन से पिकअप करते हैं। वो जो बताता है अपनी समस्या विकार, जो बताता है सिम्टम्स बताता है, उससे पिकअप करते हैं। उसके बाद आई एग्जामिनेशन का पार्ट आता है, फिर हम उसे पेशेंट को स्लिट लैम्प पे देख के कुछ अन्य चीज़ें जो हैं आँख में, उनको बारीकी से उनकी जांच करते हैं कि डिस्चार्ज किस तरह का है, रेडनेस किस तरह की है, सुपरफिशियल है, डीप है, डिस्चार्ज का कलर क्या है, कोई और चीज़ तो जैसे फॉलिकल्स वगैरह बन जाते हैं या पेपिले बन जाते हैं कुछ अलग अलग तरह के कंजंक्टिवाइटिस में, उनको देखा जाता है, कॉर्निया साफ़ है नहीं है, आँख का प्रेशर कितना है, अंदर के पानी में कोई सूजन तो नहीं है, अंदर की आँख के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई सूजन तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हुए और पेशेंट्स के सिम्टम्स को सुन के, हिस्ट्री लेके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या रहते हैं आई फ्लू के?
1: अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करूँ, लक्षणों की बात करूँ, तो इसमें लालगी आँख में, पानी चलना या किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे कि आँख में रेत के कण पड़े हों वैसी एक फीलिंग आना, और धुंधलापन आँख में कई बार आ जाता है, रोशनी से नॉर्मल

0: फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है। या जैसे जब हम एलर्जिक की बात करते हैं तो एलर्जीज़ में ये सीजनल एलर्जिक भी हो सकता है, पेरिनियल एलर्जिक भी हो सकता है, और एलर्जिक जो है ये कई बार अन्य शरीर की बीमारियों के साथ एक सिंड्रोम के रूप में भी रह सकता है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक नाक चलना, छींकें आना, गला खराब होना सोर थ्रोट के साथ, एक्जीमा, स्किन की कोई, त्वचा की कोई कंडीशंस हैं एक्जीमा में, उसमें हो सकता है, आस्थमा में ये साथ में हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के डायग्नोसिस बनाना है
1: जी। बहुत से लक्षण डॉक्टर साहब आपने बताए, और श्रोताओं इन लक्षणों में यदि आपको भी कोई लक्षण नज़र आ रहा है तो आज कार्यक्रम में हमने विषय लिया है बातचीत का, आई फ्लू और सामान्य नेत्र विकार। डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास हमारे साथ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे आप कोई भी प्रश्न नेत्र विकार के विषय में पूछ सकते हैं, आई फ्लू के विषय में। 01892-224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, कहिए डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछिए अपना।
2: ये जो हल्का फुल्का आंखों का सूट जाना भी, क्या उनका लक्षण है क्या भैया आई फ्लू का?
0: हाँ, अगर आई फ्लू लंबे समय से है तो कई बार आंखों में, पलकों में सूजन आ जाती है, ये लक्षण हो सकता है। दर्द भी होगी पलकों में।
2: जी जी, और पढ़ाई वगैरह कारण भी होता है तो?
0: नहीं, पढ़ाई कारण आई फ्लू का तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे हम आगे बात करेंगे, अगर किसी को आई फ्लू हुआ है और घर का कोई अन्य सदस्य उसकी छुई हुई चीज़ों को, जैसे पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, किताबें, कुछ भी अगर टच कर लेता है तो, छू लेता है तो वो फैल सकता है, या क्लास से कोई ले आया हो स्कूल से। और
1: जी, इस विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। जांगड़ा साहब और कुछ पूछना चाहेंगे?
2: जी धन्यवाद
1: जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब देखिए, हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं और पूरी तरह से जानना चाहते हैं इस रोग के बारे में, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं श्रोताओं के लिए कि बदलते मौसम में ये संक्रमण ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका क्या कारण रहता है?
0: जो संक्रमण ये मौसम से रिलेटेड है जो बीमारी, वो तो एलर्जिक है, लेकिन जैसे ये अभी ये मौसम जो बरसात का है हमारा चला हुआ, इसमें हमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ये संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, जहाँ पे समूह में, जैसे कि अगर बैंक एम्प्लॉयज़ की बात करें हम, या स्कूल्स में बात करें, कॉलेजेस में बात करें, या जहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे काम करते हैं, तो क्योंकि ये एडीनो वायरल है, और ये जो संक्रमण है छूने से, कॉमन वस्तुओं को छूने से जो है ये फैलता है। आँख का जो डिस्चार्ज है, जैसे सपोज करो किसी का रुमाल छू लिया आपने, या टॉवल छू लिया, साबुन यूज़ कर लिया, कॉमन चीज़ें हैं जैसे डोर हैंडल्स हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, बसों में ट्रेवल करते हैं आप, हैंडल्स पकड़ते हैं, कुछ पकड़ते हैं, नॉब्स पकड़ते हैं, तो ये संक्रमण जो है छूने से तो फैलता है। जैसे मैंने पहले बात करी कि अगर एलर्जिक है तो किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, नोज़ में स्नीजिंग, नाक से छींके वगैरह ज़्यादा मार रहा है, तो वो ड्रॉपलेट से भी इट कैन स्प्रेड, तो
1: यानी खांसने और छींकने से भी ये फैल सकता है।
0: हाँ, अगर उस तरह का होगा तो। वायरल जो है ये तो साफ़ सफाई में खास ध्यान रखने वाला है, और बार बार जैसे हाथ धोएं आप, और कॉमन चीज़ों को टच ना करें, ग्लासेस पहन के रखें
1: जी,
0: उससे भी आप बार बार आंख को छुएंगे नहीं, अगर आपकी एक आंख में हो गया है तो चांसेस हैं कि दूसरी में हो जाएगा
1: जी,
0: घर के अन्य सदस्यों को हो जाएगा,
1: तो एक दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा फायदा है।
0: हाँ, दूरी बना के रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और अगर आप डार्क ग्लासेस पहन लेंगे तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो आप बार बार आंखों को छुएंगे नहीं, दूसरा जो इस कंजंक्टिवाइटिस में जो मैंने बात करी कि नॉर्मल रोशनी भी बहुत ज़्यादा चुभती है आंखों को, तो वो चुभना बंद हो जाएगी, उससे भी आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी
1: जी। डॉक्टर साहब, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस जो आपने अभी बताया है, इसके लक्षण ये बताए हैं, और साथ में एक इन्फ्लुएंजा भी होता है, तो इनमें क्या फ़र्क है, ये किस तरह की?
0: इन्फ्लुएंजा तो वायरस की एक

0: प्रजाति है।
1: जी,
0: तो अगर वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है तो वो मल्टीपल वायरसेस हैं, डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि इसको कॉज करते हैं। इन्फ्लुएंजा जो हम है कॉमन कोल्ड के लिए टर्म यूज़ कर लेते हैं।
1: जी जी।
0: जो आँखों में संक्रमण है वो ज़्यादा एडीनो वायरस के कारण या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण या हर्पीस जोस्टर वायरस के कारण, एंटीरो वायरस, इन वायरसेस के कारण ज़्यादा रहता है।
1: जी, एक श्रोता जुड़ना चाहते हैं हमसे। हेलो,
2: गाड़ी से बोल रहा हूँ।
1: जी, नाम एक बार फिर से बताइए।
2: राणा
1: जी, राणा जी, रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए या उसे थोड़ा दूर हट जाइए जिससे आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुँचे।
2: हाँ जी, दूर है
1: जी। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
2: मेरा प्रश्न ये है कि आँखों के नीचे जो फ्लैश होता है वो अगर उसमें मोटा हो जाए, भारी हो जाए, तो क्या कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है?
0: नीचे की पलक में जो सूजन की या फुलाव की आप बात कर रहे हैं, उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकती है कि बढ़ती उम्र के कारण जो है वो नीचे की पलकें जो हैं भारी हो गई हैं। लेकिन अगर ये सूजन जो है आपको सुबह के समय दोनों आँखों में आ रही है और काफ़ी लंबे समय से आ रही है, तो आपको अपने किडनीज़ की जांच भी करवानी चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल के कारण हमें मस्से से दिखाई देते हैं वो यूजुअली ऊपर वाली पलकों में, नाक अंदर वाली साइड को, नाक वाली साइड में वो आते हैं, और वो नॉर्मल जो आपकी त्वचा का रंग है उससे रंग वो थोड़ा हल्का रहेगा।
2: अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ
0: जी,
2: तो मेरे को कई बार ऐसा महसूस होता है सवेरे सवेरे ना भी नीचे वाली साइड में कुछ पड़ा हुआ है फ्लैश।
0: हाँ जी,
2: तो वो शायद मैंने सोचा कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, शुगर के कारण भी हो सकता है।
0: नहीं, इसमें देखिए जांच करवाने पड़ेगी आपको, अपने ब्लड की, रक्त की जांच करवाने पड़ेगी। वेरियस टेस्ट होंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल भी देखेंगे और आपका रीनल फंक्शन टेस्ट भी देखेंगे।
2: जी हाँ, दूसरी बात है कि जो मेरा रेटिना है उसका ऑपरेशन हो चुका है।
0: हाँ जी,
2: मगर वो लाइट आई नहीं, वो डॉक्टर ने पहले कह दिया था कि ज़्यादा नहीं आएगी, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आप
0: जी,
2: तो वो रेटिना कमज़ोर है मेरा
0: जी।
2: कोई आगे आगे तो है नहीं, कोई ज़्यादा इलाज नहीं है कोई?
0: देखिए, अगर वो देख चुके हैं, बता चुके हैं और आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो उन्होंने जो भी बताया है सही बताया होगा।
2: जी हाँ, तो वो कहते हैं जो होनी चाहिए लाइट इससे ज़्यादा नहीं आएगी।
0: जी, रेटिनल डिजीज़ में थोड़ा सा ये रहता है कि जो आपका विजन है वो उसका जो रिकवरी है वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार का आपका पर्दे का विकार है, कितना डैमेज हुआ है, क्या वो डैमेज रिकरेंट रहा है, बार बार हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका विजुअल आउटकम कैसा रहेगा। तो अगर डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि विजुअल आउटकम अच्छा नहीं रहेगा तो उन्होंने ठीक ही बताया होगा
1: जी। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर साहब से मिल लीजिए।
2: ठीक है सर
1: जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए,
0: धन्यवाद
1: जी। श्रोताओ, आई फ्लू, सामान्य नेत्र विकार, इन विषयों पर हम आज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास आज हमारे साथ हैं जानकारी देने हेतु, और 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आई फ्लू के विषय में, सामान्य नेत्र विकार के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, नाम बताइए।
3: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
1: जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे?
3: तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो आंखों का जो है वायरस होता है, और मानसिक आंखों में जो है आई फ्लू या कुछ ऐसा वायरस हो गया, तो जैसे खासकर जो है गर्भवती महिला, तो मैं ये कहता हूँ कि जो जैसे जो बच्चों को दूध पिलाती है माँ, तो छोटे बच्चों को किस तरह से जो है पिलाया जाए, मेरा ये प्रश्न।
0: देखिए, एक तो माँ को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि दवाई जो है वो आँख में डालनी है, तो इतना कोई बच्चे के ऊपर तो असर नहीं उसका होगा। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट शुरू कर दें, सही इलाज डॉक्टर को दिखा के, और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें क्योंकि माँ ने तो बार बार बच्चे को गोद में लेना है, छूना है, नहलाना है, उसका ख्याल रखना है, तो अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और कोशिश करें कि अपनी आंखों को हाथ लगा के बच्चे को उस टाइम ना छुएं। जी
1: जी,
0: या बच्चे को उसी टाइम माँ के पास लाएं, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है जो दूध पीने की उम्र का है तो उसी टाइम पास लाएं जब उसे फीड करना है, अन्यथा घर का कोई और सदस्य उसे संभाले।
3: जी जी। जी, धन्यवाद
1: जी, शुक्रिया राकेश फोन करने के लिए। दोस्तों आप भी हमें फोन कर सकते हैं 01892224391, यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, विषय है आई फ्लू और सामान्य नेत्र विकार। और आज कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
4: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: ब्रेक के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आई फ्लू और सामान्य नेत्र विकार विषय पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास जी। डॉक्टर साहब, बात बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा सारे श्रोताओं को हमारे मिल रही है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने प्रकार बताए हैं कि कभी बैक्टीरिया के कारण भी ये रोग हो सकता है या एलर्जिक हो सकता है, तो हम किस तरह से अंतर इसमें ला सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये किस वजह से हो रहा है?
0: जो वायरल है इसमें जो आपका डिस्चार्ज है वो पानी की तरह है, वाटरी डिस्चार्ज जैसे हम कहते हैं। दूसरा, इसमें जो कंजंक्टाइवा में जो सूजन है या लालगी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और जो बैक्टीरियल है उसमें जो डिस्चार्ज है वो हम अपनी मेडिकल भाषा में हम उसे म्यूकोपुरोलेंट डिस्चार्ज कहते हैं। ये थोड़ा सफ़ेद हल्का पीला या पीले रंग का डिस्चार्ज है। और सुबह उठते ही आप पाएंगे कि जो पलकें हैं वो चिपकी हुई हैं, उनके जो बाल हैं पलकों के वो चिपके हुए हैं, मैटिंग है। और इसमें जो आपका जो कंजंक्टाइवा में जो लालगी है वो इतनी डरावनी या इतनी भयानक नहीं दिखती। जो एलर्जिक है, एलर्जिक में भी आपका बिल्कुल जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में रोपी डिस्चार्ज, तो जैसे आप अगर उसको खींचेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट सा थ्रेड की तरह, धागे की तरह लंबा सा एक पदार्थ सा खींचता चला आएगा सुबह के टाइम। और इसमें इंटेंस इचिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा खारिश जो है वो बच्चा या जो भी रोगी है वो हमें बताएगा। बाकी जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है। कई बार अगर म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज है और वो जैसे मैंने कहा कि कॉर्निया या स्पष्ट मंडल पे वो एक झिल्ली सी बना देता है, तो कई बार हमें लाइट के चारों ओर रंगदार गोले दिखाई देते हैं म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज के केसेस में। लेकिन सेम जो कंडीशन है, ये जो लाल जो रंगदार गोले दिखाई देते हैं रोशनी के आसपास, ये एक्यूट अटैक ऑफ ग्लॉकोमा में भी कई बार पेशेंट्स को दिखाई देते हैं, जब स्पष्ट मंडल में या कॉर्निया में सूजन आ जाती है या यूं आसान शब्दों में कहें कि पानी भर जाता है उसमें, तो उस टाइम भी ये दिखाई देते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये तो पेशेंट भी खुद देख सकता है और बता सकता है कि खारिश ज़्यादा है या लालगी ज़्यादा है या डिस्चार्ज कैसा है, वाटरी है या म्यूकोपुरुलेंट है या रोपी डिस्चार्ज है, ये सब पेशेंट बता सकता है। फिर डॉक्टर्स के लेवल पे आ गया कि जब विशेषज्ञ आपको देख रहा है, जांच कर रहा है, मशीनी जांच आपकी, तो वो देखेंगे कि वो जो कंजेशन है कंजंक्टाइवा में वो कैसा है, सुपरफिशियल है, ऊपर है, डीप है, और जो आपके पलके हैं उनको मोड़ के वो देखते हैं कि उसमें फॉलिकल्स दिख रहे हैं या पैपिला दिख रहे हैं। ये अलग अलग जो कंजंक्टाइवा है आपका पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा, उसमें अलग अलग दानेदार उभार से उत्पन्न होते हैं बीमारियों में, जिनको देख के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ वो बता सकता है कि हाँ अगर ये फॉलिकुलर है तो ये वायरल है, ये पैपिला एनलार्ज्ड हैं, जेंट पैपिलाज बन गए हैं तो ये एलर्जिक हो सकता है। जो मैं लालगी की बात कर रहा हूँ वो फॉर्निसिस में ज़्यादा होते हैं। अगर आप पलकों को खींचेंगे तो ये जो खड्डा नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बना, उनको फॉर्निक्स बोलते हैं। उन फॉर्निसिस में वो लालगी बहुत अत्यधिक होगी। कंजंक्टाइवा इन्वॉल्व है इसलिए सुपरफिशियल होगा, अगर डिफ्यूज भी हो सकता है। अगर सिलियरी कंजेशन है या सरकम सिलियरी कंजेशन है, डीप है, तो वो काले मोती एक्यूट अटैक जो आपका काले मोती में पड़ता है उसमें वैसा नज़र आएगा। यूज़

0: जो हमारा ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, इसमें विजन या जो दृष्टि है वो बाधित नहीं होती जल्दी,
1: जी
0: अनटिल
1: जी
0: की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, बट इनमें दृष्टि बाधित नहीं होती। लेकिन जो आँखों के अंदर सूजन हो जाएगी, उसमें दृष्टि में गिरावट हो जाएगी। अगर आपका जो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्यूट अटैक पड़ जाता है काले मोतिया का, तो उसमें भी कॉर्निया में एडिमा या सूजन होने के कारण दृष्टि बाधित हो जाएगी। तो
1: जी
0: उस उन केसेस में, कंप्लेंट्स में ज़्यादा यही आता है कि नज़र में फ़र्क पड़ गया, पेन बहुत होता है। अगर आपका एक्यूट अटैक है काला मोतिया का, तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा।
1: जी
0: जबकि जो हमारे दूसरे कंजंक्टिवाइटिसेस हैं, चाहे वो एलर्जिक हो, पेन हो, वायरल हो, एलर्जिक हो, बैक्टीरियल हो, उसमें पेन जो है इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम नहीं रहता है। हो सकता है उसमें भी,
1: जी जी जी
0: जब
1: लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं
0: लिड्स में
1: रहेगा।
0: स्वेलिंग जब हो जाएगी, और जब आपका कंजंक्टिवा में भी इतना इन्फ्लेमेशन होगा, तो पेन उसमें भी होगी, हल्की होगी। लेकिन जो इसमें आपको ग्लोकोमा में या जो यूवियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसमें दृष्टि में बाधा होना और ज़्यादा पेन होना, ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी।
1: जी
0: और अगर काला मोतिया का एक्यूट अटैक है, तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। कई
1: जी
0: बार
1: जी
0: हेडेक्स, ब्रो पेन, ब्रो हेडेक के कारण भी पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, सूजन की आपने बात की है, आंखों में सूजन, आई फ्लू के कारण थोड़ी सूजन आना तो सामान्य बात है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है।
0: हाँ, अब ऐसा है, जैसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस में यूजुअली ये 2 से 3 हफ्ते तो चलता ही है,
1: जी
0: और हम ये मानते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने बताया कि काला चश्मा वगैरह लगाना है, अगर ये वायरल एपिसोड जो है ना लंबा चला जाए, या किसी की इम्यूनिटी कम है, शुगर का पेशेंट है, तो उन केसेस में, या बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी ऐसी है जो बहुत घातक है, तो उन
1: जी
0: केसेस में लिड्स में स्वेलिंग आना जो है वो स्वाभाविक है, हो जाता है। लंबे समय हो गया है वायरल इन्फेक्शन का, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये लिड्स में स्वेलिंग आ जाती है। कुछ केसेस में जहाँ वायरस लोड जो है बहुत ज़्यादा है, या जो टाइप ऑफ वायरस जिसने इफेक्ट किया है वो घातक श्रेणी में आता है, तो उन केसेस में भी जो पलकों में सूजन है जल्दी आ जाती है।
1: जी एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: नमस्कार जी।
1: जी, नमस्कार, परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम संजय कुमार है,
1: जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं धर्मशाला से बोल रहा हूँ सर।
1: जी, कार्यक्रम में आज विषय है आई फ्लू और सामान्य नेत्र विकार। इस विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास से आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?
2: जी सर।
1: जी पूछिए।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं रेटिना मंटोना का मरीज हूँ।
0: रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।
2: जी तो हमें भी आई फ्लू हो सकता है,
0: हाँ जी बिल्कुल।
2: क्योंकि दिखाई हमें देता नहीं है,
0: हाँ जी।
2: तो मैं इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता है
0: नहीं,
2: कि
0: आई फ्लू जो संक्रमण है ना, ये आई, एक तरह से समझिए कि आईज के बाहर के स्ट्रक्चर्स का संक्रमण है, तो ये तो
2: अच्छा
0: किसी को भी हो सकता है।
2: अच्छा अच्छा
0: जी
2: मैंने सोचा कि शायद हम नेत्रहीन हैं, तो शायद हमें नहीं होता होगा।
0: नहीं, तो आई बॉल तो है ना।
2: आई बॉल है
0: हाँ
2: मेरा।
0: जी, ऐसा थोड़ा।
2: हाँ
0: हाँ, तो उसमें तो जो बाहर के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, कंजंक्टाइवा है, आपके लिड्स हैं, ये सब इन्वॉल्व हो सकता है।
2: अच्छा जी।
1: जी, और
2: अच्छा
1: कुछ पूछना
2: डॉक्टर
1: चाहेंगे?
2: साहब, एक छोटा सा मेरा और प्रश्न था
0: जी
2: आपसे।
0: जी पूछिए।
2: डॉक्टर साहब, ये जो जो बीमारी है मेरी, ये 0 से कम होती होती कम होती गई है,
0: हाँ जी।
2: तो इसका क्या कोई ये होता है कि 10 साल के बाद इतनी कम हो जाएगी, या 5 साल के बाद इतनी कम हो जाएगी?
0: नहीं, नज़र जो है वो तो धीरे धीरे कम होती है। जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो बताना तो मुश्किल है, क्योंकि इसकी भी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की भी बहुत सी आगे वेराइटीज़ हैं।
2: अच्छा
0: कुछ जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, है ना, कुछ में बहुत लेट जो है वो आता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर 2-3 साल में जो आपका विजन है, या 5 साल में, ये ड्रॉप करेगा।
2: अच्छा हाँ जी, क्योंकि ऐसा है कि मैंने 45 साल की उम्र में चेक करवाया था ये ना,
0: जी
2: तो उस वक्त मेरा 75 था
0: जी
2: डिसेबिलिटी।
0: हाँ जी

0: अब मैं 61 का हो गया हूँ
1: जी,
0: यानी कि 16 साल के बाद पूछना चाहता हूँ कि मेरा कम हुई होगी कि उसी जगह बताई होगी।
1: देखिए इसमें अगर
0: हाँ,
1: इसमें अगर आपका ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो रहा होगा या मैकुलर एरिया इन्वॉल्व हो रहा होगा तो डेफिनेटली विजन ड्रॉप किया होगा। बाकी आप खुद भी अपनी दिनचर्या में भी महसूस कर पाते होंगे कि आपकी दृष्टिविहीनता कितनी बढ़ गई है।
0: नहीं, और दिखाई तो बिल्कुल नहीं देता है अब तो।
1: नहीं देते तो
0: पहले 45 वर्ष में मैंने जब करवाया था ना, 75 था उस वक्त, मेरे को थोड़ा बहुत दिखाई देता, मैं चल फिर सकता था
1: जी।
0: अब तो बिल्कुल भी, मैं डिपेंडेड दूसरे बंदे पे हूँ।
1: तो आप मतलब आप शुक्रवार को जोनल हॉस्पिटल आइए, उस दिन मेडिकल बोर्ड बैठता है और पुनः जांच करवा लीजिए। जो भी सहायता हमारे और से हो सकती होगी वो हम आपकी जरूर करेंगे
2: जी। संजय तो जी, ये जांच का विषय है
0: जी। तो कुछ लाना पड़ेगा उसके लिए?
1: पुराने रिकॉर्ड्स ले आइए और कुछ नई जांचें आपको लिखी जाएंगी, वो करवानी पड़ेंगी साथ में।
0: ठीक है सर
2: जी। और कुछ पूछना चाहेंगे?
0: नहीं,
2: थैंक यू। शुक्रिया फोन करने के लिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों में सामान्य लाली आना या किसी तरह की जलन होना, और कई बार आंखों में सामान्य भाषा में कहें तो रड़क जैसी लगती है, क्या ये भी आई फ्लू से रिलेटेड हो सकता है?
1: जी बिल्कुल हो सकता है। जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, ये एक सिम्टम है जो वायरल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये संक्रमण जो है ये छूने से फैलता है, खांसने छींकने से भी फैलता है, और कोई ऐसी सतह जहाँ पब्लिक प्लेस में बार बार हाथ जहाँ पर लगते हैं वहाँ से भी ये संक्रमण फैल सकता है, क्या हवा से भी इस संक्रमण के फैलने की संभावना रहती है?
1: हवा से तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो एलर्जिक हैं वो तो हवा से फैल सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो आपके जो जिसको हम आम भाषा में कुर कहते हैं, फूलों का कुर हो या ग्रास का हो, तो वो तो हवा से स्प्रेड होगा, तो इट कैन इफेक्ट। और जो आपका जैसे मैंने कहा फ्रिंजो कंजंक्टाइवल फीवर है, उसमें जो संक्रमण है या जो वायरल है अगर फीवर के साथ है, तो उस टाइम वो जो नोज से ड्रॉपलेट्स वगैरह हवा के थ्रू स्प्रेड होंगे, उससे भी ये स्प्रेड कर सकता है। एज सच बैक्टीरियल और वायरल जो हैं वो हवा से नहीं ये जाते, ये टच से ही जाएंगे।
2: जी, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताइए।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: अजय गुप्ता, सिद्धवाड़ से बोल रहा हूँ सर।
2: जी अजय जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से विषय के बारे में?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: सर जी, जो मेरे आंखों में थोड़ा ना जैसे जैसे धूप निकलती है पानी निकलना शुरू हो जाता है आंखों से
1: जी,
3: और जैसे जैसे जैसे थोड़ा शुरू होता है तो फिर बंद अपने आप बंद हो जाता है पानी भी
1: जी। तो धूप से भी हाँ, धूप से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, उसमें ऐसा हो सकता है, या जैसे ठंड के मौसम में सुबह के टाइम जब हवा ज़्यादा ठंडी होती है उस टाइम भी ये प्रॉब्लम रह सकती है।
3: जी जी जी सर, होती है उस टाइम भी होती है, मेरे को सर्दी में होती है प्रॉब्लम।
1: हाँ जी।
3: तो इसका मतलब ऑपरेशन होता है या कोई दवाई डाली जाती?
1: नहीं नहीं, दवाई से उपचार सिंपल
3: दवाई से ठीक हो जाएगा।
1: हाँ, लेकिन इसमें यह है कि फिर भी जो जांच है मशीनी जांच करवाना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो पलकों में छेद होते हैं वो बंद होते हैं, तो वो देखना भी ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कारण कुछ और हो और उसके कारण आ रहा हो और आप सिर्फ तेज़ रोशनी से या ठंडी हवा से इसको रिलेट कर रहे हो।
3: जी सर, तो आप सर ये चेक कराना तो शुक्रवार को देखते हैं, वैसे वो दिन भी होता हुआ उस में।
1: सोम मंगल बुध वीर, सोम मंगल वीर शुक्र,
3: सोम मंगल वीर शुक्र, वही टेस्ट हो जाएंगे सर
1: जी।
3: बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
2: जी जी गुप्ता जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आंखों की जो जाँच की जाती है वो फिजिकली रूप से देखने से ही आई फ्लू के बारे में पता लग जाता है, या इसके लिए कोई रक्त जांच भी की जाती है?
1: रक्त जांच तो हम इसमें नहीं करते हैं, लेकिन अगर एलर्जिक हो तो जैसे हम सेंसिटिविटी, स्किन सेंसिटिविटी

0: टेस्ट्स कर सकते हैं।
1: जी
0: अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो तो कई बार हम जो डिस्चार्ज है उसका जांच करवा लेते हैं, जानने के लिए कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, और फिर वो टारगेटेड अप्रोच थोड़ा सा रखते हैं, ऐसी दवाइयां देने की कोशिश करते हैं जो पर्टिकुलरली उस स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया को कवर करती हैं।
1: जी अब डॉक्टर साहब बात करते हैं इसके परिणामों के बारे में, क्या आई फ्लू एक सामान्य संक्रमण है या इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं?
0: अगर दवाई समय पे ना डालें, सही दवाई ना डालें, कहीं से भी आप मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर ड्रग परचेज कर लें, बिना विशेषज्ञ को दिखाए अगर आप लंबे समय के लिए कोई ऐसी दवाई यूज़ कर रहे हैं जो आँख के लिए घातक हो सकती है, तो परिणाम घातक होंगे ही। दूसरा, अगर आप ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं तो भी कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाना स्वाभाविक है। और इसमें जब पेशेंट्स 2-3 हफ्ते के बाद ये कंप्लेंट लेके आता है कि अब मुझे दिखने में भी दिक्कत है,
1: जी
0: तो समझ लीजिए कि वायरस जो है उसने कॉर्निया की ऊपर की लेयर्स में घर बनाना शुरू कर दिया है। तो छोटे छोटे कई बार हम मेडिकल भाषा में कहते हैं एपिथीलियल माइक्रोसिस्ट्स बन जाते हैं या सब एपिथीलियल इनफिल्ट्रेट्स बन जाते हैं, और ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं 20-30% लोगों में ये हो जाता है। या जैसे मैंने पहले बताया कि कान के आगे गिल्टियाँ बन जाएंगी, दर्द होगी,
1: जी
0: जबड़ा खोलने पे भी दर्द होगी, बुखार भी आ सकता है, तो ये इस तरह की जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब कितना घातक हो सकता है परिणाम, क्या आंखों की रोशनी तक जा सकती है?
0: अगर वो जो जैसे मैंने बताया इनफिल्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हमें कई बार फिर साथ में लो डोज स्टेरॉयड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर वो निग्लेक्ट हो जाएं तो हाँ रोशनी बाधित हो सकती है।
1: जी
0: कम्प्लीटली तो
1: क्या
0: नहीं
1: ये
0: जा
1: आंशिक
0: सकते।
1: रूप से
0: हाँ
1: हो सकती है?
0: हो सकती है।
1: जी एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो भाई साहब, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं, नाम बताइए।
2: मेरा नाम अमर सिंह है जी।
1: अमर सिंह जी, रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए या उससे दूर हट जाइए।
2: मेरा गांव बजाज है, जिला कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ जी। अमर सिंह नाम है मेरा।
1: जी अमर सिंह जी, आंखों में कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको?
2: आ रही है डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब ये बात है कि जैसे ना मैं अखबार पढ़ रहा हूँ ना सिर पे रखकर,
0: जी
2: तो वो कम दिखता है मेरे को, और दूर से निगाह, दूर वाली निगाह ठीक है, जैसे दूर के आदमी कोई भी चीज में पहचान लेता हूँ।
0: उम्र कितनी है आपकी?
2: उम्र जी 60 साल है।
0: 60 साल है तो हाँ, इसमें आपको हॉस्पिटल में जाके ना अपनी जांच करवानी है, और पास का जो आपकी नज़र है उसके लिए चश्मा लगेगा आपको। तो हाँ जी, मतलब 40-45 साल की उम्र के बाद ना एकोमोडेशन का लॉस होता है बढ़ती उम्र के साथ, तो पास की नज़र में ये फ़र्क पड़ता है, आपको चश्मा जो है नज़दीक का पढ़ने वाला रीडिंग ग्लासेस जो है फॉर नियर वर्क ये लगवाने पड़ेंगे, जिनका इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपने नज़दीक का कोई काम करना है, अखबार पढ़नी है, मोबाइल देखना है, कोई बारीक काम करते हैं उस समय इसको लगाना है, हमेशा नहीं लगा के रखना है। तो आप नज़दीकी अस्पताल में जाके नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के आप
2: एक और प्रश्न मेरा कि जैसे कोई आँख में पड़ जाए कंकर काम करते समय,
0: हाँ जी,
2: तो क्या करना चाहिए
0: उस टाइम? तो साफ पानी से एकदम आपने आँख को धोना है, मलनी नहीं है। कई बार कंकर जो है ना वो कॉर्निया पे या स्पष्ट मंडल पे एब्रेशंस या खरोचे लगा देता है, तो आपने उसको विग्रेसली जोर से मलना नहीं है आँख को, साफ पानी से जितना आप ज़्यादा धो सकते हैं वो धो के तो फटाफट अपने जो नज़दीकी अस्पताल में आपने जाके दिखाना है।
1: जी अमर सिंह जी,
0: धन्यवाद,
1: शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे प्रश्न अमर सिंह जी ने पूछे, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सामान्य रूप से कितने समय बाद नेत्र जांच कराना आवश्यक होता है?
0: सामान्यतः साल में एक बार तो हर किसी को करवानी चाहिए।
1: जी जी,
0: स्कूल्स में हमारे बहुत से हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं स्टेट के, जहाँ पे बच्चों की जाके स्कूल्स में जाँच होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बता नहीं पाते हैं कि उन्हें कम दिख रहा है या एक आँख से नहीं दिख रहा, एक से देख रहे हैं।
1: जी
0: बच्चा अमूमन जब 5th-6th में पहुंच जाता है तब जाके ये कंप्लेंट लेके आता है। छोटे बच्चों में जो है पिकअप करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो भेंगापन की शिकायत या प्रोग्रेसिव जो लॉस ऑफ विजन है बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर्स, वो कई बार मिस हो जाते हैं। इसलिए एक साल में तो पेरेंट्स अपनी भी बच्चों की भी जान ज़रूर करवाएं। अब उन मरीज़ों की बात करते हैं जो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, डायबिटीज़ के ग्रसित हैं
1: जी,
0: तो ऐसे लोगों को तो हर 6 महीने में जांच करवानी चाहिए और अपनी जो मेडिसिंस हैं उनको डिलीजेंटली उनका फॉलो करना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम शेड्यूल पे लेना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ कार्यक्रम में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: ब्रेक के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आरोग्यम कार्यक्रम में आज जो विषय हमने लिया है वो है आई फ्लू और सामान्य नेत्र विकार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उपचार की बात करते हैं। जब आई फ्लू या इस तरह का कोई संक्रमण लेकर मरीज आपके पास आता है तो किस तरह का उपचार किया जाता है?
0: शुरुआत में तो हम अगर बैक्टीरियल है तब तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि पेशेंट कहता है कि रड़क हो रही है, डिस्चार्ज है, तो एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं, काला चश्मा लगाने के लिए कह देते हैं, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, हैंड एंड लिड हाइजीन दोनों मेंटेन करनी है। वायरल है तो, और अगर जैसे अभी हमने बात करी कि कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो वायरल में भी हम यूजुअली एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि स्प्रेडेड इन्फेक्शन हो जाता है, और कई बार हमें एंटीवायरल ड्रग्स का भी उपयोग करना पड़ता है। अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें हम एंटी एलर्जिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, एंटी हिस्टामीन्स होते हैं, और कुछ लुब्रिकेटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार खाने के लिए भी देनी पड़ती हैं, एंटी एलर्जिक्स देने पड़ते हैं। अगर किसी को फीवर है या लिम्फेडिनोपैथी है तो उन केसेस में फिर हमें जो है वो एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक दवाइयाँ जो हैं ये देने पड़ती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार होता ऐसा है कि मरीज़ दवाई लेना नहीं चाहता और घरेलू उपचार से ही खुद को ठीक करना चाहता है, तो ये आँखों के लिए कितना नुकसानदेह है?
0: देखिए, अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा है तो उसमें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुरंत आके अपने नज़दीकी अस्पताल में दिखाएं और विशेषज्ञ से ही परामर्श के बाद दवाई जो है वो इस्तेमाल करें। घरेलू जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके कॉर्निया ख़राब हो सकता है या कोई अन्य जो है ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जो बाद में फिर मुश्किल हो जाए ट्रीट करना
1: जी।
0: तो इट्स हमेशा बेटर है घरेलू में, बस आपने यही करना है कि अपना हैंड एंड लिड हाइजीन, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना है। आप अपनी आँखों को स्वच्छ नॉर्मल ठंडे पानी से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, काला चश्मा पहने, धूप से बचाएं, तेज़ रोशनी से बचाएं आँखों को, और कॉमन आर्टिकल्स को ना छुएं। इसके अलावा घरेलू उपचार दवाई के हिसाब से तो ना करें तो बेहतर है
1: जी। डॉक्टर साहब, सामान्य रूप से ये जो संक्रमण है ये कितने दिन में ठीक हो जाता है?
0: 2 से 3 हफ्ते जो है ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस लेता है
1: जी। एक श्रोता यहाँ हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
5: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
5: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं बताइए।
5: मैं सुशील कुमार जयसिंहपुर से बोल रहा हूँ
1: जी। सुशील जी, डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास हमारे साथ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आंखों के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए।
5: डॉक्टर साहब नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
5: सर जी, हमारा इतना लड़की का लड़का है, 5-6 साल का है
0: जी।
5: जब वो पहला हुआ था तो बहुत कमजोर था
0: जी,
5: और अब भी कमजोर है, और उसको ना बहुत पता नहीं दिखाई देता भी है ये नहीं है, लेकिन दौड़ता भागता तो है
0: जी,
5: और वो जो मतलब जो पुतली होती है ना
0: जी,
5: उसको मतलब जैसे साइड को घुमा के
0: जी
5: तब वो देखता है या देखने की कोशिश करता है,
0: हेड टिल्ट करता है
5: और बात तो ठीक करता है, कमजोर भी है,

0: क्या वजह हो सकती
1: तो
0: है,
1: आपने आज तक
0: तो
1: उसकी जांच नहीं करवाई आंखों की?
0: जांच करवाई सर, अभी मरिंदा में भी कराई थी पहले ना
1: जी,
0: और फिर उन्होंने उसको भेजा था उधर लड़की को पपरोड़ा साइड में कोई हॉस्पिटल है वहाँ चश्मा लगाने के लिए
1: जी।
0: तो पता नहीं उनको बोला मतलब हमारे भाई की लड़की है वो
1: जी,
0: तो जैसे मैं छोटा था ना उसकी डिलीवरी हमीरपुर में हुई थी
1: जी,
0: तो उन्होंने बोला हुआ कि इसको PGI दिखाना था, मैंने दिखाया नहीं, तो अब ज्यादा परेशानी हो रही है। तो अभी वैसे PGI गए हुए हैं वो, उनका टेस्ट चल रहा था न्यूरोलॉजी का या कैसे, कल कुछ और होगा, ब्लड वगैरह लिया है।
1: बच्चा समय से पहले पैदा हो गया था?
0: नहीं, हुआ तो समय से ही था।
1: वजन कम था?
0: हाँ जी वजन कम था।
1: ऑक्सीजन लगी थी?
0: ऑक्सीजन भी शायद लगी होगी, काफी दिन रहा था वो हॉस्पिटल, मेरे को ध्यान नहीं रहा इस बात का।
1: अगर बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है, वजन बहुत कम था, ऑक्सीजन लगी हुई है, तो उस समय आंखों के ना पर्दों की जांच की जाती है,
0: हाँ जी
1: ठीक है? और ये भी महीने के अंदर अंदर पैदा होने के महीने तक जो है ये जांच हो जानी चाहिए।
0: अच्छा जी,
1: तो अगर उस टाइम ऐसा कुछ रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को आरओपी की शिकायत ना हो।
0: वो क्या होती है सर?
1: अगर वो, ये पर्दे की एक बीमारी है,
0: हाँ जी
1: हाँ, जिसमें एबनॉर्मल वेसल्स बन जाते हैं और ये पर्दे को कमज़ोर कर देते हैं
0: अच्छा जी,
1: जी। आपके लिए
0: मतलब
1: तो इतना
0: सामने
1: ही,
0: नहीं देखता वो, देखेगा तो टेढ़ा होके देखेगा, पर हमें समझ नहीं आती उसको, दिखता भी है थोड़ा बहुत,
1: हाँ
0: दिमाग ठीक है, नाम याद रहते हैं, बात करता है
1: जी,
0: और घूमेगा भी, तो जैसे सीमित एरिया नहीं होता है
1: हाँ
0: उसी में, बाकी वैसे नहीं, उसको पता नहीं लगता
2: जी। आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से एक बार सलाह कर लें,
0: हाँ,
2: उन्हें दिखाएं
0: सर
2: जिससे
0: अभी ले
2: आपको,
0: गया इसको चंडीगढ़ ले गया, दिखा तो रहे हैं
1: हाँ
0: वैसे।
1: PGI में तो दिखा ही रहे हैं ना, आप बता रहे हो मरंडा में भी दिखा चुके हो, तो उस
0: हाँ
1: बच्चे
0: जी
1: को या तो कोई पर्दे की प्रॉब्लम है उसको, या उसको समय से उसको चश्मे की ज़रूरत थी जो नहीं लगा है, और शायद जो आँख है वो एक देखना भूल चुकी है। भेंगापन है क्या इस बच्चे को?
0: जी,
1: भेंगापन है? भेंगापन
0: नहीं, बस वैसे अगर गौर से देखो ना
1: हाँ,
0: तो ऐसे लगता है जैसे मतलब 100 में से 5% लगता है, मतलब माँ बाप के सामने तो नहीं बोल सकते हैं,
1: हाँ
0: ऐसे भी नहीं बोल सकते कि उसको दिखाई नहीं देता है,
1: हाँ जी
0: लेकिन जो दिखता है वो तो दिखता ही है ना।
1: जी चलो,
0: और
1: अगर
0: सर्दियों में
1: अगर पेशेंट PGI गया है तो ठीक है, वो अच्छा इंस्टीट्यूट, बहुत ही बेहतर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ का, वो सही इलाज उसका हो ही रहा है
2: जी। अपने
0: उन्होंने
2: चिकित्सक
0: बोला कि
2: से
0: कुछ जो,
2: परामर्श लेते रहिए और जांच कराते रहिए, समय कम
0: ठीक
2: है
0: है सर,
2: और श्रोताओं को भी मौका दे देते हैं, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, बातचीत को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और सफाई के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि नेत्रों का साफ रखना बहुत ज़रूरी है, और सफाई साधारण पानी के साथ की जानी सबसे ज़्यादा उचित है। क्या इसके अलावा और भी कोई प्रक्रिया है जिससे आँखों की सफाई रखनी चाहिए?
1: और तो हाइजीन तो हो ही गया, बाकी आपने जैसे कोई भी आपने रीडिंग का काम करना है
2: जी
1: या
2: जी
1: कंप्यूटर्स पे काम करना है, टेलीविज़न देखना है,
2: जी
1: तो एक छोटे से रूल्स हैं कि जैसे मोबाइल को आप कम से कम 1 फीट दूर पे रखो, कंप्यूटर को, स्क्रीन को या लैपटॉप को 2 फीट दूर पे रखो, कमरे की डायमेंशन के हिसाब से एटलीस्ट 10-12 फुट दूर जो है आपका टेलीविज़न होना चाहिए,
2: जी,
1: आँखों को बार बार पलकों को झपकाएँ
2: जिससे उनकी
1: ताकि
2: नमी
1: जो
2: बनी रहे,
1: नमी बनी रहे, जो टियर फिल्म है वो मेंटेन रहे, बार बार झपकाएं, देर रात को रीडिंग ना करें,
2: जी
1: ठीक है, उसमें भी आप स्टेयर करते हैं या जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी वगैरह देखते हैं ज़्यादा, तो उस टाइम भी वो ड्राइनेस वगैरह ना सब बढ़ जाता है, तो आँखों को पलकों को झपकाना बार बार जो है ये ज़रूरी है। और जो भी आप काम कर रहे हैं तो स्क्रीन्स को, बुक्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना बहुत ज़रूरी है, वेल लिट रूम होना चाहिए, जहाँ
2: जी
1: भी आप बैठे हैं उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए, चाहे वो
2: जी
1: सनलाइट हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, वो पर्याप्त होनी चाहिए,
2: जी
1: बहुत
2: डॉक्टर
1: डिम
2: साहब,
1: कमरे।
2: जल्दी जल्दी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आई फ्लू हो जाने पर आंखों की सिकाई करना कितना सही है?
1: सिकाई अगर जैसे पेन है, लिड स्वेलिंग है, तो आप जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है उसमें
2: जी
1: तो आप
2: जी
1: कोल्ड कंप्रेसेस देंगे,
2: जी जी
1: ठीक है, और अगर आपको वायरल या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो आप

0: कपड़े को, कॉटन सूती कपड़े को हल्का सा गर्म करके सेक दे सकते
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में
0: अगर
1: आई फ्लू हो
0: फ्लू हो
1: जाने पर
0: गया
1: क्या
0: है
1: करें?
0: तो कॉन्टैक्ट लेंस तो रिमूव करने हैं
1: जी
0: सबसे
1: जी जी
0: पहले, वो यूज़ नहीं करेगा पेशेंट।
1: जी
0: स्पेक्टिकल्स हैं तो स्पेक्टिकल्स यूज़ करेंगे।
1: जी चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आंखें स्वस्थ रहें?
0: जैसे कि हमने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यही बात करी है कि आपने जो पर्सनल हाइजीन है उसका विशेष ध्यान रखना है। सुबह उठ के आंखों को स्वच्छ जल से साफ करना है। जो आपके गैजेट्स हैं उनको आपने दूरी बना के रखनी है। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जो हैं वो आपने लेनी है। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, कंप्यूटर आईटी इंजीनियर हैं, तो आपने फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जो हैं वो ज़रूर लेनी है। आईज़ को बार बार ब्लिंक करना है।
1: जी डॉक्टर शैलेंद्र मिन्हास, आप आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: जी दोस्तों, आंखें अनमोल हैं, समय समय पर आंखों की जांच कराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आई फ्लू हो जाने पर सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुनील कुमार और विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। आप अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन कार्यक्रम आरोग्यम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम के तहत कल्पा में स्थापित नशा मुक्ति उपचार केंद्र महत्वपूर्ण परामर्श केंद्र बनकर उभरा। प्रदेश सरकार सीबीएसई स्कूलों में भर्ती करेगी 2000 शिक्षक। और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे के कारण लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। यह प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। वस्तु व सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
0: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम

0: के तहत जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा में स्थापित नशा मुक्ति उपचार केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित लोगों और उनके परिवार के लिए उपचार व परामर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इस केंद्र के लिए एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र से तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी मिल रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र की स्थापना के बाद से अब तक 272 बाह्य रोगी उपचार सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। अगस्त 2026 में ही केंद्र में 99 बाह्य रोगी उपचार सेवाएं दी गई है, जिनमें 21 नए पंजीकरण और 78 फॉलोअप उपचार शामिल है। उन्होंने कहा कि उपचार के लिए लगातार लोगों का केंद्र पहुंचना उपलब्ध सेवाओं के प्रति लोगों की बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है। जिला प्रशासन नशा मुक्ति उपचार पुनर्वास और परामर्श सेवाओं को और मजबूत करने के लिए कल्पा में एक समर्पित पूर्णकालिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। प्रस्तावित केंद्र का संचालन सहयोग संस्था के माध्यम से किए जाने की योजना है। उपायुक्त ने नशे की समस्या से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से समय रहते आगे आने तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कल्पा स्थित नशा मुक्ति उपचार केंद्र में निशुल्क और वैज्ञानिक उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध है, जिनका लाभ उठाया जा सकता है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश भर के CBSE स्कूलों में अगले 3 माह के भीतर 2000 और शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कल सोलन जिले के अर्की में राज्य स्तरीय शायर मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार ने कुछ माह पहले प्रदेश में 150 CBSE स्कूल खोलने की घोषणा की थी तो इस निर्णय का विरोध किया गया था। इन स्कूलों में शिक्षकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी सिफारिश से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में CBSE शिक्षा काफ़ी महंगी है, जबकि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी इसी स्तर की सुविधाएं कम खर्च में उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पानी की कमी की आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने समझौते की पूर्व निर्धारित शर्तों को स्वीकार कर लिया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिग्गल, भूमती और जयनगर के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 34,46,00,000 रुपए की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे पर होने के चलते उनके विभाग का कामकाज अन्य मंत्रियों को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विक्रमादित्य सिंह आधिकारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में ब्राजील दौरे पर है। हिमालय की संस्कृति और जलवायु को बचाने का संदेश लेकर ग्यालवा डोखंपा लाहौल पहुंच गए हैं। ग्यालवा डोखंपा 24 सितंबर तक गर्षा इको पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि दारचा से शुरू होकर त्रिलोकनाथ धाम में समाप्त होगा। इस दौरान उनके साथ द्रुपोन खामताक रिनपोछे और सोमांग रिनपोछे भी साथ रहेंगे। अधिक जानकारी हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
5: इस पदयात्रा में भारत सहित भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम से आए करीब 500 लोग शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा का संदेश है जलवायु और हमारी विरासत की रक्षा। लाहौल में पिछले कुछ सालों में पिघलते ग्लेशियर, बदलते मौसम और बढ़ता बाढ़ का खतरा भी चिंता का विषय बन चुका है। पदयात्रा के दौरान जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। ये यात्रा हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं

0: सुरेंद्र कुमार।
1: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल चंबा में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जिले में इन बसों के संचालन से ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही प्रदेश में 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 डीजल बसें खरीदने जा रही है। अग्निहोत्री ने बताया कि परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पथ परिवहन निगम में सरकार जल्द ही चालकों और परिचालकों की भर्ती करेगी। उन्होंने चंबा में निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग का निरीक्षण भी किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अनुसंधान संस्थानों की कथित तौर पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि विभिन्न मामलों में जिले के महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि टांडा अस्पताल में मरीजों को मूलभूत दवाइयां, इंजेक्शन सहित अन्य जरूरी दवाओं के उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में दूसरी जगह काम कर रहे सभी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द, करीब 2500 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, कार्मिक विभाग ने मूल स्थान पर लौटने के दिए आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शिक्षा निदेशालय ने सभी डेपुटेशन आदेश किए रद्द। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, हिमाचल में 2000 शिक्षकों की बंपर भर्ती, मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, सीबीएसई स्कूलों में देंगे सेवाएं, प्रदेश के बचेंगे 3000 करोड़। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, मेरी शर्तों पर हुआ किशाऊ बांध समझौता, दबाव के बावजूद प्रदेश के हितों के लिए अड़ा रहा। दैनिक भास्कर की एक खबर है, अब पंचायतों को जल्द मिलेंगे 16वें वित्त आयोग के 481 करोड़ रुपये। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पीडब्ल्यूडी और राजेश धर्माणी को सौंपा यूडी का अतिरिक्त जिम्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम के तहत कल्पा में स्थापित होगा नशा मुक्ति उपचार केंद्र, महत्वपूर्ण परामर्श केंद्र बनकर उभरा। प्रदेश सरकार सीबीएसई स्कूलों में भर्ती करेगी 2000 शिक्षक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे के कारण लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखे युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर। ये
6: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम गीतों का कारवा लेकर। और आज के सफर में आप सभी के हम सफर प्रवीण। प्रवीण का आप सभी श्रोताओं को सुप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जीनियस फिल्म के इस बेहतरीन संगीत के साथ। अरिजीत सिंह की आवाज, संगीत हिमेश रेशमिया का।

गीतों का कारवा हमारे श्रोता इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और अगला गीत हमारे सभी श्रोताओं के रेडियो सेट्स पर। दिल है तुम्हारा इस फिल्म से ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, नदीम श्रवण का संगीत है और बोल समीर के।

0: Fortilux Standard 6 Airbags और Fuel Efficiency up to 24.8 kmpl. ये है Epic New Maruti Suzuki Swift Petrol. अब पाइए पावरफुल Z Series इंजन के साथ, जो हर ड्राइव को बनाए मजेदार और इकोनॉमिकल. और अब मिलेगा टोटल बेनिफिट अप टू ₹35,000. स्टाइल, सेफ्टी और सेविंग सब एक ही पैकेज में. तो देर किस बात की, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर आज ही विजिट कीजिए और स्विफ्ट पेट्रोल घर लाएं. जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है. TNC अप्लाई.
1: गीतों का कारवा हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से. दामिनी फिल्म का गीत अब हमारे श्रोताओं की रेडियो सेट्स पर है. कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, संगीत नदीम श्रवण का, बोल समीर के

गीतों का कारवा ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को सिंग इज किंग फिल्म का ये बेहतरीन सा गीत। राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल की आवाजें बोल, मयूर पुरी की संगीत प्रीतम का

गीतों का कारवां ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज स्टूडियो में आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण। खानदानी सफाखाना फिल्म से ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। जुबिन नौटियाल, तुलसी कुमार की आवाजी, संगीत आदि।

1942 लव स्टोरी फिल्म से ये गीत हमारे श्रोताओं के लिए। कुमार सानू की आवाज, बोल जावेद अख्तर की।

इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कारवा यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मिलते हैं कुछ ही पलों में अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर। कार्यक्रम पहाड़ों के सुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बलदेव सिंह व साथियों की आवाज में गाए माता की इस भेंट के साथ।

जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।

हिमाचली गीत व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भर के CBSE स्कूलों में अगले 3 माह के भीतर 2000 और शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कल सोलन जिले के अर्की में राज्य स्तरीय शायर मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार ने कुछ माह पहले प्रदेश में 150 CBSE स्कूल खोलने की घोषणा की थी तो इस निर्णय का विरोध किया गया था। इन स्कूलों में शिक्षकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी सिफारिश से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में CBSE शिक्षा काफ़ी महंगी है, जबकि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी इसी स्तर की सुविधाएं कम खर्च पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिग्गल, भूमती और जयनगर के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 34,46,00,000 रुपये की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे पर होने के चलते उनके विभाग का कामकाज अन्य मंत्रियों को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विक्रमादित्य सिंह आधिकारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में ब्राजील दौरे पर है। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम के तहत जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा में स्थापित नशा मुक्ति उपचार केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए उपचार व परामर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इस केंद्र के लिए एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र से तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी मिल रहा है। अधिक ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र की स्थापना के बाद से अब तक 272 बाह्य रोगी उपचार सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। अगस्त 2026 में ही केंद्र में 99 बाह्य रोगी उपचार सेवाएं दी गई है, जिनमें 21 नए पंजीकरण और 78 फॉलोअप उपचार शामिल है। उन्होंने कहा कि उपचार के लिए लगातार लोगों का केंद्र पहुँचना उपलब्ध सेवाओं के प्रति लोगों की बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है। जिला प्रशासन नशा मुक्ति उपचार पुनर्वास और परामर्श सेवाओं को और मजबूत करने के लिए कल्पा में एक समर्पित पूर्णकालिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। प्रस्तावित केंद्र का संचालन सहयोग संस्था के माध्यम से किए जाने की योजना है। उपायुक्त ने नशे की समस्या से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से समय रहते आगे आने तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कल्पा स्थित नशा मुक्ति उपचार केंद्र में निशुल्क और वैज्ञानिक उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध है, जिनका लाभ उठाया जा सकता है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल चंबा में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जिले में इन बसों के संचालन से ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही प्रदेश में 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 डीजल बसें खरीदने जा रही है। हिमालय की संस्कृति और जलवायु को बचाने का संदेश लेकर ग्यालवा डोखंपा लाहौल पहुंच गए हैं। ग्यालवा डोखंपा 24 सितंबर तक गर्षा इको पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि दारचा से शुरू होकर त्रिलोकनाथ धाम में समाप्त होगी। इस दौरान उनके साथ द्रुपोन खामताक रिनपोचे और सोमांग रिनपोचे भी साथ रहेंगे। अधिक जानकारी हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
2: इस पदयात्रा में भारत सहित भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम से आए करीब 500 लोग शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा का संदेश है जलवायु और हमारी विरासत की रक्षा। लाहौल में पिछले कुछ सालों में पिघलते ग्लेशियर, बदलते मौसम और बढ़ता बाढ़ का खतरा भी चिंता का विषय बन चुका है। पदयात्रा के दौरान जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। ये यात्रा हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम के तहत धर्मशाला में आज सुबह साईं हॉस्टल से मीडिया कर्मियों के लिए संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों के साथ साथ साई हॉस्टल के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। धर्मशाला में NCOE के सहायक निदेशक जयप्रकाश साहनी ने कहा कि मीडिया समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुमन।

0: साहित्य वो कलात्मक लिखित अभिव्यक्ति है जिसमें मानव अनुभव और विचार शब्दों के माध्यम से पेश किए जाते हैं, जिसमें कविता, कहानी और नाटक भी शामिल हो सकते हैं। श्रोताओ, हमारा साहित्य हमारे समाज के रीति रिवाजों, संस्कृति और जीवन के आईने की तरह दिखाता है। तो चलिए, आज के साहित्य सुमन कार्यक्रम में आपसे रूबरू करवाते हैं साहित्य जगत की ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने विचारों को कलम के जरिए कागज पर उतारकर उन्हें साहित्यिक रूप प्रदान किया। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम से आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं हेमंत जी से, जो वर्तमान में संपादक है दैनिक समाचार पत्र हिमाचल दस्तक में। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कविता और पत्रकारिता, इन दोनों विधाओं को आप किस तरह से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं?
1: देखिए, दोनों एक दूसरे से वैसे तो जुड़ी है चीजें, लेकिन मूलतः मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ और पढ़ता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ खूब सारा। और शुरुआत जाहिर है कुछ किताबों से ही होती है, बाद में पत्रकारिता की दुनिया में आ गया, तो जुड़ाव दोनों से ही है
0: जी।
1: मुझे लगता है कि पूरक है दोनों एक दूसरे के, कि अगर आप पत्रकार हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत है
0: जी। जी,
1: तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं
0: जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक पत्रकार और एक कवि, इन दोनों में आप स्वयं किस रूप में अधिक सहज महसूस करते हो और क्यों?
1: मेरा एज ए करियर भी और एज ए पैशन भी
0: जी,
1: वो तो पत्रकारिता ही है, जर्नलिज्म भी है और कई राज्यों में काम किया है मैंने।

0: हिमाचल के अलावा पंजाब में काम किया है, चंडीगढ़ में किया है, जम्मू कश्मीर ज़्यादा रहा, 6-7 साल रहा, 5-6 साल वहाँ रहा हूँ काम करने का। तो जर्नलिज्म तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसी के साथ ही जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो पढ़ने लिखने का है, तो उसमें मुझे पोइट्री से प्रेम है
1: जी।
0: तो एक पैशन है, एक आप कहें कि प्रेम भी है तो कविता आपको मैं उस तरह से लेता हूँ।
1: आपके कहने का अभिप्राय कि पत्रकारिता करते करते आपको जो है वो लिखने का शौक हुआ और आपने कविताएं लिखना भी शुरू कर दिया।
0: नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पहले पत्रकारिता आई कि पहले कविता आई, पर ये जरूर है कि पहले किताबें आई और कुछ लिखना शुरू किया, आड़ा तिरछा, जिसको आप कविता भी कह सकते हैं सारा, और पत्रकारिता तो फिर बहुत बाद की बात है, जब एज ए करियर कुछ आपने चुनाव करना है तो फिर पत्रकारिता आई। शुरुआत तो लिटरेचर से हुई निश्चित तौर पर।
1: चलिए ये बताइए कि आपकी पहली कविता कब और किन परिस्थितियों में जन्मी?
0: मेरे घर में थोड़ा साहित्यिक किताबों का सिलसिला था पढ़ने का
1: जी, तो आपकी रुचि जो है वो
0: और हाँ, वहाँ वो जो भी पढ़ने को मिलता था स्कूल की किताबों के अलावा, और जिस

0: जी
1: तो तुकबंदियों से एक तरह से शुरू हुई, आप उसको गजल कह लें, उसको तुकबंदी कह लें, तो वो शुरुआत कविता की उस तरह से हुई, गजल की हुई पहले, और बाद में फिर कुछ कवियों को पढ़ा, कुछ विदेशी कवियों को पढ़ा, हसूल रमजातो हमजातो रशियन कवि है उनको पढ़ा, जो हिंदी में जो ट्रांसलेट किया हुआ मिला उनका, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, गुलजार को पढ़ा, फिर वो कविताओं के साथ कुछ
0: जी जी.
1: ऐसा जुड़ना हुआ। और मैं मजे की बात आपको बताता हूँ कि जर्नलिज्म में आ गया था मैं, जनसत्ता एक अखबार रहा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, उसका मैं संवाददाता पहले था, तो बहुत सारी गोष्ठियों में आना जाना रहता था, कवि सम्मेलनों में, उस तरह का सारा, लेकिन कविता लिखता रहता था, कुछ भी बात हुई तो चलो कुछ लिख दिया, जो आप खबर में नहीं लिख पा रहे तो आप कविता में लिख दिए गए सारे। लोग कहते हैं कि कविता मेरी कैसे शुरू हुई कि हम किसी पत्रिका में छपे, हम किसी अखबार में छपे, लेकिन शायद मैं पहला ऐसा रहा होगा जिसकी कविता ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुई।
0: जो
1: एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक उस तरह का जो सशक्त माध्यम की हम बात करें, तो वो शुरुआत रेडियो से हुई है और आकाशवाणी शिमला में, ये शायद 1999 की 2000 के आसपास की बात है, इस मास का कभी एक कार्यक्रम आता था
0: जी जी।
1: और वहां पे पहुंचा कैसे मैं, इसकी भी एक बड़ी मजेदार कहानी है कि कार्यक्रम था हमारे शहर में, मैं सोलन से हूँ बेसिकली, तो कार्यक्रम था यशपाल जयंती पे, और यशपाल जयंती पे मैं एज ए संवाददाता उस कार्यक्रम की कवरेज के लिए गया हुआ था वहां पे, तो कुछ बात हुई, चूंकि यशपाल जी मैंने पढ़े हुए थे पूरे, ऐसा कुछ चीज नहीं थी यशपाल जी जो मैंने तब तक पढ़ा नहीं था, तो कोई बात हुई तो किसी वक्ता की बात मुझे खराब लगी वहां पे, तो मैंने वो उठ के कहा कि देखें आप ये गलत बोल रहे हैं, ये उपन्यास फलां है, और उन्होंने ऐसी बात कही। तो वहां पे दो लोग थे उस कार्यक्रम में, मैं बार बार उनका कई बार नाम लेता हूँ, एक थे डॉक्टर केसी दुबे, वो स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो शिमला के, और एक थे जगदीश शर्मा जी, डॉक्टर जगदीश शर्मा, वो भाषा एवं संस्कृति विभाग के तब निदेशक उपनिदेशक थे। तो कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि कौन है, ऐसी बात कही और बीच में कही और इस तरह की, तो कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ऐसे ऐसे के, और क्या करते हैं, मैं कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो दुबे जी और साथ खड़े थे कि आप आइए ना रेडियो में आपको रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर मैंने एक अट्ठी की कविताएं जो इधर उधर कहीं लिख के रखी होती थी तो उनको लेके पहुंच गया, तो 10-12 कविताएं, वो 8-10 कविताएं पहली बार मेरी रिकॉर्ड हुई, वो ऑल इंडिया रेडियो से ही हुई
0: जी, उन्हीं
1: तो
0: से प्रसारित
1: हाँ पहला जो एक इस तरह का प्लेटफॉर्म आप बड़ा कहें तो वो आकाशवाणी शिमला था, और उसके पीछे दुबे जी और डॉक्टर जगदीश शर्मा थे कि कविताएं हैं और आप रेडियो पे इसको पढ़े वहां पे। तो उसके बाद कई बार हुआ रेडियो में, फिर छपा मेरा बहुत बाद में, लेकिन रेडियो में मैं आप कहें कि साल में 2-3 बार कुछ कार्यक्रम मेरे हो जाया करते थे कविताओं के, तो मेरे लिए रेडियो उस तरह का रहा है।
0: चलिए तो आप अगर चाहें तो उन्हीं कविताओं में से कोई लाइनें हमें सुनने वालों को भी सुना सकते हैं।
1: उतनी पुरानी तो नहीं है मेरे पास, उस वक्त की कविता तो नहीं होगी क्योंकि 2003-04 के बाद तो मैं हिमाचल से ही चला गया था चंडीगढ़ और बाहर सारा, तो उतना पुराना तो नहीं है। हाँ कुछ कविता अभी मैं आपको सुना सकता हूँ, जिसको कहें कि कविता थोड़ी दिल के नज़दीक वाली कविता है। अभी समकालीन भारतीय साहित्य जो है देश की बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है उसमें भी अभी ये छपी है साहित्य अकादमी की, वो मैं आपको एक कविता जरूर सुनाता हूँ।
0: जी जरूर।
1: इस कविता का शीर्षक है डेल्टा। बहुत दूर से निकला था उससे मिलने, वेग से भरपूर समूची देह, तमाम अवरोधों को काटते हुए अपने भीतर समेटे वेदना संवेदना आंसू हंसी क्रोध दुनियादारी इहलोक परलोक। मैं दौड़ रहा था उसकी ओर, तमाम तत्वों के कोलाहल पर तारी एक मुगालता कि वो भी तो उतना ही बेकरार होगा मिलने को। मेरे उतावलेपन के सामने एकाएक गूंजी एक खामोश चेतावनी, भीतर प्रवेश करने से पहले जूते उतार लेना, पांव धो लेना। मुहाने पर ठिठक गए मेरे कदम, देह का वेग फैल गया मेरे आसपास, कई धाराओं में बंट गया मैं। तमाम अवसाद अलग होते गए मुझसे, अपने सुभीते से रुक गए जहां तहां। अब मुझ में बची थी केवल शांत निर्मल धाराएं, ना मालूम कब मैं समंदर हो गया हमेशा के लिए। और पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है एक नदी के विशाल डेल्टा की कहानी, और बहुत उपजाऊ होते हैं कई डेल्टा
0: जी, बहुत।
1: तो ये डेल्टा एक कविता जो बड़ी नजदीक है मेरे उस तरह की, तो मैंने सुनाई आपको।
0: जी बहुत सुंदर लाइन है आपने पेश की। हेमंत जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है या समाज परिवर्तन का भी एक सशक्त माध्यम है?
1: निश्चित तौर पे कविता, हम कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये बड़ी पुरानी बात है
0: जी
1: ना? तो वो है कल्पनाओं की बात, और जैसे आपने कही कि कविता जो है वो भावनाओं का है और समाज परिवर्तन इस तरह का, मैं कहता हूं कि कल्पना एक अपनी जगह है, भावना भी एक अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि कविताओं के जरिए

0: समाज परिवर्तित होते हमने देखा है, समाज बदलते देखा, उसकी लंबी फेरिस्त थे कवियों की हमारे यहाँ पे, कि दिनकर साहब थे, निराला जी रहे, पाश रहे, जबरदस्त कवि, और हमारे जैसे पड़ोसी मुल्क में फैज साहब मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं, उनकी नज्मों ने क्रांतियां लाई हैं कई जगह पे। और समाज परिवर्तन की जो आप बात करी, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कल्पनाओं की दुनिया वाला मसला अलग है, लेकिन कविताओं ने समाज बदले हैं, समाज में क्रांतियां लाई हैं, और अभी भी मतलब लाने की कुव्वत रखती है, पूरी बशर्ते कि उस तरह का लिखा जाए। आप आजादी की लड़ाई से भी, जब आजादी का आंदोलन जो था उसमें भी हसरत मोहानी जैसे लोग थे जो बहुत गजब के शायर कवि उस तरह के थे, और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे उन लोगों ने दिए सारे। तो कविता खाली आप कल्पनाओं की दुनिया के बाहर, मुझे लगता है कि समाज परिवर्तन का बड़ा जबरदस्त एक मतलब माध्यम है कविता भी।
1: जी जी, बहुत से ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत से सामाजिक मुद्दों पर लिखा और वो बहुत चर्चित भी रहे।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: चलिए, अब जानना चाहेंगे कि आपकी कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप अपने सुनने वालों को सुनाना चाहें।
0: जब कभी कोई लिखता है कवि,
1: जी जी जी, सारी ही चीजें,
0: एक कवि होता है वो जो कविता लिखने के लिए कविता लिखता है कि कुछ नहीं यार मैं आज ना कविता लिख लूंगा कोई, तो वो तो कविता ही वैसे ही हुआ कुछ। एक होती है कि जो कहीं कुछ घुमड़ रहा होता है चीजें, और कोई चीज, कोई घटना कुछ इस तरह की देखी हो, कुछ इस तरह का हुआ हो, तो फिर जो वहां लिखी जाती है कविता, तो वो नेचुरली कहीं दिल के आसपास से निकली होती है। तो मैं जो भी लिखता हूँ तो सभी कविताएं दिल के आसपास आप मान के चल सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि पत्रकारिता का अनुभव आपकी कविताओं को किस तरह से समृद्ध बनाता है।
0: कविताओं को समृद्ध इसलिए बनाता है पत्रकारिता कि हम लोगों के बीच रहते हैं
1: जी,
0: पब्लिक डीलिंग है, बहुत सारे शहरों में घूमते हैं, घटनाओं खबरों के हिसाब से, मुंबई अटैक जब हुआ तो उसकी कवरेज उस दौरान वहाँ गए थे, या और डिफरेंट जगहों पे जाते रहते हैं। एक जगह किसी ऑफिस में बैठ के नहीं काम होता, जो एक जर्नलिस्ट जो बतौर पत्रकार जब वो काम करता है, बतौर रिपोर्टर वो काम करता है सारा, तो वहाँ पे बहुत घटनाएं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रभावित करती है, और आप उनको किसी खबरों के शक्ल में, किसी आर्टिकल में, किसी लेख में नहीं दे पाते, तो फिर वो कविताओं के माध्यम से आती है। तो पत्रकारिता मेरा तो जो कविताएं जो लिखता हूं मैं, जो लिखी है मैंने सारी, कहीं ना कहीं मेरी जो जर्नलिज्म की दुनिया है उसके आसपास ही उनका रहा है, या वहां से प्रभावित रही किसी घटना से, और वो घटना तक मैं जर्नलिज्म के हिसाब से ही जा पाया, शायद अदरवाइज में शायद नहीं जा पाता ऐसा।
1: जी, क्या कभी किसी समाचार पत्र ने आपको कविता लिखने के लिए प्रेरित किया है?
0: समाचार ने, हाँ, ऐसे कुछ कविताएं मैंने कश्मीर में लिखी है। कश्मीर में 2010 में वहां पे पत्थरबाजी का एक बहुत बड़ा हो गया था, जिसमें मेरा ख्याल 150 के करीब यूथ नौजवान भी मारे गए, और भी बहुत कुछ हुआ, बड़ी लंबे टाइम तक कर्फ्यू रहा, तो उसकी कवरेज के बीच कुछ हम पे भी, मुझ पे भी एक दो बारी कुछ अटैक हो गए थे, बीच में पथराव हो गए थे, उनसे कैसे बचे, एक बार कुछ लोगों ने घेर लिया था कुछ तो ये चीजें ऐसी रही जो जिनको मैंने फिर अलग से कविताओं के माध्यम से किया सारा। और एक कभी ताजा हुई थी कोई घटना, ये जो पुल बने हैं हमारे, जो ऊंचे ऊंचे पुल है, बिलासपुर का पुल है, कंदरौर का पुल है, और जगह, तो वहां सुसाइड के बड़े केस, बड़ी खबरें आती है सुसाइड की।
1: जी जी।
0: अब नहीं आ रही, लेकिन अक्सर क्योंकि मैं संपादक हूँ अखबार का, तो वो खबरें आती रहती, देखते रहते, तो बहुत सुसाइड होते थे। शिमला आने जाने का भी रास्ता रहता है कंदरौर पुल के, यार बहुत सुसाइड हो रहे, बहुत सुसाइड हो रहे। तो अभी फिर क्या किया प्रशासन ने, अब सुसाइड कैसे रोके उसमें, अब पुल पे पहरा तो कैसे बैठाएगा कोई सारे। तो शुरुआत शायद उसी पुल से हुई थी जो एक सबसे ऊंचे पुलों में से एक है, कंदरौर वाला जो बिलासपुर वाला जो पुल है सारा, तो वहां पे उसके कांटेदार तारें लगा दी मोटी मोटी, 10 फुट 12 फुट ऊपर तक पुल के दोनों तरफ को, ताकि आदमी चढ़ के मर ना सके, नीचे कूद ना सके वहां पे जा रहा। तो उससे मैं बड़ा एक, मुझे लगा दिल में, यार ये पुल जो है बेसिकली सेतु है ना, जुड़ाव है तो जोड़ने के, वार पार जाने के है, अब वो मरने के काम आ रहे हैं और वहां पे भी रोकना पड़ रहा है आपको तारे लगा के भैया, है ना। तो उस पे मैंने एक कविता लिखी है, तो आप चाहें तो मैं उसको सुना सकता हूँ।
1: जी जी जरूर।
0: जो आपने कही थी बात की कभी किसी समाचार से प्रभावित होकर लिखी, तो कश्मीर पे कुछ लिखी है मैंने जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैगजीन साथ लाया हूं, आत्महत्या वाला पुल, ये कविता है, समकालीन भारतीय साहित्य में ही ये छपी है। कमाल है ये शीर्षक है इसका, आत्महत्या वाला पुल। कविता कुछ इस तरह है, कमाल है, तुम उस पुल के बारे में जानते तक नहीं हो, कभी कोने पर टंगा मटमैला सा बोर्ड नहीं देखा क्या, सुनो ये एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। एक दिन अखबार में खबर छपी कि एक स्त्री ने यहां लगाकर छलांग दे दी अपनी जान,

0: उसके बाद ऐसी खबरें छपती ही रहीं, लोग मरते रहे छपाक से, जीने मरने दोनों के काम आने लगा पुल, और मौतों से आजीज आकर सरकार लाई दूर की कौड़ी, मोटे ऊंचे कांटेदार लोहे के तारों से जकड़ दिया पुल। आत्महत्या के हौसले अब उलझने लगे कांटों में, दम तोड़ने लगी आत्महत्याओं की जिद। सुनो, मरने से पहले कोई नहीं होना चाहता घायल, घायल आदमी खुद की जान नहीं लेता। तो बस थम गया मरने की खबरों का सिलसिला। हां, कई टन अतिरिक्त बोझ छाती पर लिए बराबर खड़ा है पुल, वाहनों की आवाजाही थमने पर भी उसे आराम नहीं मिलता। तमाम आत्महत्याओं और इरादों का बोझ छाती पर उठाए धीरे धीरे मर रहा है पुल। और सभी ऊंचे पुलों की यही कहानी है, सभी ऊंचे पुलों की यही कहानी है।
1: जी बहुत अच्छे, आपने बहुत खूबसूरत ये कविता लिखी। हेमंत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में तेज खबरों की दौड़ के बीच संवेदनशील पत्रकारिता जो है ना, वो कितनी चुनौतीपूर्ण बन चुकी है?
0: देखिए, आज की डेट में तो पत्रकारिता ही चुनौती बनी हुई है। मुझे लगता है कि पहले डिबेट होती थी टीवी पे, अखबारों में परिचर्चाएं छपती थी, टीवी में डिबेट होती थी मुद्दों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। अब जमाना ऐसा हो गया, पत्रकारिता पे डिबेट हो रही है, है ना, पत्रकारों को लेके डिबेट की जा रही है। तो आपने जो कही संवेदनशीलता और उस तरह की बातें, देखिए बहुत तेजी से सूचनाओं का बाजार चलता है, बहुत तेज है। पहले आपको पता था कि आज कुछ घटना हुई, पर कल खबर आएगी, कल अखबार छपेगा या टीवी में जब देंगे। अब वो व्हाट्सएप है, आपके सोशल मीडिया का मसला है ना, एकदम से कोई फोटो डाल रहा है, एकदम से खबर आपको आ रही है सारी। तो सूचना इस तरह से घूम रही है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संवेदनशीलता का मामला तो है, उस बारीकी से, उस नाजुकता से चीजें नहीं देख पा रहे हैं जिस नाजुकता से देखी जानी चाहिए। तो ये चुनौती है आज की डेट में, मुझे लगता है।
1: जी, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के दौर में साहित्य का स्वरूप किस तरह से बदल रहा है?
0: ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। सोशल मीडिया बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइटें थी बेसिकली तो पहले, चलो सोशल मीडिया की ही तरह हम ले इसको। निश्चित तौर पे यहाँ भी वही है भाई, कुछ चीज़ों के बहुत फायदे भी है तो उस तरह के नुकसान भी है। उस तरह के फायदे में इसके ये देखता हूँ कि बहुत अच्छा लिखने वाले लोग, बहुत अच्छा गाने वाले, पढ़ने वाले, कहानी लिखने वाले, कविता लिखने वाले, गजल कहने वाले लोग, अब ऐसा नहीं है कि कोई किताब उन्हें छापेगी या कोई अखबार उन्हें छापेगा तो फिर जाके कहीं दुनिया को पता लगेगा यार किसने लिखा और कैसे लिखा और क्या लिखा सारा। अब आप अच्छा अगर लिख रहे हैं और आप अपनी कोई सोशल मीडिया पर उसको डाल रहे हैं तो लोग उसको, अगर उसका उस तरह का लेवल है, उस तरह का स्तर है, तो निश्चित तौर पे वो वहाँ से आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको सराहा जाएगा, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। एक ये मुझे मिल गया माध्यम, है ना। सब आदमी किताब नहीं छाप सकते, अखबारों में भी छपने का सबका नहीं हो पाता उस तरह का सारा, बट ये एक सोशल मीडिया का एक ये प्लस जो मैं देखता हूँ। इसका नकारात्मक पहलू है कि कुछ भी डाल रहे हो आप, कुछ भी चल रहा है और इतनी तेजी से वो सर्कुलेट होता है, अफवाहें, गपें, फर्जी चीजें सारी साहित्य के उसमें भी। जैसे मैं देखता हूँ कि इतने कोई अशार शेर वो गालिब के नाम से चल रहे हैं, वो गालिब ने कहीं नहीं कभी, है ना, दो दो दो नामों से बड़े भारी रायता जो लोग फैला रहे हैं उस तरह का। एक तो गालिब साहब के नाम से, मिर्जा गालिब के, जो उन्होंने कहे नहीं कभी शेर। दूसरा जो पॉपुलर है गुलजार साहब, है ना, गुलजार साहब के नाम से पता नहीं क्या क्या आता है, और गुलजार वो बोलते भैया हमने ये नहीं कहा है किसी ने सारा। तो सोशल मीडिया का जो आपने हवाले से कहा, तो दोनों ही चीजें हैं, इसमें
1: फायदे भी है और नुकसान भी है। चलिए आपसे जानते हैं कि समाचार पत्रों में जो साहित्य के लिए स्थान दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए।
0: ये भी सवाल बनता है, थोड़ा सा समस्या देखता हूं मैं अखबारों के नजरिए से उसमें, कि अखबारों में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए स्पेस कम हुआ है वक्त के साथ, और सभी अखबारों में। उसकी बहुत सारी वजह है वैसे तो, पर मोटे मोटे तौर पे मैं देखता हूँ कि ये थोड़ा सा दुखद है। मैं भी खुद अखबार निकालता हूँ और उसमें दो तीन मसले मुझे नजर आते हैं कि पहले कभी कोई मुशायरा होता था, कोई कवि गोष्ठी होती थी और कोई साहित्य को लेकर कोई बड़ा कोई आयोजन होता था, उसमें अखबार से वरिष्ठतम जो पत्रकार है, जो वरिष्ठतम जो सहयोगी है, उसे कवरेज के लिए भेजा जाता था। वो पूरा प्रोग्राम में बैठता था, पूरा उसको सुनता था, उस पे नोट बनाता था और उसकी एक समीक्षा लिखता था। अब क्या हो गया है कि अखबारों में भी ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जो उनका बड़ा लिटरेचर से जुड़ाव हो और पढ़ने लिखने वाले हो। तो अखबार अब क्या कर रहे हैं, जो सबसे जो ट्रेनिंग टाइप का कोई होगा उसको बोलेंगे जाओ आप फलां कार्यक्रम उसको कवर करके लाओ, वहां आपको ना प्रेस नोट

0: दे देंगे वो लिख के,
1: जी
0: कोई समीक्षा भी जो कार्यक्रम आयोजन आयोजक है उन्हीं में से ही कोई समीक्षा करके आपको अखबार रिपोर्टरों के हाथों में पकड़ा देता है, वही छप रही है अगले दिन। तो ये थोड़ा सा दुखद पहलू मुझे दिख रहा है साहित्य के हवाले से, कि ना तो वो रिपोर्टिंग करने वाले साहित्य में हैं, मतलब अखबारों में हैं ऐसे लोग, और ना ही अखबार कोई बड़ा सीरियसली ले रहे हैं कि वो स्पेस बढ़ाया जाए या उसको बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय तो है।
1: जी जी, हेमंत जी कोई ऐसा प्रसंग साझा कीजिए जिसमें आपको भीतर तक झकझोर दिया हो, और ऐसी कोई रचनाएं भी है जो आपने इस पर लिखी हो।
0: रचनाएं तो हैं बहुत मेरे पास, वो मैंने अगेन कश्मीर पे मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे एक बार कुछ ऐसा मसला हो गया था कि एक गांव में मैं चला गया था
1: जी,
0: और उस गांव में अनफॉर्चुनेटली कोई 5-6 लोग मारे गए थे बारी बारी से, कोई किसी कर्फ्यू के दौरान और वो चीज़ें सारी। तो वहाँ जब मैं गया तो पहला तो मुझे बड़ा ख़राब वहाँ पे इस तरह का मिला कि ये भी कोई आ गया है बाहर से और ये करने का, मुझे लगा मेरे ऊपर अटैक ये लोग कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ मुझे लगा मार देंगे आज सारे। तो उस स्थिति से मैं निकला किसी तरह, मैंने जो भी कुछ एक पत्थर पे खड़े होकर भाषण वाषण देना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि चंडीगढ़ से आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, आपका दुख दर्द समझने आया हूँ, और कोई यहाँ आता नहीं जर्नलिस्ट तो मैं आया हूँ। और चलो वो रुक गए तो मुझे लगा मारेंगे नहीं मुझे ये, तो मेरे साथ एक फोटोग्राफर भी था साथ, तो फिर वो मुझे घर ले गए सबके कि आप देखो कैसे बच्चे मर गए। हमारा एक ये होता था खास तौर पे कश्मीर को लेके कि यार सब अलगाववादी नहीं होते हैं, सब अलगाववादी नहीं होते हैं, लेकिन वहां मैंने तब ये मैं जो अंदर तक मुझे जो महसूस हुई चीजें कि इसे तो कुछ गिनती के लोग हैं जो कि इस तरह के लोग हैं, मेजोरिटी तो नहीं, वो तो सुख शांति अपना रोजी रोटी का मसला है उनका सारा। फिर उसमें मसला ये था कि आप नहीं शामिल होंगे उपद्रवों में या किसी प्रोटेस्ट में तो आप फिर कौम के गद्दार हैं, फिर आपके घरों के ऊपर पत्थर पड़ेंगे। आप वहां शामिल हो रहे तो वहां तो कुछ भी हो सकता है, आपको गोली लग सकती है, आप मर सकते हैं, आप हो सकते हैं। तो वो एक जो आवाम है, आम आदमी के 100 लोग हैं, 100 में से 5 आदमी खराब है लेकिन 95 आदमी पिस रहे हैं, और वो मतलब वाकई पिस रहे हैं। तो वो एक ऐसी घटना थी जो मतलब मैंने सबके घरों में गया, सबकी वो एक दो बॉडीज मेरे सामने आई थी वहां पे, तो अंदर तक जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि नहीं मसला कहीं और है। तो उस पर कुछ लिखा मैंने, तो अभी तो नहीं है मेरे पास वो सारा, तो उस पर कुछ कविताएं लिखी और अभी एक कुछ किताब आने वाली है तो शायद उसमें मैं उसको शामिल करूंगा।
1: जी जी, आप अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा को केवल एक पंक्ति में अगर बताना चाहे तो वो क्या पंक्ति होगी?
0: वो ये पंक्ति होगी कि साहित्य जो है वो दर्पण है, जैसे कहते हैं समाज का दर्पण होता है उस तरह का होता है सारा, और इसने मुझे एक ऐसी दुनिया में मुझे खड़ा कर देता है जब मैं पढ़ता हूँ सारा करता हूँ चीज़ें, कि आप कहें कि आजकल लोग है ना कि डिप्रेशन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बोलता हूँ किताब पढ़ो ना।
1: जी जी,
0: है ना, किताब क्यों नहीं पढ़ते आप? ये सोशल मीडिया पे मत पढ़ो कुछ, ये जो चल रहा है वो आप मतलब स्क्रॉल कर जा रहे सारा दिन बैठ के सारे। तो मेरे लिए तो एक जिंदगी का हिस्सा है साहित्य, और मुझे एक उन सब चीजों से, उन तमाम जो डिप्रेशन, तमाम जो विकार है, उन चीजों से दूर रखने वाला मैं मानता हूँ कि किताबें,
1: किताब को पढ़ना
0: जी,
1: चाहिए।
0: जी जी,
1: आज की युवा रचनाकार और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, ज्ञान तो लेते नहीं आजकल लोग
1: तो
0: ज्ञान लेते नहीं, कि ज्ञान दे रहे हैं बहुत, लेकिन मैं एक लाइन में कहता हूँ, पढ़ो, पढ़ नहीं रहे हैं। इतने लोग आते हैं हमारे पास भी अखबारों में काम करने के लिए, वो जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं और चीजों, नहीं पढ़ते। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, यार आखिरी किताब कब पढ़ी थी? हाँ पढ़ी थी ना, नाम नहीं पता, पढ़ी नहीं थी। तो वो जो आपके जो सिलेबस में लग रहा है, जो भी आपने पढ़ लिया सारा, नहीं पढ़ रहे हैं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, चाहे वो जो रचनाक्रम कर रहा है, वो कविता लिख रहा है, आप दुनिया में पढ़ नहीं रहे हो अच्छे कवियों ने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, और या दुनिया किस तरह से लिख रही है, अब तो पढ़ने से आपको पता चलेगा ना।
1: जी जी,
0: एक तो उनके लिए हो गया। दूसरा, जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता जो चलती है वो सवालों से चलती है, सवाल पूछता है जर्नलिस्ट। सवाल आपके पास तभी आते हैं जब आप पढ़ते हैं, जब आप स्टडी करते हैं कोई। तो दोनों के लिए मेरी तो एक ही जो मैं गुजारिश कहूंगा या एक ही मैं बात कहूंगा कि पढ़ो भाई, खूब पढ़ो।
1: जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए अपनी कोई छोटी सी कविता या 2-3 पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे तो सुनाइए।
0: कविता मैं एक सुनाता हूं आपको, कविता का शीर्षक है ध्वनियों का सारांश।
1: जी,
0: सुना है, सदियों पहले कही गई बातें भी मौजूद है कायनात में, शायद ध्वनियों के रूप में, उम्मीद है एक दिन सुनी जाएंगे तमाम ध्वनियां। मैं उन ध्वनियों को समेटना चाहूंगा एक गीत में, या बदल दूंगा एक हांक में, एक ऊंची पहाड़ी से बता दूंगा ध्वनियों का सारांश, जैसे हमारे बुजुर्ग सूचना को पहुंचाते थे अंतिम पहाड़ी के गांव तक। यह हांक भी शामिल हो जाएगी कायनात में और सभी ध्वनियों की मुखिया होगी, या बदल जाएगी एक रानी मक्खी में और करेगी शहद का कारोबार। हां, अगर सुन पाया आदम और ईव की पहली बात, तब लिखूंगा एक किताब। प्रकाशक से नहीं ली जाएगी कोई रॉयल्टी, बस चाहिए चंद दर्जन मुफ्त किताबें। उन्हें दुनिया में घूमने के लिए छोड़ दूंगा। दुनिया फिर से सीखेगी प्रेम करना, और इन किताबों के लिए मेलों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेले मेल के लिए कम, बिछड़ने के लिए ज्यादा जाने गए।
1: जी, बहुत खूब
0: शुक्रिया
1: जी हेमंत जी, आप हमारे कार्यक्रम में साहित्य सुमन में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं से साझा की, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया।
0: आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं तराने मन के लेकर। तराने मन के यह कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बड़ा दिन फिल्म से ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक की मखमली आवाजें।

अनजानी फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं की रेडियो सेल्स पर। सुरेश वाडिकर, साधना सरगम की आवाजें, राजेश रोशन का संगीत।

तराने मन के ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ। जुदाई फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। हरिहरण, अलका याग्निक, जसविंदर नरूला की आवाजें, नदीम श्रवण का संगीत और बोल हैं समीर के।

जुदाई फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। तरानी मन के ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तरानी मन की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

अनु मलिक की बनाई तर्ज पर मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था जानम समझा करो फिल्म से। आवाजें थी उदित नारायण और साथियों की। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल को। ये गीत हमने लिया है दिल है कि मानता नहीं फिल्म से।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए चमत्कार फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का है।

सभी बच्चों को जय हिंद। कार्यक्रम बाल सभा के साथ हाजिर हो चुकी है सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। सभी सुनने वालों को और दीदी के नन्हे नन्हे दोस्तों को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते और हाँ जी ढेर सारा लाड़ प्यार और दुलार हम भेज रहे हैं अपने सभी गोल मोलू प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। इंतज़ार रहता है ना आप सभी बच्चों को कि आपकी दीदी कब आएगी। बिल्कुल ऐसा ही इंतज़ार आपकी दीदी को भी रहता है कि कब आपकी ये दीदी अपने नन्हे दोस्तों से एक प्यारी सी मुलाकात करेगी। बहुत इंतज़ार करना पड़ता है तब कहीं जाकर ये रविवार आता है और हमें मिलता है मौका आपके साथ रूबरू होने का। जी हाँ, जब बंद आंखें करते हैं तो सामने सिर्फ और सिर्फ हमारे नन्हे दोस्त हमें नज़र आते हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, कुछ एक तो भाई इधर उधर भाग भी रहे होते हैं कि दीदी आ गई, दीदी आ गई, बैठो बैठो सुनो सुनो आज दीदी क्या सुनाएगी। तो नन्हे दोस्तों, दिल की गहराइयों से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं आज के सुहाने सफ़र में। तो दिन के 1 बजे तक आपको रहना है अपनी दीदी के साथ, दीदी का हाथ साथ छुड़ाकर आपने कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। जी हाँ, और हमारा और आपका साथ निभाएगा आकाशवाणी धर्मशाला। तो आपको हम बता दें, जी हाँ, आज आपकी ये दीदी आपके साथ बात करेगी पर्यावरण संरक्षण पर। जी हाँ, अपने पर्यावरण को हमने कैसे बचाना है, किस तरह से हम अपने पर्यावरण की, अपने नेचर, अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो आज हम आपको छोटा सिपाही बनाएंगे, क्योंकि भाई हमें बचाना है अपना पर्यावरण, अपनी प्रकृति, अपनी ये धरती माँ। लेकिन उससे पहले नन्हे दोस्तों, आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण से आपको समझाते हैं। अगर आप बिल्कुल एकाग्र होकर अपनी दीदी को सुन रहे हैं ना, तो सुनिए बच्चों। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ये सोचो कि हमारे आसपास बहुत कम पेड़ पौधे हों या फिर ना के बराबर हों, पानी भी कभी कभार ही पीने के लिए मिले, वो भी कीमत चुका कर। सांस लेने के लिए हवा तो मिले, लेकिन जिससे दम घुटता हो, सोचकर भी डर लग रहा है ना। दीदी को भी डर लग रहा है कि अरे कैसी बातें कर रहे हो, आते ही ये मैं नहीं आप कह रहे हैं।

क्यों आपने नल खुला रखना है? एक मग बहुत होता है दांतों की सफाई के लिए। आप सोच रहे होंगे, दीदी ऐसी ऐसी बातें मत बोला करो, मम्मा बड़े ध्यान से सुन रही हैं, आपको पता है फिर हमें डांट पड़ती है। अजी, हम यही तो चाहते हैं कि अच्छी

जरूरी होता है। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को ईश्वर की भक्ति और सेवा के समान माना था। उन्होंने ये कहा था, जहाँ स्वच्छता वहाँ भगवान वास करते हैं। जी हाँ, विश्व स्वच्छता दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति का, बल्कि हमारे स्वभाव और संस्कार का।

जी हाँ नन्नी दोस्तों, जागते रहना है। आपके आसपास क्या हो रहा है इसके लिए आपने सजग रहना है और जागरूक रहना है। देखना कहीं कोई चोर आपकी जिंदगी में ना आ जाए। यानी नन्ने दोस्तों, आपको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है और हर एक परिस्थिति के बारे में आपको जागरूक रहना है। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय धैर्य और संयम के साथ आपने काम लेना है। तो अब चलते चलते हम आपको बता देते हैं, आज के कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विपिन कुमार। अब इन्हीं प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ अपनी रेडियो दीदी प्रवीण को दीजिए जाने की अनुमति। प्यारे बच्चों, जय हिंद।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हीरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है।

0: पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस स्थानीय के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की एलावेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, District Court judges, secretaries of various ministries, senior government officials and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of next month. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Vice President C.P. Radhakrishnan will inaugurate the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi the day after tomorrow. The 5-day event has been organized on the theme Climate Resilient Water Management. Iran has communicated its conditions to international mediators for restarting negotiation with the United States. It has also warned that Tehran is prepared for a decisive war if Washington rejects its demands. Mohsen Rezai, Secretary of Iran's Supreme National Security Council, said Iran's conditions included an end to the war on all fronts, the release of frozen Iranian funds, and an end to the naval blockade. In a separate social media post, Rezai said Iran has announced 7

खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफ़र भी एकदम ख़ास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफ़र में एक लड़की और एक अनजाने व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफ़र करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाहा हो तो सफ़र कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, ज़रा साझा कीजिए अपने संदेशों के ज़रिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतज़ार और साथ ही ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर मेरे यानी अनुराधा के संग और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतज़ार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं, तो धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफ़र का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज़ का नाता जो है सुरीला सफ़र से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मज़ा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफ़ी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफ़र के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए और कुछ दिलचस्प संदेशों का इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि किस तरह से इतवार का दिन निकलता है, आज क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी दिन की क्या प्लानिंग रहती है, क्या कभी सोमवार ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल जाना है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी शनिवार रविवार के बाद जब सोमवार आता है तो शाम होते होते कैसा महसूस होता है रविवार के दिन, बताइए मुझे।

का नाम और ये गीत आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की ज़रूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई, लेकिन नो टेंशन, विविध भारती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफ़र के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफ़र को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

0: वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटिया जवाईसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियाँ, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुटीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है, उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था। और यही तो बात है, विविध भारती मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। के संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था।

हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीत में सफ़र के साथ आपके साथ चलना है ना? हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ पर प्रोग्राम ज़रूर सुन रही हूँ और आपके साथ ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतज़ार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफ़र को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतज़ार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज़ ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतज़ाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे। और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या इंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के संग।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत आपने सुना, शर्मीली फिल्म से नीरज ने इस लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध

भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना।

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है, तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें बोलती हैं और संवेदनशील मन सुनता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया।

0: किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि।

0: हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि कर्मी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
1: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
0: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर

0: एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एलाविनिल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

जब इश्क किया तब सोचा नहीं, हाँ जब इश्क किया तब सोचा नहीं, इस इश्क में क्या क्या होता है,

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मधुमती फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से। शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के लिखे बोल एस डी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप वरुणा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं में संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हुए उन्हें आधुनिक ज्ञान व तकनीक के साथ आगे बढ़ने के अवसर देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि आज विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन में कई अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। ऐसे में हमें आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं और मानवीय मूल्यों को भी बनाए रखना होगा। इस अवसर पर सांसद राजीव भारद्वाज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का संदेश भी पढ़ा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अगले 3 माह में 2000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। सोलन जिले के

0: में कल शाम सायर मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा काफी महंगी है, जबकि सरकारी स्कूलों में भी इसी स्तर की सुविधाएं कम खर्च में उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। शिमला जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 वर्ष तक की बच्चियों का स्कूल के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल रांटा ने बताया कि शुरुआत में इस टीकाकरण अभियान को लेकर अभिभावकों में कई भ्रांतियां थी, लेकिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ये अभियान शुरू किया है।
1: ये जो वैक्सीन है इसको हम लगाते हैं 14 से 15 साल के बच्चों। ये जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये 97% कॉज है सीए सर्विक्स का। सीए सर्विक्स जो होता है यूट्रस का वो पार्ट है जिसको हम बच्चा देने के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं। ये जो आपका वायरस 97% केसेस में कॉज है, जल्दी अगर ये वैक्सीन लग जाएगी, जैसे हमारी दूसरी वैक्सीन होती है वैसे एंटीबॉडीज बनेंगी और वो जो भी हमारी बेटी है वो इस इन्फेक्शन से बच जाएगी।
0: शिमला जिले में अब तक 1874 बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण किया गया है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। समारोहों में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। कल इस अभियान के नए चरण को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया था। कांगड़ा जिले में नियमों की अनदेखी कर संचालित की जा रही निजी वॉल्वो बसों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक विभाग के उड़नदस्ता दल ने कुल 76 वॉल्वो बसों के चालान किए हैं। इन मामलों में 15 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी असीम सूद ने बताया कि बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाली बसों के ऑपरेटरों को प्रदेश के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी निजी वॉल्वो बसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
2: मोस्टली तीन जो वायलेशन है वो वॉल्वो बसेज में पाई जाती हैं। एक टैक्स नहीं पेमेंट की होगी, दूसरा ये है कि एज अ स्टेज के आज ऑपरेट कर रहे होंगे जगह जगह से सवारी उठा रहे होंगे, और तीसरा इनके पास पैसेंजर लिस्ट नहीं है। शिकायत के लिए मेरे मोबाइल नंबर पे, इसके अलावा मेरे पास प्रेजेंटली दो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, या तो उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या जो हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं, या तो जैसे आजकल ग्रीवेंसेज के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जैसे सीएम हेल्पलाइन वगैरह, तो उसमें भी कोई भी चाहे तो जिस वे में उनको कन्वीनियंट हो, जैसे उनको लगे कि कॉल उनको ठीक रहेगा कन्वीनियंट रहेगा तो वो कॉल करके बता सकते हैं। किसी को लगे कि ऑनलाइन कंप्लेन डालना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं।
0: श्री गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का 532वां प्रकाशोत्सव आज चंबा में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से संत महंत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री चंद्र शिला मंदिर ट्रस्ट के संत रामदास ने कहा कि श्री चंद्र महाराज ने पूरे विश्व में आपसी प्रेम व सद्भाव का संदेश देकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना। वाचक स्वर वरुणा शर्मा।
0: हर घर के लिए स्वच्छ और किफायती पाइप से आपूर्ति की जाने वाली खाना पकाने की प्राकृतिक गैस का विस्तार भारत की स्वच्छ घरेलू ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा की ओर आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घरों तक पीएनजी पहुंचाना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास का हिस्सा है। इस तरह के नेटवर्क में पाइपलाइन और उससे जुड़ी सुविधाएं होती है जो घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों की सेवा देती है। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा विकसित किया जाता है। पीएनजीआरबी ने 309 भौगोलिक क्षेत्रों में संस्थाओं को अधिकृत किया है। इन क्षेत्रों में देश के पूरे मुख्य भूभाग शामिल है। 18 अगस्त 2026 तक देश भर में 1,74,00,000 घरेलू

0: पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध थे। पीएनजी कवरेज को और बढ़ाने के लिए 18 अगस्त 2026 को घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। ये योजना 1 सितंबर 2026 से लागू हुई है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सक्रिय घरेलू पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़ाने की गति को तेज करना है। इसका मकसद परिवारों को पाइप के जरिए स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती खाना पकाने की गैस उपलब्ध करना है। ये योजना सीजीडी संस्थाओं को बिना बिल वाले कनेक्शन को सक्रिय बिल वाले कनेक्शन में बदलने के लिए प्रोत्साहन देती है। ये नए क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के लिए भी प्रोत्साहन देती है। ये योजना 6 महीनों की अवधि के दौरान 2 चरणों में मिलेगी। योजना के तहत हर भौगोलिक क्षेत्र के लिए कनेक्शन की एक न्यूनतम संख्या तय की गई है। ये गैस घरेलू स्तर पर उत्पादित प्रशासित मूल्य व्यवस्था गैस है, जिसकी कीमत कम होती है। अतिरिक्त आबंटन महंगी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की जगह लेगा। सीजीडी संस्थाएं अभी अपने संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए ये एलएनजी खरीदती है। इसे सस्ती एपीएम गैस से प्रतिस्थापित करने पर उनकी कुल गैस लागत कम हो जाती है, इसलिए घरेलू कनेक्शन पर खर्च की गई पूंजी की प्राप्ति की अवधि में कमी आने की उम्मीद है। उम्मीद है कि इसमें लगने वाला समय लगभग 10 साल से घटकर करीब 3 साल रह जाएगा, इसलिए कंपनियों के पास घरों तक तेजी से कनेक्शन पहुंचाने का एक मजबूत व्यावसायिक कारण है। पीएनजी परिवारों को कई जरूरी लाभ देता है, जैसे इस्तेमाल में आसानी, पैसे की बचत और निर्बाध आपूर्ति। पीएनजी का घरेलू उपयोग करने वालों के लिए मुख्य लाभ इस प्रकार है। सुरक्षित गैस कम दबाव पर जमीन के नीचे की पाइपलाइन में आती है, इसलिए सिलेंडर को रखने या संभालने की जरूरत नहीं होती। हवा से हल्की होने के कारण यदि कभी लीकेज होती भी है तो ये ऊपर उठकर तेजी से फैल जाती है। दैनिक सुविधा सिलेंडर की बुकिंग करने, जमा रखने या बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। गैस घर पर 2400 घंटे उपलब्ध रहती है। बिल इस्तेमाल के आधार पर मीटर से आता है, जैसे बिजली या पानी का बिल। कम लागत घर वाले सिर्फ उतनी ही गैस का पैसा देते हैं जितनी वे असल में इस्तेमाल करते हैं। प्रति यूनिट ऊर्जा के आधार पर पीएनजी की लागत आमतौर पर एलएनजी से कम होती है, इसलिए समय के साथ ईंधन का मासिक खर्च कम हो जाता है। स्वच्छ पर्यावरण पीएनजी खाना पकाने वाले पारंपरिक ईंधनों की तुलना में ज्यादा साफ जलती है और कम प्रदूषण फैलाती है। घर के अंदर की हवा ज्यादा सेहतमंद रहती है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। भरोसेमंद आपूर्ति पाइपलाइन से लगातार आपूर्ति होती है और इसमें सिलेंडर डिलीवरी की लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं होती। ऊंची इमारतों और भीड़भाड़ वाली शहरी कॉलोनियों में रहने वाले घरों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। पीएनजी विस्तार को त्वरित मंजूरी, तर्कसंगत टैक्स और सुव्यवस्थित अवसंरचना विकास जैसे उपायों से बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और जागरूकता अभियान परिवारों में पीएनजी अपनाने की प्रक्रिया को आसान, त्वरित और सुलभ बना रहे हैं। सुव्यवस्थित विनियामक मंजूरी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 के तहत एक त्वरित मंजूरी प्रक्रिया जारी की गई है।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडिया वेव 370।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्ज़ा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाज़ार खंडवा से मोहम्मद रफ़ीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाज़ार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छे गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था। और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाज़ार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा प्रतीक ने इसी गीत की, और साथ ही दीप्ति उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यही संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफालिका फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
0: नहीं नहीं, और न तोड़ो।
1: क्यों रोकती हैं?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं?
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासवदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी,

0: फिर क्या कहा उन्होंने?
1: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रही। ओह, उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
0: हाय आर्य पुत्र, ये कैसी व्यथा।
2: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमद वन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं उधर चले श्रीमान वत्सराज।
3: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
2: देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्तछन वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
4: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
5: वही तो है चेटी अवंतिकी, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
4: यही करें राजकुमारी।
2: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
3: कैसे जाना वसंतक?
2: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
3: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
2: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
3: अच्छा चलो।
4: अरे ये वसंतक मूर्त में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधुचित्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसा ही करो।
2: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
3: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
2: जी
4: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
1: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
0: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
4: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े इससे आंखों में आंसू आ गए।
2: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
3: पूछो वसंतक।
2: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
3: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
2: मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
3: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
2: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी।

0: दर्शनिया, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ, उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंत तक कहाँ गए? आर्य वसंत तक कहाँ हैं?
1: मित्र वसंत तक, मैं ये सारी बातें वासव दत्ता से कह दूंगा।
0: अब देवी वासव दत्ता कहाँ हैं? वे तो कभी की परलोक सिधारी।
2: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासव दत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
0: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
3: अवंती के, आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहां से निकल चलें।
4: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरें, मैं ही यहां से चली जाती हूं।
3: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चलें। सचमुच जाऊं?
4: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
5: आर्य की जय हो।
1: पद्मावती, बैठो। जल ले आए वसंत तक?
0: जी।
1: काशरज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
5: अथवा किसी दुख से?
1: नहीं पद्मावती, नहीं।
0: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
1: ठीक कहा वसंतक, आओ चलें।
6: मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ।
5: आई।
6: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
5: राजकुमारी कहाँ है?
6: उद्यान वाले समुद्र गृह में।
7: मैं आर्य वसंत को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ये संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजन शीघ्रता करें, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें।
2: हाँ यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सही

0: अपन लेट हुंकारे भरते जाए। और सुने,
1: हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
2: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो।
4: क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
2: वासुदत्ता, वासुदत्ता।
4: अरे ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
2: प्रिय,
4: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंधरायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
2: अवंती राजपुत्री,
4: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं, एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लूं।
2: प्रिय, शिष्य।
4: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
2: क्या तुम कुपित हो?
4: नहीं, दुखी हूँ।
2: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
4: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
2: वासुदत्ता, वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय।
4: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
2: प्रिय,
4: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दूं। अब चलो।
2: ठहरो, ठहरो, ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन, जाग गए आप?
2: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या,
2: वासुदत्ता जीवित है?
1: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गए।
2: नहीं, मुझे शैया पर सो

0: देख चली गई।
1: समझा समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासव दत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
0: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
1: समझा राजन समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
0: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां भी रोमांच है।
1: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुःशाला चलें।
2: चलिए राजन चलिए।

0: हंसराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुम्णवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए हैं।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था

0: घोषवती का स्वर, ये तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ पाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता वो कहाँ है?
1: आप सोचें इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे।
2: ओह विजया, जा निवेदन कर, ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य। स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाये आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
3: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
4: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
3: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन है।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
3: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
1: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
3: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
7: आर्य पुत्र की जय हो।
3: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
8: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
3: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
8: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
3: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
9: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
3: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है।
9: राजन संताप न करें।
8: स्वामी धैर्य धरे, महासेन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
3: वासव दत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
9: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है वासव दत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय है, पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासव दत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासव दत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासव दत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
3: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही, उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
5: आर्य पुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
7: ये देखिए पद्मावती जी।
5: अरे
3: देवी, क्या बात है?
5: आर्य पुत्र, आश्चर्य, देवी वासव दत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
3: यहाँ?
5: हाँ आर्य पुत्र।
3: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
5: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
3: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप साम्य मिल ही जाता है।
1: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
3: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
5: संभव है वही हो।
3: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
1: जो आज्ञा प्रभु।
3: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
5: जी।
6: जय हो, आपकी जय हो।
3: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
6: हाँ राजन।
3: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
1: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
3: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
7: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
3: मेरी प्रिया वासुदत्ता, सच? अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासुदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
6: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
3: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
6: स्वामी की जय।
3: महामात्य।
5: आर्य पुत्र की जय।
3: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंधरायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
6: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
3: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
5: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है। आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
9: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
3: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासवदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
6: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
3: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
6: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
3: क्या मंत्री रुमणवान भी इसे जानता था?
6: हाँ राजन, सभी जानते थे।
3: ओ
6: महाराज उदयन, रैभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
3: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे, और हमारे साथ वासुदत्ता भी होंगी।
6: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
5: और मेरा स्वप्न।

0: तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साइन के 4 बजने को है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेश,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
6: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।

0: आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे
1: हैं। सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
0: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
1: आप किस शहर में थे?
0: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
1: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
0: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
1: जी,
0: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
1: अच्छा,
0: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहाँ से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी और हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
1: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
0: हाँ,
1: और दौलत को ठुकराया।
0: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: है। ये लखनऊ की बात है और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब।
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा।
1: जी,
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था। तो बाकी लोगों के म्यूजिक था लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था कि जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज़ मुझ में भी आई और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की मैं वो गाता था।
1: बाबा,
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे।
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी। बच्चे को कहाँ पता चलता। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
1: एक झटके में हवेली से बाहर।
0: एक झटके में हवेली के बाहर और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहाँ हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं। बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है।
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया।
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कत्थक सिखाया।
1: जी,
0: कत्थक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहाँ से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा।
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
0: और
1: कौन
0: इस
1: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान?
0: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम।
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहाँ मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे।
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखा।

0: थे और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे।
1: जी
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह क्या बात है।
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं
1: जी
0: अच्छा टीचर नहीं हूँ,
1: अच्छा
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता। मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, ये मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको करते
0: लेकिन
1: हुए।
0: हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर।
1: जी
0: टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं,
1: वाह
0: कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा है। हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर, तो जी वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे पहुँच गए।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ, रायपुर फिर अहमदाबाद?
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहाँ से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुँचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रू की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहाँ चले गए, वहाँ देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता है? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
1: 12 वर्ष।
0: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं,
0: पहले नाम बता
1: डैडी के
0: दे।
1: हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी लोग पास करते थे, तो वो ज्ञानी जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा।
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से,
0: अच्छा,
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ।
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे पार्टीशन
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप?
1: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे

0: कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंद गुरुद्वारा था वहाँ रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही।
1: जी
0: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
1: बाप रे बाप,
0: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे,
1: 13.5 घंटे
0: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है,
1: अरे बाप रे।
0: 4:30-5 बजे
1: तो
0: उठ।
1: कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
0: नहीं
1: बच्चों के
0: कभी
1: साथ खेलें?
0: कभी हुआ ही नहीं, कोई यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी
1: हाँ,
0: बात,
1: बस उसके आगे फिर
0: माँ ने
1: तो
0: कहा है खत्म होगी बात,
1: जी।
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है,
1: कितनी सुंदर बात है।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहाँ पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा,
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
1: जी जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ,
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: वो भी कोई
1: मोहम्मद शफी के साथ,
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है, बड़ा रिदम विदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है,
1: अच्छा
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद साहब के माहिम में। और वहाँ जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए, अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आए, हाँ पीटर आ जा। उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने, आ पीटर आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं था। तो

0: उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया, मैं चाचा समझ गया। उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ, तुम बजाओ तुम। और मैं नहीं बजा सका उससे।
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं मुझे हुआ क्या, शाम को नीचे चले गए। फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना, यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए।
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के। तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए। और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूँ ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे।
1: ओ
0: शायद फटी होगी
1: जी, जी,
0: ध्यान नहीं है।
1: जी जी,
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए। तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात।
1: इतनी बड़ी रकम,
0: इतनी बड़ी रकम, कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं कहा, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, वाहेगुरु जी को मथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है।
1: 12 बरस की उम्र में?
0: नहीं, 14 बरस हो गया।
1: अच्छा,
0: 62।
1: जी जी,
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की, उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले, चलो उठो, चलो चलते हैं। कहाँ? चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी।
1: गजब।
0: 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए। और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं डैडी को लेके गया। बोले इसको, लड़के को आप बाबा जी क्या, रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
1: पिता, ट्रम्पेट बजाया करते थे।
0: और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने, जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
0: बाबा जी बोलते, नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था। और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं,
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: मुझे कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटरी में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशंस,
0: नोटेशन लिख रहे
1: हैं। गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: तो सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो, बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे,
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमनी।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था। और प्यारे भाई वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ।
1: अरे वाह वाह।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा। और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलती। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र,
0: ये शायद 63।

0: 64 की बात है, मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े,
1: जी, शेख मुख्तार।
0: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह,
0: 6 फुट के थे, छह
1: हाँ,
0: सवा
1: बहुत हट्टी कट्टे।
0: हट्टे कट्टे, उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड चाचा कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने। उस पर 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है।
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप रे,
0: 15-16 साल की उम्र में।
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा, नौशाद साहब का,
1: जी
0: तो हम सब बजा रहे थे। मैं शायद 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन? मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है,
1: कौन सी फिल्म है?
0: वो मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक एक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था फिल्म नहीं हुआ करती थी,
1: जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
1: अच्छा।
0: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता
0: ऐसा
1: था।
0: नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने
0: हाँ,
1: बजाया?
0: तो बस सोलो बजाए, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया,
1: हाँ,
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है,
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब, पीटर साहब भी उसमें थे,
1: वाह,
0: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ,
1: गजब गजब, क्या बात है।
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं? ओहो,
0: ये 64 की बात है।
1: जी
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ,
0: पहला सोलो था,
1: जी
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं,
1: जी
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की
0: Somebody is there.
1: एंट्री हो गई।
0: Somebody is
1: जी,
0: there.
1: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा ऐसा काम।
1: जी,
0: हम लोग सब यही होते थे यार, ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई
0: कौन
1: काम है।
0: करिश्माई का। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है, रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा,
1: हाँ,
0: जब प्यार किया तो डरना क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है,
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो भी बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम, मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब,
0: भी,
1: सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है। तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है।
1: ये चल रही है,
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहाँ से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूँ। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गज्जर, जो आवा स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए
0: जी,
1: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया।
0: जी
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है। ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर
1: लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
0: और गानों के नोटेशन करने में
1: भी,
0: क्योंकि
1: वो भी, हाँ, वो
0: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायोला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए, तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो
1: अभी
0: ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 वायोला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब।
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से।
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो हाँ, डॉल्बी आप लोगों ने
1: जी,
0: किया था
1: जी, जी।
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस हैं, बहुत लंबा पीस है, 2.5-3 मिनट
1: सारे किए हुए
0: जी,
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का।
0: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
0: जैसे, इस तरह से,
1: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
0: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
1: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपए खर्चा हुआ था
0: जी
1: उस टाइम पे, मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ।
0: जी जी,
1: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपए पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो।
0: जी
1: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
0: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म है।
1: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया है वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
0: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
1: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
0: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
1: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
0: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
1: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
0: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया।
1: ये सुनाइए।

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी
0: कि ये संगीत आपने
1: और यहाँ मैं एक
0: किया
1: बात
0: था।
1: बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत,
0: जी
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलेंस की डबिंग है, वो सब लिखना, वो सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई। जी
0: जी
1: जी
0: क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के ज़माने में, जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी, नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि
0: हाँ
1: मोहम्मद साहब थे,
0: जी
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल
1: जी
0: गया।
1: जी क्योंकि सफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे, तो
0: जी
1: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया जी, चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना।
1: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है? देखा तो हुआ है इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? जी मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा,
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब, मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम? बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: नौशाद
0: थी।
1: साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी,
0: जी।
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह।
1: आज भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे।
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं,
0: जी
1: गुलाम अली साहब से ले, आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी पर बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्या है,
0: जी।
1: तहजीब और इज्जत,
0: जी
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
1: मैंने

0: को कभी तू बोलते नहीं सुना,
1: जी
0: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफ़ी मियाँ आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी, अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी, आप जो दे देंगे। नहीं, आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए, ये बात है 72 की।
1: जी
0: क्या उम्र होगी मेरी? 48, 58, 68, 24 साल की उम्र,
1: जी जी
0: 23-24 के।
1: जी
0: तो मैंने कहा, अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज़्यादा पैसे भी आपने लिए,
1: जी
0: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। तो हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज़्यादा पैसे मैं लूँ।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का। तो
1: हाँ
0: मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
1: हाँ
0: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
1: तो ये 3 गुना मांगा
0: 750 रुपये आ गए। बोले
1: जी,
0: ठीक है,
1: 750 रुपये एक गाने
0: एक
1: के।
0: गाने का। बोले ठीक है,
1: गजब।
0: बोले ठीक है। और यूनुस साहब, ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
1: वाह
0: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
1: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ
0: साथ
1: काम
0: काम
1: करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
0: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम, हाँ, कितना नज़दीक आ गए होंगे, कितना
1: जी
0: समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है।
1: जी
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अब्बू के पास ले
1: अबू
0: चलिए। ले चलिए, मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया
1: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही
0: प्रीति
1: हुआ।
0: की वजह से। मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो, मतलब वो अब्बू और वो प्रीति, अब्बू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम
1: गजब।
0: कहाँ है? मैंने कहा बोले बड़ा अच्छा लगा, बुजुर्ग जब
1: नाम लेके पुकारे।
0: नाम लेके पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
1: हाँ,
0: पता नहीं क्या बात है।
1: अरे
0: हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह,
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया, और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी
0: वो
1: नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे। यहां पहले उनका एक गाना सुनते हैं, अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
0: नहीं,
1: इस गाने
0: पहले
1: के बाद
0: नौशाद
1: आगे
0: साहब का एक
1: बढ़ाएंगे।
0: गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है,
1: जी
0: माई फ्रेंड का गाना है, वो
1: हाँ
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है, नैया मेरी बहती जाए। ये मेरा पहला गाना है उनके साथ।
1: हाँ वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, उसके बाद
0: ये
1: आगे की
0: सुनिए,
1: बात
0: उसके बाद
1: करेंगे।
0: फिर हम मदन
1: जी
0: साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी ये शायद 1963-64 की बात होगी,
0: जी
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको, इज माय फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर वो कहते हैं ना चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन। यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था, फेलिक्स,
0: जिसकी दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरडिया साहब ने वो पोल का सिखाया था।
0: जी
1: वो पोल का कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है। तो वो सुनते रहे
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था।
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी,
1: सोनिक साहब। हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा।
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
0: जी
1: जी, रवि साहब क्या उन्होंने बहुत काम।
0: हाँ,
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग। तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब।
0: जी
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए। और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। तो वो गाना था हर तरफ अब यही अफसाने। तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम।

0: गाना। और मैं ये गाना बजाता चला गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
1: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
0: उसके
1: है,
0: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
1: ये किस धुन पे किया था
0: पता नहीं, आई डोंट नो
1: जी
0: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
1: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था, लेकिन फौजी शख्सियत।
0: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
1: जी,
0: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
1: हाँ,
0: मैं उनका ही गाना दारा री री यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
1: अपनी तरफ से,
0: अपनी तरफ से बज गया,
1: वाह
0: मैंने
1: वाह।
0: जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते व्हाट डिड यू प्ले इट, मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले इट जस्ट नाउ, एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी।
1: हाँ,
0: मैंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या आई प्लेड दिस तारा री री री तिरी री तारा री तर तर री री द द द ये बजाया मैंने
1: वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
0: लाया तो हूँ।

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वायलिन होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वायलिन।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: यहाँ से यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन
0: बहुत
1: आता
0: गानों
1: है
0: में सोलो बजाया,
1: जी।
0: फिर
1: कुछ
0: उनका
1: गानों का जिक्र हो जाए
0: बैकग्राउंड मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं।
1: जी।
0: हाँ ये गाना याद है मुझे, बाकी भी याद नहीं है
1: जी।
0: मुझे। हर तरफ अब

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
3: आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं। उसमें फॉरेस्ट की अपोर्टेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अपोर्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को एडवोकेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 25 से 22 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर इस समारोह को आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफालवा युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। भारतीय वायुसेना जोधपुर वायु स्टेशन पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। 14 दिवसीय यह अभ्यास मंगलवार को संपन्न

0: होगा। यह अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायुसेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, SU-30 MKI और राफेल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबाफ ने यह टिप्पणी की।
1: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
0: बांग्लादेश के ढाका में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में एक बड़े अभियान के अंतर्गत 527 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने की सामग्री और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिविन ने 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिला निशानेबाजों को इस जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। President Draupadi Murmu addressed the valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi. She emphasized that sustainability and urgent climate action as critical global necessities rather than mere slogans.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: Prime Minister Narendra Modi had addressed the gathering on the first day of the conference yesterday. He said India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Mr. Modi said that India is rapidly working in areas like clean mobility and green hydrogen. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan or Drug Free India campaign. The Ministry of Youth Affairs and Sports said campaign is witnessing active mobilization of young people, with the program being held at 1,067 locations across the country under the 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan, aimed at building a drug-free youth community for a developed India. In Punjab, the third phase of BJP's Nasha Mukti Yatra was launched today from the Sadiqi border in Fazilka by Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal. Speaking to media, Mr. Meghwal said the anti-drug marches and awareness yatras should not be viewed from a political perspective, as some of people have described it. As part of the campaign, a cycling rally was organized in Hyderabad, Telangana today with the aim of encouraging young people to stay away from drug abuse. Union Minister of State for Defence Sanjay Seth witnessed the air show of the Surya Kiran acrobatic team of the Indian Air Force at Meerut in Uttar Pradesh. The team took over the skies yesterday for the first time, captivating spectators with a breathtaking display. The Defence Ministry informed that over 1 lakh people, including students, NCC cadets and NSS volunteers, turned up over 2 days to witness the display. In a social media post, Mr. Seth described the event as a remarkable blend of discipline, precision, teamwork and professionalism, and a testament to the Indian Air Force's glorious capabilities. The minister also commended the courage and dedication of the team, which performed in over 800 air shows both in India and abroad in its 30-year journey so far. The foreign portfolio investors, FPIs, have offloaded Indian equities worth 20,974 crore rupees in September so far. According to the latest depository data, out of the total

अभी आपने सुना ये भक्ति गीत जिसे गाया था अनु मलिक, साधना सरगम व साथियों ने। भजन फिल्मों से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पवित्र गंगा फिल्म का ये भजन।

0: अभी आपने सुना बानी जयराम व साथियों की आवाजों में गाया पवित्र गंगा फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम में रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान

0: के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
3: अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन आप सुना करते हैं वीकली पल्स।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ युवा साथियों, हम हाजिर हुए हैं ठीक उसी समय पर लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। और जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार वाले दिन होता है वीकली पल्स, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल अपडेट्स। तो युवा साथियों तैयार हो जाइए। वैसे तो युवा साथियों, हमें पता है कि आज के इस दौर में, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें आप सभी हमारे युवा साथी जो हैं सभी विषयों के साथ इन टच रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ एक जानकारियां, कुछ एक बातें जो आपसे छूट गई हों, तो उनसे हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत करवा पाएं। तो इसीलिए हम लेकर आते हैं रविवार वाले दिन वीकली पल्स, यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स। जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले हम लेंगे क्या म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि हमें पता है हमारे युवा साथी सबसे पहले अपना मूड फ्रेश करते हैं। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम युवा मंच में आपका फिर से स्वागत है। युवा साथियों, हमारे श्रोताओं का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। युवा मंच कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। चलिए युवा साथियों, बात करते हैं नेशनल अपडेट्स के। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 20वां रोजगार मेला जो है और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सरकारी संगठनों में नए नियुक्त युवाओं को सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया है। और युवा साथियों, ये भी बता दें कि सेमिकॉन इंडिया 2026 का भव्य आगाज जो है वो हो चुका है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री सेक्टर में भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बाकी जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। फौरन हाजिर होते हैं, फिर जानकारी के साथ। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
2: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज बात हो रही है वीकली पल्स की और इसमें हम लेकर आते हैं नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने AI फोर्स का जो है वो बड़ा चल रहा है बातचीत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी और सुरक्षा के लिए देश में एक समर्पित AI फोर्स बनाने की जो है वो घोषणा कर दी है। और अगर हम अमेरिका और टैरिफ नीति की बात करें तो अमेरिकी संसद में रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर भारी टैक्स यानी कि 100% टैरिफ लगाने का बिल जो है वो चर्चा में है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए रणनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और मिडिल ईस्ट और हूती हमले की अगर हम बात करें तो यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जिसके चलते अमेरिकी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जानकारियां अभी बाकी हैं युवा साथियों, लेकिन लेते हैं फिर एक छोटा सा म्यूजिकल अंतराल।

0: Sporty Look Standard 6 Airbags और Fuel Efficiency up to 24.8 kmpl. ये है Epic New Maruti Suzuki Swift Petrol. अब पाइए पावरफुल Z Series इंजन के साथ, जो हर ड्राइव को बनाए मजेदार और इकोनॉमिकल. और अब मिलेगा टोटल बेनिफिट अप टू ₹35,000. स्टाइल, सेफ्टी और सेविंग सब एक ही पैकेज में. तो देर किस बात की, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर आज ही विजिट कीजिए और स्विफ्ट पेट्रोल घर लाए. जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है. टीएनसी अप्लाई.
1: युवा मंच कार्यक्रम में फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं. युवा मंच कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर. और आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच. चलिए बात करते हैं खेल जगत की. एशियन गेम्स 2026 का शानदार आगाज जो है वो हो चुका है. आईची नगोया में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों ने अपने अभियान की दमदार शुरुआत की है. निशानेबाजी में पहला पदक, भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर खेलों में अपना पहला खाता खोला. इसके अलावा व्यक्तिगत स्पर्धा में इलेवेनल क्लारिनेट ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए देश को एक और सिल्वर मेडल दिलाया. महिला टेबल टेनिस टीम की जीत की अगर हम बात करें तो भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर शानदार जीत के साथ शुरुआत की है. चलिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर फौरन हाजिर होते हैं कुछ और जानकारियों के साथ.

युवा साथियों, अब पहुंच गए हैं अंतिम क्षणों में, तो चलिए बात करते हैं लोकल यानी के हिमाचल की। तो करीब 8 दशक से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को अब निर्णायक गति मिल गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कर्तव्य भवन नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे जल सुरक्षा, सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा उत्पादन और यमुना के पुनर्जीवीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो युवा साथियों, युवा मंच कार्यक्रम का सफर जो है वो अब संपन्न होने पर है। तो जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि युवा साथियों, जानकारियां भी हम साझा करते हैं और साथ साथ अपने युवा भाई बहनों को सीख भी देते हैं। तो आज के कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम ये कहना चाहेंगे कि हमें स्वीट पॉइजनिंग से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मंथरा ने स्वीट पॉइजनिंग की तो रामचंद्र भगवान जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और मामा शकुनी ने स्वीट पॉइजनिंग की तो कौरवों का नाश हुआ, और शूर्पणखा ने स्वीट पॉइजनिंग की तो सोने की लंका जलकर राख हुई। तो युवा साथियों, जब भी कोई ऐसा प्रयास करे तो आप अपना दिमाग ज़रूर लगाना और किसी की बातों में मत आना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आज शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल। शाम 6:30 पर हम प्रसारित करेंगे महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। इस कार्यक्रम में आज बात होगी सायर यानी सैर के त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके महत्व पर भी जानकारी साझा की जाएगी। जुड़ने के लिए आप डायल करना ना भूलें, हमारा दूरभाष नंबर है 0182-224-391। इस पर हमारी जो महिला सखियां हैं वो इस दूरभाष नंबर पर जुड़ सकती हैं। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, इसमें जानकारियों के साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8 बजे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र सुनवाया जाएगा। देश का नाम सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक महेश भट्ट द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी दिल्ली से शाम की सभा में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9 बजे News@9, रात्रि 9:23 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे एशियाई खेल 2026 व तुरंत बाद अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। श्रोताओं ये

0: विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: जी 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई।
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप वरुणा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऊना जिले की बालीवाल पंचायत में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायत में करीब 125 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़ रहे बालीवाल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अग्निहोत्री ने बताया कि पंजुआणा में 100 करोड़ रुपए की लागत से लैब स्थापित की जाएगी और 40 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर बल्क ड्रग पार्क का प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आज भाजपा के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान सरकार 3.5 वर्ष में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद भी प्रदेश में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है।
1: एक साल का कार्यकाल जो बचा है वर्तमान सरकार का, इसमें काम की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। जब उम्मीद नहीं है तो जिससे उम्मीद है उसके साथ काम करिए। वो उम्मीद अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भाजपा की बनेगी, आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, उससे उम्मीद रखिए। एक साल छोड़ दीजिए, 4 साल हम जो छूटे हुए विकास कार्य है उनकी पूर्ति करेंगे।
0: उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर सम्मेलन आज कुल्लू में संपन्न हो गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर ने कहा कि उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार, संसाधनों का बेहतर उपयोग, तकनीक का समावेश और विद्यार्थियों को समाज व समुदाय से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्ययोजना को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का राजस्व घाटा 6,577 करोड़ रुपए, जबकि राजकोषीय घाटा 9,698 करोड़ रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आगामी वर्षों में राजस्व और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, खेल और आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार हो रहा है। पीएम श्री राजकीय विद्यालय घुमारवी में आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। धर्माणी ने कहा कि सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों के केंद्र में विद्यार्थी हैं और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल से सैंज

0: क्षेत्र की रैला पंचायत में हुए रिसाव के मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाहक उपायुक्त व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर रिसाव को पूरी तरह रोक लिया गया है। उन्होंने कहा कि रिसाव के कारण जमा हुए मलबे को हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी तैनात कर दी गई है और स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मेरा युवा भारत के नौर द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और इससे होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को लेकर जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने भी नशे से दूर रहने और समाज को इस बुराई से मुक्त कराने का संकल्प लिया। कांगड़ा जिले में नियमों की अनदेखी कर संचालित की जा रही निजी वॉल्वो बसों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक विभाग के उड़न दस्ता दल ने कुल 76 वॉल्वो बसों के चालान किए हैं। इन मामलों में 15 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम शाने गजल। शामे गजल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जगजीत सिंह व चित्र सिंह के युगल स्वरों में गाई इस गजल के साथ।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम श्यामी गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गजल।

0: अभी आपने सुनी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज़ में गाई ये गज़ल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: Sporty look, standard 6 airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. ये है epic new Maruti Suzuki Swift Petrol. अब पाइए powerful Z series engine के साथ, जो हर drive को बनाए मजेदार और economical. और अब मिलेगा total benefit up to ₹35,000. Style, safety और savings सब एक ही पैकेज में. तो देर किस बात की? अपने नजदीकी Maruti Suzuki Arena showroom पर आज ही विजिट कीजिए और Swift Petrol घर लाएं. जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है. TNC apply.
0: कार्यक्रम शामी गज़ल में आप सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में गाई ये गज़ल।

0: अभी आपने सुनी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम श्यामे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम श्यामी गजल में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में गाई ये गजल।

0: आसान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजलों पर आधारित शामे गजल, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। और इस कार्यक्रम में आज बात होगी सैर यानी सैर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके महत्व पर बातचीत होगी। आपको जुड़ने के लिए डायल करना होगा 01892224391 हमारे स्टूडियोज़ का नंबर।

0: कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाली सारिया साड़ियाँ जड़िया बोबो भैन हैं न्याणे स्याणे हैं साढ़े जुआंदड़े भाऊ हैं कन्ने और बाकी श्रोता जितने भी इस वेला साढ़े कन्ने जुड़े न तो हाँ सारे थोड़ी बड़की बोबो यानी वर्षक टोच की तरफ से प्यार भरी नमस्ते। तो कदे हाल है थोड़ा? मैं तो चाहती कन्ने मैं भगवान अगे प्रार्थना भी करती कि तुह सारे अपने अपने घर सुखी रहन, समृद्ध रहन, कन्ने हस्ते खेलते रहन, कन्ने बिल्कुल तंदुरुस्त रहन। ठीक है जी, तो हूँ चलते हाँ अगली गप्पा पर। तो लेके हाजिर हो यही मैं थोड़ा यानी कि अपनिया बोबो भैणा का कार्यक्रम क्या मिंजरा कने इच्छा जहाँ गलबात करनी है। वैसे तो तुह सैर जी है सह मनाई चुकी ने सारे साढ़े जड़े श्रोता इस वेला जुड़े हो कने बोबो भैणा न्याणे स्याणे जवानदड़े भाऊ भैणा जुड़े हो सह सारे सैरी का त्यौहार जोड़ा सह मनाई चुके हो। पर अज अहाँ गल करनी कि क्यों मनाते हाँ कने इसके पिछे का जोड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता इतनी धूमधाम कने साढ़े हिमाचल च क्या काफ़ी इस ये जो त्यौहार है से मनाया जाता। तो इस कार्यक्रम च जुड़ने तइए तो डायल करना पौना 01892224391 नंबर कने साड़िया बोबो भैन जड़ियाँ से जुड़ने का प्रयास करा दियां ने। तो चला जुड़ दे दिखदे कौन है साड़ी बोबो भैन जी पहली जुड़ी है। हैलो।
1: हैलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: जी और क्या हाल है जी?
0: ठीक है ने, अपना नाम भी दसा है कने अपने ग्राएं दा नाम भी दसा।
1: मैं मधु बोला दी पठियारे ते।
0: पठियारे ते मधु जी क्या हाल चाल है तोड़े?
1: बस ठीक ठाक।
0: ठीक है ना, बरसातां खत्म हुई या सैरी दा त्यौहार तो हां मनाई लिया?
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: जी।
0: ता अज अहां मैं ना अपनिया बोबो भैणा ना पहाड़िए च गलांदे ना टोणिया ना टोणिया दा मतलब कि दिखना है कि साड़िया बोबो भैणा सैरी दा त्यौहार कल्ले कल्ले मनाई लिया। एक ता तुहां मिंजो नहीं सद्या है ना, कल्ले कल्ले तो हाँ रोटियां खाई लिया। तो हूँ मैं ये पूछना है कि क्यों मनांदे कने इसका महत्व क्या है मनाने का, जे थोड़े हल जानकारी है तो तुहां साझा करा कने फिर अहां भी बिच तिश जेड़ा है थोड़ा थोड़ा टारा लांदे जांगे। ठीक है जी।
1: ठीक है जी।
0: तो दसा हूँ का
1: ये मनांदे शहर इस वास्ते
0: जी
1: जिन्हें मतलब बरसात हो पता ही है बड़ी लंबी चौड़ी चली जाती।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी, पिछले साल पता ही है तुम देखा जाए ढोल हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी भारी आपदा आई हिमाचल च।
1: हाँ जी, आपदा आई ना।
0: हाँ जी,
1: चलो एक पैसा आई पर थोड़ी बहुत आई ना घर
0: नहीं इबे बड़ा आईया सहजे सहजे भरे आई बे अंबर ना।
1: हाँ
0: है ना, जिया स्याले दिया बरखा होंगे तिया भरे आई बे बरसाती। अच्छा जी,
1: बोलते पे बरसात अच्छी तरह निकली जा ना।
0: हाँ जी
1: हाँ जी, उस वास्ते मनांदे शहर।
0: बिल्कुल, कने सब ते बड़ी गल है कि ये जड़ी सैरी की संगरांद होंगी ना इसका बड़ा भारी महत्व है। महत्व यह है कि जियां दिखा जड़िया काले महीने रहना गई होंगे है ना, थोड़ा काला महीना जड़ा ऐसा है जिसे बोलते करड़ा महीना मनिया जाता है ना। देवी देवते भी जड़े हैं सह मतलब इस महीने च उतना ज़्यादा नीति ना

0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई बोबो बहनों, कार्यक्रम मिंजरा च तुहाड़ा एक बारी फिरी ते स्वागत है। कने ये कार्यक्रम जेड़ा इस वेला तुहां सुना दे आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते। कने अज मैं तुहाड़े कने तुहाड़ी बड़की बोबो वर्षा टोच कने जुड़ने वास्ते तुहां नंबर डायल करना है 01892224391। इस पर जुड़ी के तुहां मेरे कने गलबात करी सकदे। कने अज अहां जेड़ा विषय लिया सै लिया सैर, यानी कि सायर भी बोलदे कने सैर भी बोलदे, ये अहां मनाई बैठे ता इस दे मनाने दे कारण क्या हैं कने इसका महत्व क्या है, इस पर अज अहां जिहड़ी ऐसे गलबात करा दे। दिखा त्यौहार जिहड़ा भी है ना कोई, तो सह क्या होंदा आपसी भाईचारे का जिहड़ा ऐसा प्रतीक मनिया जांदा है ना। दिखा चाहे जितने भी गुस्सा होन, गिले शिकवे होन, पर जैलू त्यौहार आंदा कने जैलू जियां मनी लिया सैरी, वह हाँ सारे भंडारे का लगांदे, क्योंकि सैरी दी जिहड़ी ये होंदा ना त्यौहार, इस दियां रोटियां जिहड़ियां जिहड़ियां तियां त्याणियां हाँ ब्याही तियां होंदियां ना, तिन्हें भी महीना पहले तो तैयारियां शुरू हो जांदियां कि जियां पकवान बनाई बनाई के देना जांदे भई है ना। त्यौहार आह्ले दिन तो अपने घर बनाते ही बनाते हैं ना, पर धियां त्याणी जो वैसे भी देने का रवाज है। कने अपना अड़ोस पड़ोस जिहड़ा होंदा तिथु भी इन सारियां रोटियां संचोलू कने जितनिया भी भांति भांति दियां कि ये करेले मतलब इतनिया सब्जियां बनदियां कने पतरोड़े कि अहां भी अपने घर च देखिया कि पूरा थाल भरोंदा है ना। फिर अपनी इच्छा अनुसार 7, 9, 11 रोटियां रखा तू हाँ कने फिर आस पड़ोस च बनदा। कने एक और इस कने ये जुड़िया है कि बोलदे कि इस दिन ना द्रुब भी दिंदे वड्डियां, क्योंकि शुभे का प्रतीक है ना ये त्यौहार। इतनी बरसाती बरसाती बुरा हाल हों तो जो पता कुथी तो कुछ सुना दे हाँ कुथी तो कुछ सुना दे, तो इस दिन जैलू अहाँ भंडारा देना जाते तो बड़िया दे अहाँ चरण स्पर्श करते, कने जैलू अहाँ पैर बंद दे तो तिन्हें अहाँ द्रुब देंदे ठीक है, तो द्रुब दे के अहाँ तिन्हों का आशीर्वाद लेंदे। कने इस जिहड़ा साडा आपसी मेल मिलाप है ना सह भी बधदा ठीक है जी। कने दूजी गल ये कि अखरोट भी बंडदे इस दिन। एक बोबो भैन जुड़ी आवा गल कर दे। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी। नमस्ते,
1: क्या हाल है तुहाड़ा?
2: हाँ जी ठीक है, ठीक है
1: ठीक है। आप ही आप ही आए ना कुछ की ते दौड़ी दौड़ी के आए ना, फिर ना दसी दे अपना पहले। हाँ
2: जी, ना ना दौड़ी के नहीं आए बैठे ना।
1: अच्छा ना दसा वाला अपना।
2: ना मेरा निर्मला देवी है जी।
1: कुछ ते बोला दे ग्राएं दा ना भी दसा। त्रिलोकपुर मते वारी है कुंड दिया छापरे वाला त्रिलोकपुर की कोई और?
2: त्रिलोकपुर छापरे कन्ना जड़ा लगदा अग्गी।
1: अच्छा जी,
2: कोटला त्रिलोकपुर।
1: कोटला त्रिलोकपुर जी, महादेव जी दा मंदिर भी है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, है ना जी?
2: हाँ जी, बड़ा अच्छा मंदिर है।
1: हाँ हाँ, चलो तिस बारे च भी यहाँ कल की गल कर गए, पर आज यहाँ गल करा दे कि सैरी दा त्योहार तुहां मनाई बैठे मनाई बैठे ना, तुहां सैरी दा त्योहार मनाया ना?
2: हाँ जी हाँ जी।
1: सैर मनाई ना तुहां अपने घर? हाँ
2: जी हाँ जी।
1: अच्छा, तो मैं ये पूछा दी अज, मैं अज अपनी जितनिया भी बोबो भैणा मेरिया सखियां या जिहड़ियां मेरिया भैणा भी जुड़ा दी ना, मैं तिन्हें अज टोआ दी है। टोने का मतलब ये है कि मैं ये सोचा दी कि तुहां बड़े वो तो नहीं होई गए मॉडर्न जमाने कन्ने तो नहीं चली पे, भाई भुली तो नहीं गए कुथी भी सैरी क्या क्या कर दे।
2: सैरी का त्यौहार मनाई लेंदे।
1: हुण मिंजो ये दसा भी क्या क्या बनाया हा तुहां सैरी दे त्यौहारे च, कने कजो मनांदे?
2: आहा पकौड़े बनायो है कने सा गुलगुले ऐसा बनांदे तिने सा ओ पाई केड़ियो कद्दूकस करके सा पाणा के अगलांदे मेवा वगैरह सब कुछ पाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कने सब ते बड़ी गल है कि दिखा इतनी बरसात हुंदी है ना कि जालू जे बरखा बिजलियां गड़ाके पटाके कुथी क्या होवा दा कुथी क्या होवा दा, जालू ये सारियां चीजां सुन दे ता इयां दिल ए हो जांदा है ना। बेशक ए थु नहीं होवा दा, पर जित्थू भी होवा दा ता आबरता पवा दा पवा दा ना,
2: दिल
1: कटदा ना। ता जालू जे सैरी दी सगरां दोंदी ता इयां खुशी आई जांदी कने एक से टिड्डा भी बोलदा है ना, कने ठंडी ठंडी ओ भी चली पौंदी, सर्दी दी भी जेड़ी है सै आहट हो जांदी, हल्के हल्के स्वेटर भी पाना पई जांदे है ना। ता हाँ तुहां दिखिया होना कि बहुत बड़ा महत्व है इस त्योहार जो मनाने दा है ना। तुहां पत्रोड़ू भी बनाए है क्या, क्या क्या बनाया हा तुहां सहरी च?
2: हां जी पतरोड़े भी बनांदे, फिर पकोड़ू भी बनाने, फिर म्योए दे सा पल्ले भी बनाने,
1: संचोलू बनाने,
2: सारा कुछ बनांदे जी, सारा कुछ जड़ा जड़ा मीठा लगदा अच्छा सा सारा कुछ बनांदे। हां
1: अच्छा मुझे एक गल दसा, तुहाड़े की ये कद्दू डानियां लगे हो लंकू?
2: हां जी
1: तुहाड़े घरें की ये कद्दू डानियां लंकू लगे हो?
2: कद्दू कद्दू
1: हां
2: मैं
1: इस तरह पूछा दी क्योंकि जेडे पुराने जमाने थे ना, जालू नौ सब्जी लगती ही ता हाँ एक दूए बंडदे भी थे, ता ए रवाज जिंदा रखिया कि नहीं?
2: हाँ जी कदमाए भी बंडदे है, फिर जड़ी भी सब्जी लग गया बंडदे है कि ये लगन डानिया लगन सब
1: है ना, सहरी दे त्योहारे वो बड़ा भारी रवाज था
2: अपने हिमाचल च, सारा कुछ बनदे जी
1: है ना। तो मैं यही गलाना चाहती इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जड़िया साड़िया पुरानी रीतियां पीया ना जी, ये भुलानिया नहीं, हूँ दिखा तू
2: सड़िया भी लगदियां तो सारी अगे तो छली भी रखनी, गरगल भी चढ़ाना, बरूद भी चढ़ाने, हर चीज रख दे जी।
1: बिल्कुल नौ ही फसल जितनी भी निकलती ना सारी सैर माता है जड़ी है चढ़ाई जांदी है ना। कहने से टोकरी दे बड़ी सुंदर सैरी माता दी बनदी, तुहां भी बनांदे? अच्छा खोड़ भी खेल दे तुहां, बोल दे इस दिन खोड़ा दी भी अजकल दिखिया होना तुहां जी ना, खोड़ लगाए ना अखरोट जी बोल दे, हुण मैं तो पहाड़िए च गला दी ना, तो तुहां भी रख दे अखरोट भी रख दे तुहां, जियां मंडी सोलन अरकी वगैरह मनांदे ना इस त्योहारे हो तो खोड़ भी रख दे। हाँ जियां ठंडे एरिया च मनांदे ना जालू सैर, तो खोड़ा दी खेल भी खेल दे, जियां सा ठिचने वाला काम हुंदा ना खोड़े ना खोड़ ठिचना, सह वाली खोड़े ना खोड़ जेड़ा ठिचना हुंदा ना सह गेम भी खेल दे अज के दिन, अज के दिन नहीं मतलब सैरी वाले दिन।
2: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ जी, तुहां नां दस्या क्या अपना?
2: मैं दस्या अपना नां निर्मला देवी तलोकर।
1: अच्छा जी, तो तुहां सारे प्रोग्राम सुनदे धर्मशाला दे?
2: हाँ जी सुन दे जी, हाँ जी हाँ शामी 5 बजे ते लेके हाँ 6-7 बजे तक प्या दिक्कर सुन दे रहने, सवेरे भी लांदे।
1: अच्छा जी,
2: शामी भी लांदे, काफी इस हाँ सुन दे रहने।
1: तो आज मैं इस तरीके ये प्रोग्राम में च ये जड़ी गल बात है तां ले ही मैं दिखना चाहती ही कि मेरी बोबो भैणा सैरी दी नॉलेज रख दी ने कि नहीं, तो मेरी बोबो भैणा अली ज्यादा मॉडर्न नहीं है, नोइया अपने त्योहारां त्योहारां मना दी अपने घर च है ना।
2: हाँ जी पुराने त्योहार तो बड़े अच्छे होंगे, पर अजकल मॉडल जमाना चली पिया तो इस थोड़ा जड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे से थोड़ा कम भी करी दिंदे, पर आहां दे जड़े टाइम में देने से सब सब मनांदे जी।
1: तो उन कार्यक्रम च इस गल बात जो करने दा हां यही रखिया कि जड़े अपने बच्चे हैं ना गांव वाले, जियां बिटियां भी होनियां घरां च है ना, तिना अगलिया घरां जाना, तो बालक भी होने, तो जालू जे पूजा पाठ कुछ भी अहां करना लगन ना, तो अहां जड़े बड़े हैं घरां दे साडा फर्ज बनदा कि अपने बच्चे हैं ना इस सारियां चीज़ां दे बारे च दसन है ना, क्योंकि अहां तो नित बैठी नहीं रहना, कदी ना कदी तो प्राण पूरे होने, तो जे अहां
2: हां दा दिन पर दिन सब कुछ घटा दा आया है,
1: हां
2: पता नहीं कालू दिया संसार छड़ी के चली पौना।
1: बस ता अपने कन्ने नहीं ले जानी सारियां चीजें, बच्चे दसी दूसी जानियां, ठीक है जी, कने तुहां लंबी उम्र जीन, कने साडे कन्ने इयां गल्लां करदे रहन,
2: बच्चियां वास्ते लांदे चीजां फल फलूट सब कुछ बच्चियां वास्ते छड़ी के जांदे।
1: हां जी हां जी हां जी,
2: तो ऐसा गल्ला ता
1: हाँ जी, तो तुसा कार्यक्रम च जुड़े अपनी बड़की बोबो कन्ने गल्लां बातां कीतियां, तुहाड़ा जुड़ने वास्ते मता मता धन्यवाद।

जी भी साड़ियाँ जिहड़ियाँ बो भैन हैं ना सारी जानकारी रखदियाँ है ना। कहने वैसे भी साड़े बजुर्ग अगला है भी एक जनानी पढ़े तो असें सारे घरों जड़ा है ना असें शिक्षित करी दी है ना। तो अगर घरे की जिहड़ी मेड़ी होंगी ना मेड़ी जान देना तू हाँ सारे खैर हाँ हाली इतने बड़े अंग्रेज़ भी नहीं बने कि पहाड़िया ना जान। तो जो मेड़ी हों ना घरे का मेड़ी जनानी होंगी ना सह अगर सारिया चीज़ों की समझ रखती हो है ना तो मुठ्ठी ही है परिवार रखी भी लेंदी। मुट्ठी का मतलब हुंदा कि एकजुट रखदी परिवार हो। कने जितने भी साढ़े रीति रिवाज त्यौहार हैं तिन्हां दे बारे च घरे च तिन्हां मनांदे भी कने सारा कुछ करदे पूजा पाठ भी करदे। कने अहां अपनियां बो भैणा कने ये क्या बोली सकदे कि प्रार्थना करी सकदे अहां कि अपने बच्चें भी इन्हां चीज़ां च जिहड़ा ऐसा शामिल करा। ठीक है जी तो हुण अहां सुनी लैंदे गीत नहीं तो बो भैणा मेरियां भी जो दड़ाई पाउणा अगले कार्यक्रम कि तुहां गीत गूत सुनांदे नहीं हैं क्या गप्पां चुथदे रहिंदे है ना। तो क्या करना हुण बो भैणा साड़ियां चुड़दियां चुड़दियां गल्लां करा दियां तो बड़ा मज़ा आवा दा कने नॉलेज भी वधा दी साड़ी कुछ गल्लां जिहड़ियां सांझो पता नहीं हुंदियां से साड़ियां बो भैणा सांझो दसदियां है ना जी। तो यह सिलसिला इं चलिया रहना इस गीते ते बाद भी आवा किट्ठे मिठे होई के सुनदे पहाड़ी गीत।

बोबो भैनों गल इ भी कई बारी ना ये कार्यक्रम करा दे तो दिल करता भी घड़िए ना पुठिया करी दीए पुछा कहो सह इस तई है कि अली साड़िया गप्पा और अह चुथनिया होंदिया कहीं घड़िए च ना टाइम हो जाता कने टाइम साड़ा बजया हुंदा है ना जी अद्धा घंटा है तो इसते उपर अह ज़्यादा नहीं गलाई सकते तो घड़ी भी सांझो सीधी रखना पौनी कह कि सांझो कार्यक्रम भी करने हैं है ना। तो जाने तो पहले तुझे दस दिए कि इस बहुत अच्छे कने जानकारियों बारे जिहड़ा ये कार्यक्रम है इसे तुहाड़े तक पहुँचाने तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानिया ने कने इस कार्यक्रम के जिहड़े प्रस्तुतकर्ता हैं सैन डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह कने अज जिहड़ा ये कार्यक्रम तुहां सुनिया अपनी बड़की बोबो यानी वर्षा कटोच कन्नै कन्नै रही जिंदगी ता अगले कार्यक्रम च मैं तुहाड़े ने फ्री ते मिलगी तालू तक तुहां सारियां बोबो पैणा न्याणे स्याणे जवांदड़े पाऊ पैणा कन्नै और जितने श्रोता इस वेला साढ़े कन्नै जुड़े न तुहां सारे अपने अपने घरां च चुस्त तंदुरुस्त रहा कन्नै अपना बड़ा भारी ज़्यादा ख्याल रखनी हो क्योंकि मौसम च भारी बदलाव होआ दा है तो तुहानू अपनी सेहत दा ध्यान जिहड़ा ऐसा रखना पौना क्योंकि मिठी मिठी सर्दी भी हुण शुरू होई है ना जी। तो जल्दी कने अगले कार्यक्रम च मैं तुहाड़े ने फ्री ते मिलगी तालू तक तैयां मिंजो तुहां दिया विदा अच्छा जी प्यार भरी नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार और शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC का शीर्ष कमांडर था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1,00,000 से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को

कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैणां जो सारिया श्रोतियां जो सांझ दी इस वेला टियाले ते किसान मित्र दी प्यार भरी दो हथ जोड़ी के राम राम। ता उम्मीद करते न किसान साथियों तुहां बिल्कुल ठीक ठाक होने न, कन्नै बिल्कुल जेड़ा सा तुहां दे काम काज भी जेड़े सा बांके तरीके कन्नै चले होने न। ता किसान साथियों अज टियाले पर मैं कल ही है, कन्नै ढेर सारियां जानकारियां तुहां सोगी जेड़ियां सा सांझा करनियां न। ता शुरुआत दे विच गल करदे न दिक्खा कि अहां दी जेड़ियां मुख्य फसल जेड़ी है सै लगभग हुण तैयारियां पर जेड़ी सै है, कन्नै हुण सै जेड़ा समा आई है कि किसान ने जेड़ा सै अपने जिसी बोलदे पूरे बोरियां ड्रम पेड़ू जेड़े सै पूरे अनाजे कन्नै जेड़े सै भरने न। कन्नै दिक्खा भई अगर गल करिए इसते अहां सोगी ता जेह्ड़ी आगामी अहां दी जेह्ड़ी भी जेह्ड़ियां फसलां दी तैयारियां हैं ओह भी अहां दे किसान साथियां जेह्ड़ा सा अपने मनै विच जेह्ड़ा सा गल्लां सोच लेईयां न कि हुण आगामी जियां कि सरसों होई है या जेह्ड़ियां अहां दियां गोभी वर्गी सब्जियां हैं उन्हां दी पनीरी जेह्ड़ी अहां लगाई ही उसी पौध जो जेह्ड़ा सा हुण जेह्ड़ा नर्सरी ते निकाली के पोली उस ते निकाली के जल अहां अपने सवाड़ुआं विच जल लगाना है या खेतरां विच, तां इसी पाहें भी अहां दे जेह्ड़े अहां दे सब्जी दी जेह्ड़ी खेती करदे हन सै अहां दे किसान भी जेह्ड़े सै काफ़ी तिना अपना कम काज तेज करी त्या। कन्नै अगेती जेह्ड़ी सब्जियां दी खेतीबाड़ी है उसा जो तिना लगाने दा कम शुरू जेह्ड़ा सै करी त्या है। कहे कि किसान साथियों अगेती जेह्ड़ी बेमौसमी सब्जी जलू अहां कोई भी फसल है कोई भी सब्जी है कोई भी उत्पादन बेमौसमा जलू अहां वाल उत्पादन आउंदा है बाजार विच हां जो उहदे जिहड़े सै भाअ अच्छे मिलदे हन। जल जल दिखा बाजारां विच कोई सब्जी है कोई भी अनाज है या कुछ भी है जल शुरुआती तौर पर जल सै बाजार विच पुजदा है मंडी विच पुजदा है तां उहदे भाअ हां जल उच्चे मिलदे हन। कहिंदा हौला हौला जिहां हर जगह ते जल सही उत्पादन बाजार विच पुजणा शुरू होई जाणा तां हां जो भाअ जिहड़े सै थोड़े घट मिलणा फिरी लगी पौंदे हन। तां अहां बार बार टियाले दे माध्यम ते इह बोलदे हन कि तुहां बेमौसमी कन्नै अगेती जिसी अहां बोलदे न सै जरूर तुहां उत्पादन जरूर करा। इसते सोगी जिहड़ी गल करनी है सै इह करनी है कि आए दिन नोईयां ते नोईयां तकनीकां अहां दे विज्ञानिक होईए कृषि विज्ञान केंद्र पर ब्लॉक स्तर पर अधिकारी होईए तां इह सारे नोए ते नोए जिहड़े सै जिसी बोलदे न तरीके कि अहां अपनी खेतीबाड़ी जो कियां आधुनिक बनाना है उस पर जिहड़ी सै गल्लबात करदे रहिंदे हन। कन्नै होना भी चाहिदा है कि दिक्खा अहां जिहड़ी परंपरागत जिहड़ी कृषि अहां करदे आए हन तां उस ते हटी के अजकल्ल नए नए बीज हैं नई नई तकनीकां आईयां नई नई मशीनरी आई जिसते कि

कि यहाँ दे किसान साथी जियाँ छलियाँ का बीज हो गया, देसी छलियाँ का बीज हो गया, स अगले साल वास्ते रखते हैं जी, जी लंबी लंबी गुलियां होंगे न खरिया, जिस बोलते हाँ मजबूत सरूठ गुलियां, उन्होंने जो निकाली के रखी लेंदे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अपना जोड़ा सा जोड़े परंपरागत हाँ तो पुराने बीज हैं ना, जी लाल छली हुई, चिट्टी देसी छली, या होर भी कोई बीज है सब्जियां के, भिंडी का बीज है या कद्दू दे करेले दे, ता ये अपने घर के बीज भी अहाँ जरूर बचाई के रखने हैं। कहीं कि दिखा अहाँ अगर अहाँ वाल अपना बीज होगा ना, तो सह बिल्कुल एक जिस अहाँ बोलते ना हाँ जो बार बार बाहर इतने महंगा बीज नहीं लेना पौना है, कन अहाँ वाल अगर बीज है तो अहाँ जो चलो इतनी भाग दौड़ भी नहीं करना पौनी, कन तो हाँ जो जिं लगता कि जिं शैल काकड़ियाँ बड़ी शैल हैं या जियाँ कोई होर कद्दू है घीया है, तो तिदे तो हाँ अच्छे अच्छे बीज जियाँ छली की गल की है या इधे सोगी होर हैं, तो सर सारे बीज तो हाँ जड़े से संभाली के रखने हैं। कन्नै हुण दिक्खा कुछ एक जड़े से अहाँ के किसान साथी हैं तिन्हें तो आगामी जियाँ अपनी पत्तेदार जियाँ सरसों वगैरह की बिजाई भी करी थी होवे, जितू वाली खेत खाली नहीं हो तो सह भी जड़े से जियाँ सरों वगैरह तिना सागे ताइया बाहनी है, तो दिक्खा जैलू ग्राएं बिच ये मांग उठती है ना कि अहाँ भी जड़ा सा सागे ताइया कुछ थोड़ा बहुत क्यारू लगाना या कोई खेत बीजना, था जिहड़ी देसी सरों को तो मिल गई, तो देखा जिन्हें किसान साथियों वाल जिन्हें ये सारे बीज संभाली के रखे होंगे ना, तो देखा बड़ी अच्छी गल है कि ग्राएं बिच जड़ा सा एक दूए जो मिल जड़ा सा मिली बंटी के जड़ा सा एक दूए जो भी अहाँ कोई अहाँ वाल कोई बीज है या कुछ है अहाँ एक दूजे भी जड़ा सा देन, कन्नै टियाले का जड़ा सा एक नारा भी है कि बीज दान महादान है ना। तो गल्ला बातां तो किसान साथी तुहां कन्नै होर भी जड़ियां से जारी रहनियां ने, लेकिन पहले सुन देन अहाँ एक संदेश जड़ा सा एक उसके बाद एक लोकगीत कन्नै, इसके बाद जड़ा सा अहाँ सुननी है एक किसान होरा कन्नै कीती गई जड़ी सै गलबात भेंट वार्ता।

0: किसान साथियों, ये सुनिया आहा प्यारा दिया लोक गीत का दिखा। लोक गीतां दे विच हांजो अपनी मिट्टी दी खुशबू जड़ी सह आउंदी है। कारण लोक गीतां दे विच कोई ना कोई अहां दे इलाके दी कोई गाथा, कोई कहानी, कोई कविता जड़ी सह अहांजो जरूर कोई ना कोई संदेश जड़ा सह दिंदी है। हुण अहां इक जड़े सह उन्नत अहां दे जिन्हां कि अहां किसान बोली सकदे हन, मछली उत्पादक बोली सकदे हन, धारकंडी बहुत है। तां सुन दिन ये गलबात की क्या क्या जलो अहां तिन्हां कन्नै भेंट वार्ता कीती ही, तां तिन्हां कौन कौन अनुभव अहां कन्नै जड़े सह मछली पालन दे बारे विच सांझा कीते हे। किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच तुहां जो तो पता है कि हर दिन अहां दा प्रयास रहिंदा कि नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए। उसी कड़ी विच मिंजो मौका मिला कन्नै मैं गया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र दा एक धारकंडी इलाका है। तो उत्थों एक मछली पालन दा जिहड़ा काम करा करदे हन, ट्राउट मछली पालदे हन, इन्हां कन्नै करदे हन गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा
1: जी। ना, मेरा नाम प्यारे लाल जी।
0: प्यारे लाल कने तुहां दे ग्रां दा की नाम है?
1: बलेड।
0: ट्राउट मछली पालन दा काम करा करदे
1: जी, जी, जी।

0: जी प्यारे लाल जी कदों ते करा दे काम?
1: सर मैं 2017 से।
0: तो यानी कि काफी टाइम तो मछली पाल दी हुई है ना?
1: 8-9 साल हो गए।
0: अच्छा, तो इस वेले जड़ा तो हाँ फार्म बनाया, कितना बड़ा फार्म है?
1: फार्म ही है तो 4 रेस भी है इसमें, 4 रेस भी।
0: अच्छा।
1: बोलते इसको एक रेस भी बोलते इसको।
0: हाँ जी,
1: पर 4 यूनिट है ये।
0: 4 यूनिट है,
1: 4 और
0: एक 4 खाने ना।
1: हाँ जी जी।
0: तो जी एक ट्राउट मछली तो हाँ पाली हुआ था, तो हाँ इससे पहले जी कुछ सिखलाई वगैरह भी लेगी जी मछली पालन पालनी है?
1: नहीं, डिपार्टमेंटली ट्रेनिंग देते है।
0: अच्छा,
1: डिपार्टमेंट जो मछली मत्स्य पालन विभाग है ना।
0: हाँ जी,
1: ट्रेनिंग दिंदा, बेसिकल ट्रेनिंग जो होती।
0: हाँ जी,
1: बाकी तो मैं अपना एक्सपीरियंस है।
0: हाँ जी,
1: फिर किसी फार्म में शेयर कर लियो।
0: हाँ,
1: जो लीडिंग फार्म है उसके साथ कांटेक्ट में रहो।
0: हाँ जी,
1: वहाँ से जानकारी मिलती रहती है।
0: अच्छा, इसके बाद गल करते हैं जी, यहाँ जल तो हाँ फार्म बनाया हा था, कितना के समय इसी फार्म में बनाने लगी या कने क्या विभाग द्वारा कोई अनुदान वगैरह?
1: नहीं, विभाग द्वारा अनुदान भी मिला, समय तो चलो भाई जितने ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर जिंदा की उस टाइम भी बनाया मैं 2017 स्टार्ट किया, जरा 15x2 वाला फार्म है।
0: हाँ जी,
1: उसकी जड़ी मतलब कीमत ही उस टाइम 1,00,000 रुपये थी अनुमानित राशि।
0: अच्छा,
1: उस पर सांझो गवर्नमेंट ने देता 20,000 सब्सिडी।
0: अच्छा,
1: एक फार्म पर, और उसके ऊपर सांझो इनपुट मतलब पालने वास्ते 27,000 लग देता।
0: अच्छा,
1: एक यूनिट पर।
0: हाँ जी,
1: ठीक है। उसके बाद फिर हाँ दूजे यूनिट बनाए।
0: हाँ जी,
1: 17x15x2x1.5 था उसकी कॉस्ट थी उस टाइम दी 2,00,000 दोबारा, उस पर सब्सिडी मिली सांझो 40%।
0: अच्छा,
1: तो 2,00,000 दी 80,000 रुपये हो गए।
0: हाँ जी,
1: और प्लस 1,00,000 रुपये जरा सा मतलब मिला इनपुट पालने वास्ते मिला।
0: जी गल करते हैं ट्राउट मछली का जड़ा बीज है।
1: जी जी,
0: बीज कुत्ते लेंदे तो हाँ
1: बीज हाँ पहले सरकारी फार्म दे बरोड दे लेंदे हे, पतली कुल दे लेंदे हे, बटाड लेंदे हे, पर उस दे बाद फिर सोचा चलो नियर वे सांझो इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम,
0: नए नए
1: फार्म थे कॉन्टैक्ट नहीं थे, सांझो को बड़े अच्छे फार्मर मिले जोगिंदर नगर।
0: हाँ जी,
1: उन्होंने संपर्क च आया था, उन्होंने सांझो पहले FOR इत पुजाने की कोशिश की, 4-5 साल इत पुजाते रहे
0: जी,
1: फिर असा उसते भी जाके आपू लिया रहे, उसका रिजल्ट जरा मुझे बाकी सरकारी फार्मा ज्यादा अच्छा रहा मुझे।
0: अच्छा,
1: मतलब उससे मोर्टैलिटी भी घट रही और ग्रोथ भी रेट अच्छा रहा
0: जी,
1: दूसरी गल फीड भी जरबा हुई है मार्केट का।
0: हाँ जी,
1: तो फीड भी एक अच्छी कंपनी ने हमने खोलना स्टार्ट की।
0: अच्छा,
1: कि सारा उत्पादन बहुत बढ़िया रहना शुरू हुई है।
0: अच्छा,
1: इनकम का सोर्स भी मतलब इनकम भी साड़ी बढ़ना लग पी।
0: हाँ जी,
1: वो फायदा हम जो रहा उसका मेन
0: जी। नहीं, बीज है दा, इदा क्या भाव मिलता नहीं है कुछ जी?
1: बीज आता है, बीज हो ना अंडा भी इसको मिल जा मिल जाना तो।
0: हाँ जी,
1: अंडे का हम प्रोसेस लंबा पाउंदा, लेंथी है।
0: हाँ जी,
1: इसका हम टोटल बच्चा ही लेने, मतलब फिंगर साइज बच्चा लेने।
0: एक पीस का क्या हिसाब होता?
1: उसका पीस का साइज गवर्नमेंट का रेट है वो 4 रुपये, लेकिन प्राइवेट फार्म अपनी अपनी मर्जी नहीं बेचते।
0: हाँ, 1-2 रुपये महंगा लगा।
1: हाँ, कुछ कोई 4 बेचता, कोई 5 बेचता है, लेकिन ਸਾਂਝੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਾਹਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
0: ਫਾਰਮ
1: ਦੇ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ 4-4.5-5 ਬਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, 4 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ 5 ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਕ ਘੱਟ ਹੋਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਉਸ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ
0: ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਤਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਪੀਸ ਕਿਤਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ?
1: ਪੀਸ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕੋਈ 3,000 ਹੈ, ਚਲੋ 12,000।
0: ਅੱਛਾ, 12,000
1: ਪਰ 12,000 ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸਾ ਸਟੇਵਲ ਟੈਂਕ ਚ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘਨ ਮੀਟਰ ਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋ ਹੀ ਮੱਛੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਘੁੰਮਣੇ ਫਿਰਨੇ
1: ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ 1 ਘਨ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਮੀਟਰ ਵਾਇਸ ਤਾਂ 34 ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ ਹਾਈਟ।
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਤਿਸਦੇ ਬਚਣੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ 3,000 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 3,000 ਵੀ 2,500 ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀਲਾ ਮੱਛੀ, ਅਗਰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਤੇ 75 7.5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮਾਲ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਮਤਲਬ ਡੇਢ ਵਧਾਈ ਲਿਓ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ
0: ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦੀ,
1: ਜਿਹੀਆਂ
0: ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ,
1: ਤਾਂ
0: ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਆਪੂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ,
1: ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਲਸ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖੱਡਾ 'ਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਕੈਂਚੂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਜੰਤੂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ,
0: ਹਾਂ
1: ਉਹ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਲਸ ਫੀਡ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਜ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ।
0: ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੀ?
1: ਫੀਡ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ,
0: ਸੰਝਾ ਪਿਆ ਗਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੀਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ,
0: ਹਾਂ
1: ਗਰੋਥ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ,
0: ਹਾਂ
1: ਮੋ 2% ਮਤਲਬ 2% ਰੋ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, 2% ਮਤਲਬ ਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਟਾਕ 'ਚ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਦੀ ਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿਓ ਹੀ ਦਿਓ।
0: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੀ ਕਿ ਫੀਡ ਕਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
1: ਫੀਡ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੀਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਮਤਲਬ 800 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕੇਜੀ ਕਾ।
0: ਹਾਂਜੀ,

0: उसके बाद तो स्टार्ट होनी फिर थोड़ी 1.2 एमजी उधर रेट है 20 किलो का 3200 रुपया।
1: अच्छा
0: फिर 1.8 है उधर रेट भी तो 3200 मिलना। बाकी उसके बाद ये बच्ची बढ़ती है उस साइज पता बढ़ जाता
1: यानी कि पूरा वही हिसाब है जी छोटे बच्चे जो हां
0: ज्यादा प्रोटीन ज्यादा
1: खाना हो रहा है थोड़े बड़े हो या थोड़ा और देना
0: ओ अच्छा। उसके बाद स्टार्टर फीड खत्म है तो फिर थोड़ी ग्रोथ वाली स्पीड स्टार्ट हो जाती 3 एमएम दी।
1: हां जी
0: 3 एमएम का रेट थोड़ा फिर काटता है फिर वो आ जाता जो 2900 समथिंग च 20 किलो का।
1: तो हां जेड़ा ये फार्म है इस चीज तो हां जी वजन दे हिसाब से करना है कितनी बड़ी-बड़ी मछलियां भी इतो तैयार कीतीयां।
0: एक्चुअली तुसा ब्रूडर रखने ने अपनी एचडी बनाने दा साइज बढ़ाने दा फायदा है।
1: हां
0: अदरवाइज साइज बढ़ाई के फायदा को अगर तुसा अपनी हैचिंग वास्ते रखना बच्चा कह दो बड़ा अबल तो 350 ग्राम तक तक पीस कड़ी दियो क्योंकि मेरे घर बचदा नहीं माल।
1: अच्छा
0: सही की कहता कि मेरे पास मार्केटिंग ज्यादा है प्रोडक्शन घट है तो मेरा तो ये होता कि टारगेट जब 31 मार्च तक मेरा ओल्ड स्टॉक खत्म नेक्स्ट स्टार्ट होता।
1: अच्छा
0: वेट उड़ा बढ़ता जहां तक माल ला स्टॉक से रहा दो साल तक नियमित शेयर होता तो उतो वेट कुछ एक्चुअली बढ़ जाता।
1: हाँ जी
0: ये कोई 4000 बच्चा पाया साल नहीं बिका तीन साढ़े तीन 2 किलो के पूजी जाना।
1: हाँ जी
0: पर मेरे बाल नहीं होता मेरा लगे माल से पूरा पूरा ही निकल जाता
1: है। अच्छा खुद बेच दे दो। हाँ
0: माल मेरा सर 90% कस्टमर मेरा जो ऑन द स्पॉट है।
1: ट्राउट मछली जी सबसे स्वादिष्ट मछली चाहती है जरा दाम है ज्यादा
0: ज्यादा
1: क्या भा किलो बिकती है
0: 600 तक बेचा दे लोग 600 पर इस टाइम गवर्नमेंट का रेट है 650 रुपये है।
1: अच्छा
0: असा जरा थोड़ा घट रखा होता क्योंकि थोड़ा सारे लोगों की पे कैपेसिटी घट सकती है 600 तक दे दें भी जी।
1: अच्छा, अच्छा।
0: बाकी कोई पर्सनल यार यार कस्टमर तो अलग चीज है फिर वो रेट जो है बाकी चीज जो पता है एक्चुअली मेन कह के इसकी जी FCR है फूड प्रोजेक्शन से बोलते हैं कारी रेसो हिसाब से 1.5% है लेकिन प्रैक्टिकल हाँ कर देते सो लगता पता कि ज्यादा है तो मतलब 2 किलो फीड मिनिमम खांगी मछी 1 किलो वेट तैयार करने वास्ते 2 किलो फीड तो सारी मसाम समझो एवरेज पौंदी 165 रुपए किलो फीड मौके पर भी मतलब ट्रांसपोर्टिंग वगैरह वगैरह पाइए 165 रुपए 2 किलो खाइए।
1: अच्छा
0: ये 2 किलो फीड खा गई सपोज कर 330 रुपए की फीड खा गई बाकी उस मेडिसिन है लंगर दुआला जो भी है बाकी खर्चे एक्सपेंसेस जो है 450 रुपए खर्चा आई जाता।
1: अच्छा अच्छा जी तो जी तो हाँ इसकी सिखलाई भी तो हाँ पहले मछली पालन की जी ले है इसके बाद तो हाँ अपना फार्म बनाया अनुदान भी तो हाँ जो मिले है ना इस बीच जी कदी जी तो 2018 से काम करा करते ना कोई परेशानी वगैरह भी आई जी कोई
0: परेशानी सर एक बार आई थी कुड़ी उस टाइम क्या है एक्चुअली लॉकडाउन टाइम की गल है।
1: हां
0: मछली मारने वाले बंदे है करो ऊपर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह
1: हां कांटा च पाई दिया। हां ना कहना सही
0: सही सारा पानी मेरे इस फार्म से आई है और उस टाइम मेरा टोटल लॉस
1: ओहो
0: पूरे के पूरे मतलब पूरा पूरा टैंक के बाद शॉर्ट हो गया। 10,000 बच्चा पाया था उस टाइम और 75 बच्चा बचा मेरा सिर्फ उस
1: अच्छा। पीछे
0: और बड़ा माल जड़ा सारा सारा खत्म हो गया कुछ नहीं मतलब टोटली हो गया।
1: हाँ देखा उस समय दौर भी ऐसा चल गया कि एकदम से माल भी कहाँ भेजना है कहाँ बेचना है
0: उस टाइम बेचना भी औखा था।
1: हाँ
0: और मरी मछली कीमत कोई नहीं।
1: हाँ
0: सबसे बड़ी गल
1: है देखा ये भी तो हाँ एक जिनकी की जिया दसिया कि कुछ एक जिया होंगे ना शरारती दस्ता है ना ते ना देखा अपने जिसकी यहाँ बोलते लो बलाल चताइया गड्डा च पाइता पाउडर है ना कहना सही जा तो हाँ दे फार्म च आई के नुकसान करी है ना तो फार्म पर काम किले कर दे की कोई
0: नहीं कल आई क्योंकि लेबर तो काम नहीं चलता क्योंकि ये काम लेबर वाला नहीं है कि लेबर बिठाई दी है
1: अनुभव चाहिदा ना
0: अनुभव चाहिदा दू है कि पता है लेबर वाले बंदे मुझे 6000 महीने मिला किन्नी को घेर के नहीं जाता।
1: हाँ जी हाँ
0: उन्हें मर गई बड़े मर गई।
1: हाँ
0: पानी घट है तो बेचारे घट चलना कोई चक्कर नहीं उसको कोई दिक्कत वाली गल नहीं उसको कोई दिक्कत वाली गल नहीं पर जितने हो सके कि कोशिश होती सारी हाँ ये मेजर काम होता कोई मुख्य काम हो या मतलब थोड़ा सारी कुल डिस्टर्ब भी है उस टाइम लेबर जरूरत पौंदी तो हाँ उन्हें हायर कर लेंगे बंदे एक दो हायर करके।
1: अच्छा
0: तो उस टाइम भी मतलब ज्यादा माल क्वांटल माल निकालना उसकी सप्लाई है कुछ दिन।
1: हाँ जी
0: तो उस दिन चाहिए बंदा बे चल थोड़ी हेल्प करके जल्दी ड्रेसिंग ब्रेसिंग हो जाए।
1: हाँ तो जी निकाल दे कि
0: एंड नेट दे एंड नेट के नहीं निकल
1: जाए। अच्छा जी टोकरी सिस्टम
0: होता है ना हां एंड नेट होते बने जाड़े
1: जी उस से ज्यादा भी निकले जाता 2.5 के फिर ही
0: पाए। हां ना वो तो डब्बे च पाना माल पीस के जेने ते फालतू माल वापस पा देना उस टाइम वो तो किलो जो 3 पीस 50 100 पीस हो 33 किलो मारिया 5-7-10 ग्राम किलो दा लगदा इतना माल और घड़ी लिया
1: फालतू ले।

0: किलो तोल दे किलो 100 ग्राम भी होती 150 भी होती तभी नहीं बोलते हैं 200 ग्राम में पता कश्मीर में थोड़ा बैठ फालतू कह दिया।
1: हाँ जी
0: कई बार बराबर रहती कई बार 10-20 ग्राम घट भी रही जाती।
1: अच्छा
0: इस बीच एग्जैक्ट वेट नहीं होता ना कट्टी के तो पानी नहीं दी मच्छी मेन चक्कर तो होता ना
1: जी गल करते ना। हाँ जी ऋतुओं के हिसाब से देखा तो वहाँ धारगंडी का इलाका कुछ फर्क तो नहीं पाता मछलियां जी सर्दियों या गर्मियों कुछ खास ध्यान रखना पाता हो
0: नहीं गर्मी ध्यान स्पेशल ध्यान गर्मी में एक्चुअली जलू मतलब थोड़ी गर्मी पे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दोपहर 3-4 बजे और थोड़ी खड्डा का पत्थर जो टेंपरेचर 28-29 पुजी गई एकदम बर्फ स्टार्ट हुई।
1: हाँ जी
0: एकदम बर्फ हुई चल बस स्टैंड बर्फ पत्थर पानी पौना पानी गर्म होना उस टाइम क्या कि पानी का जो टेंपरेचर है वो एकदम अप हो जाता।
1: हाँ जी
0: उस पानी घटना नहीं चाहिए।
1: हाँ जी
0: अगर थोड़ा टेंपरेचर बढ़ाता तो फीडिंग स्टॉप करना पौता फीड भी घटाना पौती।
1: अच्छा
0: और टेंपरेचर मतलब स्टार के उपर तक फीड पाओ मत सद बेस्ट मैथड तो यही है।
1: हाँ जी
0: फिर बंद कर दियो सतारा पर्यंत यही होंगे बाकी थोड़ा पानी का फ्लो ज्यादा चाहिए गर्मी में पानी घट होना चाहिए गर्मी में थोड़ा स्ट्रेस रहते मच्छी जिसके कने तुसा विटामिन सी दियो मछली वास्ते
1: अच्छा
0: प्लस लिवर टॉमिन
1: अच्छा इन्हें की दवाइयां भी देना
0: दवाई मतलब स्ट्रेस च हो मच्छी तो छिकन लगी मतलब जी सू बड़ी गर्मी यार चलो ग्लूकोज पी लैने या कुछ पी लैने गन्ने रस उस थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है इन्हें भी कोई चीज जी विटामिन सी मिली है या लिवर टॉनिक मिली है तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करते।
1: अच्छा इं बारे से जी कोई मछलियां खाने वाले जी कोई बाज वगैरह या केवरी कोई
0: कोटी इस बीच तो होया सिर्फ एक ना। अच्छा। इस तो सिर्फ एक या जड़ा होता सारा देसी भाषा बोलते मरगाबी किंग फिशर टाइप दी होंदी ओ अटैक कर दी।
1: अच्छा।
0: बाकी छोटा मोटा सप तो छोटे बच्चे डैमेज करता बड़े तो नहीं कर सकता डैमेज।
1: अच्छा अच्छा
0: बड़ी मछी तो वो भी कट देना
1: आया तो हां दे फार्म में
0: आंदे आंदे
1: कड़ी दी होनी
0: कड़ी दी उसी कड़ी दी।
1: अच्छा
0: वो मत रखी हो एंड स्टिक स्नेक स्नैकिंग स्टिक होती ना।
1: हां जी
0: उसके ने पकड़ने कुछ कर दे नहीं तो फिर जाला पाई कर लेंगे
1: जी
0: वो तो बचाना पौंदा ना हुन बच्चा बढ़िया बच्चा वो तो।
1: अच्छा
0: चलता रहा उस
1: जी। प्यारे लाल जी अहां दी जेड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है दिखा वे तिना वाला अपनी खरियां खुली है जमीन भी है ना
0: सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ने।
1: हां जी
0: इससे दिन बैठ रहा कि तुसा अपना रोजगार अपनाओ कोई।
1: हां जी
0: अरे कुछ दी जमीन खड्डा वखे है।
1: हां
0: करो धंधा बेस्ट धंधा है अच्छी इनपुट है कमाओ पैसा उस कमाओ। करो अपने धंधे अपने कम में रीस है।
1: हाँ जी
0: बाकी क्या है उसी नौकरी करके कुछ बढ़िया 10-12 हज़ार महीने का।
1: हाँ जी हाँ
0: मतलब थोड़ा एक अगर सही महीने रेस में तो साले तो 1.5 लाख छड़ी जाता एक रेस में।
1: प्यारे लाल जी तो हाँ अपना कीमती समय अहाँ जो दिता अपने ट्राउट मछली पालन के जेडे अनुभव हैं तो हाँ अहाँ कन्ने साझा किए तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो किसान साथियों ये सुनी अहाँ गलबात कने उम्मीद करते हैं कि तो हाँ पूरी विस्तृत जानकारी जी से ले होनी है कने अहां दे जेड़े भी युवा साथी हैं अगर तिना च भी लगता कि सह इस कमी जो जड़ा से कर सकते हैं तिना वाल जड़ा से पानी दा जड़ा से स्रोत है तो जरूर जड़ा से इस व्यवसाय जो अपना कने हुण फिर ते चलते चलते सुनते हैं एक और लोक गीत।

किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने जड़ा सा खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय इतुई संपन्न होने जो है जान के पहले दस दिए तकनीकी से अहिता विकास पठानिया ने कने कार्यक्रम के प्रस्तुत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हो चुके हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप वरुणा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं में संस्कार व सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने पर दिया बल। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, भारी कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप। उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कुल्लू में संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्य योजना को सार्वजनिक करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल ही के दिनों में आई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में आज पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रपति ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं में संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हुए उन्हें आधुनिक ज्ञान व तकनीक के साथ आगे बढ़ने के अवसर देने की जरूरत है। इस अवसर पर सांसद राजीव भारद्वाज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का संदेश भी पढ़ा गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऊना जिले की बालीवाल पंचायत में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायत में करीब 125 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़ रहे बालीवाल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आज भाजपा के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान सरकार 3.5 वर्ष में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद भी प्रदेश में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है।
2: एक साल का कार्यकाल जो बचा है वर्तमान सरकार का, इसमें काम की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। जब उम्मीद नहीं है तो जिससे उम्मीद है उसके साथ काम करिए। वो उम्मीद अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भाजपा की बनेगी, आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, उससे उम्मीद रखिए। एक साल छोड़ दीजिए, 4 साल हम जो छूटे हुए विकास कार्य है उनकी पूर्ति करेंगे।
0: उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर सम्मेलन आज कुल्लू में संपन्न हो गया। इस अवसर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार, संसाधनों का बेहतर उपयोग, तकनीक का समावेश और विद्यार्थियों को समाज व समुदाय से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही का प्रयास किया जाएगा। मेरा युवा भारत किन्नौर द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपियो में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशा

0: के दुष्प्रभावों और इससे होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को लेकर जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने भी नशे से दूर रहने और समाज को इस बुराई से मुक्त कराने का संकल्प लिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
1: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
2: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
1: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका लक्ष्य रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री के अनुसार प्राकृतिक खेती को लेकर चल रहा जन आंदोलन आने वाले वर्षों में व्यापक रूप में सफल होगा।
4: हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, खेल और आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार हो रहा है। पीएम श्री राजकीय विद्यालय घुमारवीं में आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्ययोजना को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का राजस्व घाटा 6,577 करोड़ जबकि राजकोषीय घाटा 9,698 करोड़ रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आगामी वर्षों में राजस्व और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। शिमला जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 वर्ष तक की बच्चियों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल रांटा ने बताया कि शुरुआत में टीकाकरण अभियान को लेकर अभिभावकों में कई भ्रांतियां थी, लेकिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं को दूर किया जा रहा है।
5: ये जो वैक्सीन है इसको हम लगाते हैं 14 से 15 साल के बच्चों। ये जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये 97% कॉज है सीए सर्विक्स का। सीए सर्विक्स जो होता है यूट्रस का वो पार्ट है जिसको हम बच्चा देने के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं। ये जो आपका वायरस 97% केसेस में कॉज है, जल्दी अगर ये वैक्सीन लग जाएगी, जैसे हमारी दूसरी वैक्सीन होती है वैसे एंटीबॉडीज बनेंगी और वो जो भी हमारी बेटी है वो इस इन्फेक्शन से बच जाएगी।
0: शिमला जिले में अब तक 1,874 बच्चियों का HPV टीकाकरण किया गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल से सैंज क्षेत्र की रैला पंचायत में हुए रिसाव के मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाहक उपायुक्त व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत

0: जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर रिसाव को पूरी तरह रोक लिया गया है। उन्होंने कहा कि रिसाव के कारण जमा हुए मलबे को हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी तैनात कर दी गई है और स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं में संस्कार व सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने पर दिया बल। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, भारी कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप। उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कुल्लू में संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्य योजना को सार्वजनिक करने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। कार्यालय मुख्य अभियंता, जल शक्ति विभाग, टूटीकंडी शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग में बैचवाइज आधार पर ड्राफ्ट्समैन के 7 पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है। सामान्य श्रेणी के 3 पद, सामान्य श्रेणी IRDP के लिए 1 पद, सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद और अनुसूचित जाति BPL के लिए 1 पद आरक्षित है। नियुक्ति जॉब ट्रेनी के आधार पर होगी, जो केवल 2 वर्ष के लिए होगी। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक योग्यताएं एवं शर्तें इस प्रकार से है। उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही उम्मीदवार के पास ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में 2 वर्ष का डिप्लोमा हिमाचल प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी ITI संस्थान से होना चाहिए। इन पदों को भरने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश की स्थानीय बोलियों एवं रीति रिवाजों का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 21 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदक अपना आवेदन पत्र सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जल शक्ति विभाग कसुम्पटी शिमला 171009 के पते पर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रजिस्ट्रार जल शक्ति विभाग मुख्य कार्यालय टूटीकंडी शिमला से दूरभाष नंबर 2832993 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम सबरस के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये गजल जिसे गाया है मेहंदी हसन ने।
1: इस गजल के बाद तो दूसरी गजल जमानी मुश्किल हो जाएगी मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एंड में रहने दें, जो चाहते हो। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा अजीब रंग है इसका, जमने के बाद फिर चलिए गाते हैं।

ये वो मैं गजल आपके सामने पेश करने लगा हूँ। इसके मुतालिक इंडिया से लेटर आए मेरे पास कि क्या राग है, क्या इसका वादी संवादी है।

अभी आपने सुनी मेहंदी हसन की आवाज़ में गाई ये गज़ल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गैर फिल्मी भजन। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये पंजाबी गीत अमरिंदर गिल की आवाज़ में।

0: अभी आपने सुना अमरिंदर गिल व साथियों की आवाज़ों में गाया ये पंजाबी गीत, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज़ में गाया ये गीत।
1: आलो आलो आलो आलो आलो आलो आलो चार

अभी आपने सुना कैलाश खेर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर के युगल स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना नितिन मुकेश अनुराधा पौडवाल व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहली समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंक

0: वाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।

0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपए का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं।

0: सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
2: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
3: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
5: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
4: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
5: Climate change मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है. Biodiversity loss, water stress, और land degradation इससे गहराई से जुड़े हैं. Water stress वाले क्षेत्रों में farm ponds स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं. इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है.
4: The president said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts, but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from the Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
6: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all, but unfortunately your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia, and we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive partnership between the two countries.
4: The Japanese Air Chief appreciated the warm hospitality extended by the Indian side and described the Tejas as a symbol of India's technological innovation and the country's Make in India initiative.
7: I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft born from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
4: The 14-day exercise, which will conclude on Tuesday, focuses on advanced operational missions and extensive professional interactions between the two air forces. The exercise involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI, and Rafale, while Japan is participating with the F-2A fighter aircraft. Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force delivered a breathtaking aerial display featuring 9 Hawk MK-132 aircraft in close formation during an air show held at Meerut in Uttar Pradesh. The two-day air show took off yesterday when Surya Kiran team captivated spectators with a breathtaking display. The defense ministry said the air show drew more than 1 lakh spectators. Minister of State for Defense

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक महेश भट्ट द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। महेश भट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 20 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। शुरुआती जीवन और करियर निर्देशन की शुरुआत उन्होंने वर्ष 1974 में की थी और करियर की शुरुआत यहाँ से की और उनकी प्रसिद्ध फिल्में थी अर्थ, सारांश, जख्म, राज और आशिकी जैसी कई बेहतरीन और यादगार फिल्मों का निर्देशन व निर्माण उन्होंने किया। सिनेमा की शैली की अगर हम

बात करें तो उनकी फिल्में अक्सर उनकी निजी जिंदगी के अनुभवों, समाज के जटिल मुद्दों और मानवीय भावनाओं पर आधारित थीं। व्यक्तिगत जीवन और परिवार की अगर हम बात करें उनके, तो उनके पिता नाना भाई भट्ट एक फिल्म मेकर थे और उनकी माँ शिरीन मोहम्मद अली थी। विवाह की अगर हम बात करें तो महेश भट्ट ने पहली शादी किरण भट्ट से की थी।

0: कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक महेश भट्ट द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। उनकी निर्मित फिल्मों की और निर्देशित फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो हैं कारतूस, ये है मुंबई मेरी जान, जख्म, अंगारे, डुप्लीकेट, तमन्ना, कभी कभी, चाहत, पापा कहते हैं, दस्तक, नाजायज़, मिलन, स्वाभिमान जो कि एक दूरदर्शन धारावाहिक था, क्रिमिनल, अ माउथफुल ऑफ स्काई, द जेंटलमैन, नाराज, हम हैं राही प्यार के, तड़ीपार, गुमराह, गुनाह, सर, फिर तेरी कहानी याद आई, सातवें आसमान, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, साथी, सड़क, स्वयं, आवारगी, आशिकी, जुर्म, डैडी, कब्जा, सियासत, ठिकाना, काश, आ, नाम, आशियाना, जन्म, सारांश, अर्थ, अभिमन्यु, लहू के दो रंग, नया दौर, विश्वासघात, मंजिलें और भी हैं, और गैंगस्टर ऐसा क्यों होता है, फुटपाथ, राज, गुदमुदी, दो राहें, पापा कहते हैं, सरदारी बेगम, भैरवी, हक, नया दौर। ये कुछ एक फिल्में थी जो उनके द्वारा निर्मित निर्देशित थी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज आपने सुने निर्माता निर्देशक महेश भट्ट द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
2: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
3: घोर बेइज्जती।
4: क्यों? कोई बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं है?
3: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया।
4: हाँ, भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
2: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
3: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
4: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।

0: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने दे दी।
1: पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ,
2: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
3: अच्छा जोशी साहब, हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे?
2: तमीज की कमीज वाले या हवारी तरह के?
1: ये देशमुख पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा है।
3: अच्छा,
1: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
2: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
1: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
3: अच्छा,
1: हम भले और हमारा काम भला
3: हो,
1: पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा है।
2: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
1: हाँ हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
4: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी चंपी बोलो चंपी।
3: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
1: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
5: अजी साहब, अपने ऑफिस में 4-5 दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
1: कौन सी लड़की?
5: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
3: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
1: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
3: बता रहा हूँ जोशी साहब,
1: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
3: आप भी ना।
5: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है।
3: चलिए चलिए चलिए, आइए।
1: हाँ बोलो बोलो कर्णिक।
3: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना,
2: मिस साने।
3: हाँ मिस साने। अजी साहेब, वो हाफ मैड है।
1: हाफ मैड?
3: हाँ हाँ हाफ मैड।
2: कैसे? तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने कर्णिक?
3: अजी साहेब, बड़ी अजीब लड़की है।
5: अरे आखिर हुआ क्या?
3: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली। उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग कर्णिक, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाए। मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। मैं तो इतना घबराया कि बस। आप ही कहिए, कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो, पगली।
2: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो कर्णिक,
3: हैं?
2: किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
3: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, हैं? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
2: अरे कर्णिक, वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या? देख कर्णिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं, तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
3: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
2: तो दीजिए ना सबूत।
3: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
2: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
3: अब
2: कर्णिक सही कह रहा है?
3: हाँ मांजरेकर, कर्णिक का कहना सही है, मिसाने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ, लेकिन मत नहीं हुई।
5: क्या कह रहे हो, मिसाने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
3: अब मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नज़दीक वो ज़रूर बैठती है, लेकिन याद रखना

0: उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
1: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्तों।
2: अरे जोशी जी, अब मेरे पास आ गए।
3: मैं तो
2: अरे भाई अनारकर।
4: जी सर।
2: जरा इधर आओ।
4: जी सर।
2: ये लो ये फाइल बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
4: जी अच्छा।
5: एक्सक्यूज मी मिस्टर मानसिकर।
2: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
5: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ। क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
2: काम?
5: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे। आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
2: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
5: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं। यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
2: जी फाइल कहाँ है?
5: जी लीजिए।
2: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
5: कहाँ? ये?
2: हाँ हाँ हाँ ये और ये जो, हाँ नीचे ये है आपके मिसिंग नंबर।
5: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
2: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये। जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
5: थैंक यू।
2: नहीं नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
5: मिस्टर मानसिकर, एक मिनट रुकी है।
2: जी
5: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
2: मेरे साथ मगर मैं।
5: चलिए मिस्टर मानसिकर आइए।
2: जी जी जी

0: इसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: अरे कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ, हाँ,
1: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है नमस्ते।
0: अब आपके लिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं? आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: अरे वो मुझे आज
0: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं, वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए। हैं
0: अच्छा
1: जी जी, कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मॉडली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई।
3: अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
3: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक

0: चाय लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी।
0: क्या हुआ
1: दीदी? तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
0: हाँ, नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
0: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं, दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
0: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए, वगैरह वगैरह। क्यों रे, कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
0: ठीक है, लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी, घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
0: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
0: बस रे, तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम? अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
0: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार है, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन, अब तो शादी कर ले, ठीक? कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
0: पगला कहीं का।
1: पगला?
0: अरे
1: कोई
0: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? सच बताऊं, जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
0: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
0: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
0: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम तो मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
0: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन है।
0: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, BA BT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
0: हाँ हाँ,
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
0: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ, खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में 2 साने।
0: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
1: लो अभी तो मैं 2-2 साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ। और तुम हो कि 1 साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी

0: गाने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
1: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर, पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? वे भावरी के घर हुआ।
0: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? वे भावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
1: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
0: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
1: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से। उसी को लाने के लिए मेरा दूध बनकर चले जाना।
0: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
1: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल।
0: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है। आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
0: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी?
2: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
0: वो घर पर है क्या?
2: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
0: सुरेखा।
2: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
0: थैंक यू।
2: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
0: जी।
2: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ। अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर। आप भी नहीं खोलना?
0: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
2: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं दीदी कहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
2: ये तो मुझे मालूम है।
0: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
2: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
0: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
2: बस अब वो आती ही होंगी, वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
0: हाँ, एकदम ठीक।
2: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया।
0: हाँ।
2: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
0: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊँ?
2: देखिए, दीदी कहती हैं किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
0: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
2: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
0: सॉरी, भूल गया था।
2: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
0: हाँ।
2: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
0: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?

0: लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
1: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
0: आपकी भी? बड़ों की भी दीदी होती है?
1: हाँ।
0: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांसरेकर।
1: मिस सानी,
2: आप यहाँ?
1: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
1: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
0: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मांसरेकर आइए, अंदर आइए।
1: थैंक यू।
2: आइए बैठिए। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया?
1: स्नेहलता मांसरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांसरेकर आपकी?
1: वो मेरी दीदी है।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
1: आपके बारे में।
2: मेरे बारे में क्या
1: सोच रहा था? कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूँ?
1: जी
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
1: मैं समझ सकता हूँ, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
1: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस साने
2: जी,
1: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
2: क्या कहते हैं?
1: कहते हैं कि आप
2: पगली हैं।
1: जी
2: ठीक ही तो कहते हैं।
1: यानी सचमुच आप?
2: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
1: मैं समझा नहीं।
2: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलग रहने में आसानी होती है। सोचो अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
1: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
2: मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
1: हाँ? नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
2: मेरे लिए?
1: मिस साने मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
2: और कौन है? बोलो।
1: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी एक बात पूछूं?

0: शादी करोगी? मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
1: आप भी पागल हैं।
0: पागल?
1: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
0: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
1: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
0: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
1: अभी?
0: हाँ अभी।
1: ठीक है, चलो।
0: लेकिन वहाँ हंसने का पागलपन मत करना।
1: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
0: नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। चले।
2: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकरीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने, कुमकुम जैन और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा मायणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

यह आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको वीआर नटराजू और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत नादस्वरम वादन सुनवा रहे हैं। वीआर नटराजू कर्नाटक के कोलार जिले के बेत मंगला के एक प्रतिभाशाली नादस्वरम वादक हैं। आप एक समृद्ध और विशिष्ट संगीत परंपरा वाले परिवार से आते हैं। बहुत कम उम्र में ही आपका संगीत से परिचय हुआ। आपके पिता विद्वान वी रमेश आपके प्रथम गुरु रहे और उन्होंने नटराजू के संगीत व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता के मार्गदर्शन में आपने न केवल नादस्वरम वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि कर्नाटक शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया, जिससे शास्त्रीय संगीत की मूलभूत अवधारणाओं में आपकी मजबूत नींव तैयार हुई। नादस्वरम परंपरा के प्रति अपनी गहरी रुचि और समर्पण के साथ वीआर नटराजू ने आगे चलकर कई प्रतिष्ठित गुरुओं से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। वीआर नटराजू आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। 25 वर्षों से अधिक समय से वे मंच पर सक्रिय हैं और नादस्वरम की परंपरा के एक समर्पित साधक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। आपकी प्रस्तुतियां अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर हुई हैं। आपने देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रसिद्ध नादस्वरम और तविल विद्वानों के साथ संगत करने का भी गौरव प्राप्त किया है। संगीत के प्रति आपकी निष्ठा और

0: योगदान को अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज की प्रस्तुति में आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजु एंड पार्टी। वी आर नटराजु इज एन एकम्प्लिश्ड नादस्वरम आर्टिस्ट from Betamangala in Kolar district, Karnataka. Belonging to a family with a strong and distinguished musical tradition, he was introduced to music at a very young age. His father, Vidwan V. Ramesh, was his first guru and played a significant role in shaping his musical personality. Under his father's guidance, V. R. Nataraju received training not only in Nadaswaram, but also in Carnatic vocal music, developing a strong foundation in the fundamentals of classical music. With a keen interest and dedication towards the Nadaswaram tradition, V. R. Nataraju subsequently pursued advanced training under several eminent masters. V. R. Nataraju is an A-grade artist of Akashvani Bengaluru. His performances have been presented at important platforms. He has also had the privilege of accompanying several celebrated Nadaswaram and Tavil Vidwans across different parts of India. His dedication and contribution to music have been recognized through several awards and honors. In tonight's performance, he is accompanied on special Tavil by S. Sudhakar.
0: V. R. Nataraju aur unke saathi अपने नादस्वरम वादन का आरंभ त्यागराज स्वामी की रचना अभिष्ट वरदा से कर रहे हैं। यह रचना राग हंसध्वनि और आदिताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजु एंड पार्टी बिगिन देयर नादस्वरम रिसाइटल विद अभिष्ट वरदा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग हंसध्वनि एंड आदिताला।

0: अगली प्रस्तुति है त्यागराज स्वामी की रचना शशि वदना, जो राग चंद्र ज्योति और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज शशि वदना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग चंद्र ज्योति एंड आदि ताला।

0: रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं वी आर नटराजू और उनके साथियों का नाद स्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: इंदी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू नाद स्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी। ही इज अकंपनीड ऑन स्पेशल तविल बाय यस सुधाकर।
0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए वी आर नटराजू और उनके साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं सामगान प्रियकरम। यह गुरु सूरजानंद की रचना है जो राग कीरवाणी और मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस वी आर नटराजू एंड पार्टी नाउ प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम अ कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद सेट इन राग कीरवाणी एंड मिश्र छापुताला।

0: वीआर नटराजू और उनके साथी अपने वादन का समापन लोकप्रिय कन्नड़ भक्ति रचना गोविंदा निन्ना से कर रहे हैं। इस रचना के रचयिता महान संत कवि पुरंदर दास हैं। यह राग जन सम्मोदिनी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वीआर नटराजू एंड पार्टी कंक्लूड देयर रिसाइटल विद द पॉपुलर कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन गोविंदा निन्ना, कंपोज्ड बाय ग्रेट सेंट पोएट पुरंदरदास, सेट इन राग जनसंबोधिनी एंड आदिताला।

0: रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपने सुना वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया। इंदिरा रविवासरीय
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और

0: जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts, but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Gargin 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur,